0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
2: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
3: ओम नमः शिवाय शांताय वेद वेदांग रूपिणे यज्ञानां फलदात्रे च ज्योतिर्लिंगाय ते नमः। प्रातः काल की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आप समस्त लोगों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। भगवान शिव की उपासना हो रही है। विश्वानर कह रहे हैं कि एकम ब्रह्मेवा द्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेह नानस्ति किंचित एको रुद्रो न द्वितीयो अस्ते तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम। हे भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसीलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे भगवान, हे शंभो, कर्ता हर्ता त्वम ही सर्वस्य शंभो नाना रूपेश्वकरूपोऽप्यरूप यदवत् प्रत्यगधर्म एकोप्यनेको स्तनमानान्यत्य त्वां विघ्नेशं प्रपद्ये। आप ही सबके कर्ता और हर्ता हैं, तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर के नाना रूपों में व्याप्त हैं। और आप जो हैं फिर भी रूप रहित हैं, इसीलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे

दूसरे की शरण नहीं ले सकता हूँ। रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रौप्यं नरे पूरस्तमृगाख्यै मरीचौ यद्वद्वितीयस्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम्। जैसे रस्सी में सर्प, सीप में चांदी, मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर ये विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की और मैं शरण लेता हूँ। हे भगवान, हे शंभो, तो ये शैल्यम दा

0: सर्पीस् तत शंभो त्वं तस्मात् प्रपद्यै। उसी प्रकार से जैसे जिसे जान लेने पर ये विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की हम शरण लेते हैं। जैसे जल में जो शीतलता, अग्नि में जो दाहकता और सूर्य में जो गर्मी है, चंद्रमा में जो आह्लादकारिता है, पुष्प में जो गंध है और दुग्ध में जो घी वर्तमान है, वो आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। न वेद सर्व जंतुनाम हृदय रोष कर बुध। विद्वान पुरुष ऐसे बात न कहें जो किसी भी प्राणी के हृदय में रोष पैदा करने वाला हो। येनम केना पुण्यम पुण्येन हृदयवाम यदि वा बहु देवतार्पणम बुधयाम च कृतम भोगाय कल्पयेत तस्याम च दानम च कर्तव्यम भयम सदा। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पणम बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति करने के समर्थ होते हैं। तपस्या और दान ये दोनों कर्म मनुष्य को सदा करनी चाहिए। पूजायाम शिव भक्तस्य शिव प्रीति करो भवेत। शिवस्य शिव भक्तस्य भेदो नास्ते शिवो ही सह। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। दुखस्य मूलम व्याधे व्याधमूलम हीम पातकम धर्मणैव हितम पाप नाप्योषधम मम यतेम। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्मचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। यो वेदि कर्मणा विद्या कर्मम स्मार्थमाथापि वाम अन्यता चरेत मृत्यम च संकल्पम फलम लभेत। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए संकल्प मार्थ सत्कर्म की अवलेना करने के दूसरे कर्म को करने लगता है उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीणान पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री राम दूताय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज सैटरडे 1 अगस्त हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। शिव सती चरित्र का जो हम पाठ कर रहे हैं, कल जहां से विराम लिया था, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए आज बालकांड दोहा संख्या 48 से हम आगे बढ़े। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई गुप्त रूप अवतरे उ प्रभु गए जान सब कोई। भगवान शिव हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती न जान ही मरम सोई तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। भगवान शंकर के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का जो डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे।

रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही

0: सोई कपत कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपत मृग बन गए थे। चले इस बात को हम लोग कल के कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे, आज इसको यही विराम दें। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस के माध्यम से यह वेद उपहार आपको सप्रेम भेंट, प्रस्तुत करता प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री।

यह वेद मंत्र बार बार हमको प्रेरित करता है कि हम मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करें और अमृत के बंधन से नहीं। श्रोताओं, कितना अच्छा मंत्र है, इसको हम लोग महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, यदि हम मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। दो प्रकार के बंधन हैं, एक जन्म का है, दूसरा मृत्यु का है। न जन्म हो न मृत्यु हो, ऐसी कौन सी अवस्था है? वो अंतिम अवस्था मोक्ष की अवस्था है। इसमें क्या प्रार्थना की गई है कि हम ये मृत्यु के बंधन से, जन्म के बंधन से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए बड़ी प्यारी वेद में उपमा दी है। उर्वारुकम इव बंधनात्। उर्वारुक कहते हैं खरबूज को। आपने सबने खरबूज का फल देखा होगा, वो जब पक जाता है तो डाली से सर्वथा अलग हो जाता है। ऐसे ही श्रोताओं, हमारे जीवन के अंदर जो भीतर अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, जो जन्म जन्मांतरों से हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद की, ये वासनाएं हमारे जीवन से सर्वथा अलग हो जानी चाहिए। खरबूज से हम क्या शिक्षा लें, क्या प्रेरणा लें? उसका देखिए रंग कितना अच्छा होता है, उसके अंदर रस कितना भरा हुआ होता है। रस का मतलब है उसकी मधुरता, उसकी मिठास। ऐ उपासक, तेरे जीवन के अंदर भी रस भरा होना चाहिए मिठास का। तेरी वाणी बहुत रसवती हो, तेरी वाणी के अंदर रस भरा हो। ऐसा न हो कि तेरे वाणी में कुछ और हो, तेरे कर्म में कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खरबूज से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? उसका रंग रूप एक है, उसका रस देखिए कितना मिठास है। तो उससे हम कुछ आइडियल, कुछ प्रेरणा हम लें, कुछ शिक्षा लें, जैसे उसके अंदर रस भरा हुआ है। हमारे जीवन के अंदर, भक्तों के अंदर भी अर्थात मधुरता का रस हो। हम जब भी किसी से मिलें तो वाचम वदामि मधुमद भूयासम मधुसंदृशः, हम मिठास भरी वाणी का प्रयोग करें, एक रूपता उसके अंदर होती है। कहते हैं ना, जैसे खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है, ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन एक निष्ठ हो, जैसा हम वाणी से बोलें वैसा ही करें, और वैसा ही हमारे भीतर के अंदर होना चाहिए। तो खरबूजे की बहुत विशेषताएं हैं, उसका रूप, उसका रंग, उसका रस मधुरता से भरा है। प्रकृति के डाल के बंधन से जब अलग हो जाता है तो सर्वथा पक जाता है। ऐसे

ही हमारा जीवन भी अनेक प्रकार के जो जो हमारे अंदर वासनाएं छिपी पड़ी हैं वो बाहर निकल जाए। तो इसीलिए तो वेद के अंदर इतनी सुंदर खरबूजी के ही उपमा दी है परमात्मा ने कि यदि तुम मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो उस खरबूजे को अपने जीवन का एक आदर्श मानो, उसके अनुकूल आपका जीवन हो। खरबूजे को जब काटते हैं तो कितना मिठास उसके अंदर है। वो कहता है कि देखो मेरे भीतर रस, मेरे बाहर रस, और मेरी एक रूपता है मेरे जीवन के अंदर, ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। यही इस मंत्र के अंदर प्रार्थना है, मृत्यु से बंधन से छुड़ाओ और अमृत को प्राप्त

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

प्रतिवोचि दीवयन्तम् सुम्नैरिद्वा विवासे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद श्रावण मास वेद मास के पावन अवसर पर वेद संदेश श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। श्रोताओं, आज का विषय है धर्मात्माओं की दोस्ती, अर्थात वेद का क्या संदेश है, क्या आदेश है, इस मंत्र के माध्यम से यहाँ पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र का पाठ जो मैंने किया उसका अर्थ है इस प्रकार से, मनुष्य को योग्य है कि न अपने शत्रु और न मित्र के शत्रु में प्रीति करें। मित्र की रक्षा और विद्वान की प्रिय वाक्य, भोजन, वस्त्र, पान आदि से सेवा सदा करनी चाहिए, क्योंकि मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं कर सकता। इससे विद्वान लोग बहुत से धर्मात्माओं को मित्र करें। श्रोताओं, यहाँ पर जो दो शब्द पर हमें ध्यान देना है वह यह है, अपने और मित्र। यहाँ अपने कौन और मित्र कौन? अपने का अर्थ होता है आत्मा और मित्र का अर्थ होता है शरीर, अर्थात शरीर और आत्मा, अर्थात जो है आत्मा आध्यात्मिक, शरीर भौतिक। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि आत्मा के शत्रु और मित्र के शत्रु, अर्थात आत्मा के शत्रु कौन और शरीर का शत्रु कौन। आत्मा का शत्रु है अज्ञान और शरीर का शत्रु है अपने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों का दुरुपयोग। सबसे पहले हम ज्ञान को लेते हैं। ज्ञान की दृष्टि से परमपिता परमात्मा का ज्ञान से ही आत्मा का लक्ष्य संभव है, मोक्ष को प्राप्त करना। और मोक्ष शरीर के बिना कर्म अर्थात निरर्थक है। आत्मा को चाहे शरीर कर्म के करने लिए, और यह शरीर जो है उनके पांच ज्ञान इंद्रियां सही सही जब कार्य करती है तो आत्मा की उन्नति निश्चित जानो, अन्यथा अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो ये जो है आत्मा अर्थात जो शरीर है, जो माध्यम है मोक्ष का, वह शरीर

इंद्रियों का दुरुपयोग अर्थात शत्रुता की ओर बढ़ जाती हैं। कहने का तात्पर्य है श्रोताओं, हमारे जो पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, आँख से वेद के अनुसार हम देखें, जो अपने नाक से वेद के अनुसार जो है हम गंध का सेवन करें, इसी प्रकार से कान, इसी प्रकार से जिह्वा और त्वचा, जो पांच ज्ञान इंद्रिय

और आत्मा को परमपिता परमात्मा का ज्ञान से ही जो है उनका जीवन सार्थक माना जाएगा, अर्थात मनुष्य जीवन सार्थक माना जाएगा। अंत में यह बाकी कि जो है मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं कर सकता। यहाँ पुरुष का अर्थ है आत्मा। श्रोताओं, बहुत बहुत सौभाग्य आपका, आपने ध्यान से सुना, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्।
1: ईश्वर आपकी कृपा से राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान के तेज से कुशल ब्राह्मण उत्पन्न हो, बाहुबल से शूर महारथी उत्पन्न हो, शत्रुओं को पराजित करने वाले शस्त्र अस्त्रों के संचालन में निपुण क्षत्रिय उत्पन्न हो। ईश्वर की कृपा से राष्ट्र में दुधारू गौएं की वृद्धि हो, स्त्रियां बुद्धिमती विदुषी एवं प्रत्येक कार्य में कुशल हो, यजमानों की उत्तम संतान हो, औषधि वनस्पति लता वृक्ष फल फूल आदि की कमी न हो, इच्छा अनुसार वर्षा होती रहे, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो और प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में सभी तत्पर रहें।

0: हमें कुशल चालक के समान अपने जीवन रूपी सवारी को सावधानी से चलाना चाहिए, तभी हम निर्विघ्नता पूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे शीघ्रगामी नवीन वाहन कुशल चालक द्वारा जल्दी से अपने वांछित स्थान पर पहुंच जाता है और सवारी को आराम से पहुंचा देता है, वैसे ही विद्वान आप्त पुरुष अपने विद्या द्वारा अन्यों को प्रगति के शिखर पर शीघ्र पहुंचा देते हैं। अतः श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि स्वार्थ, अहंकार, पक्षपात और वैर भाव से रहित होकर अपने शिष्यों को सद्विद्या प्रदान करें और उनके जन्म को सफल बनावे।
1: ओम कांडात कांडात प्रहुरन्ति परुषः परुषस्परी एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन च।
0: दुर्वा औषधि रोगों का नाश और सुख को बढ़ाने वाली होती है। यह धरती को सुंदर बनाती है और दूर तक फैली होती है। इससे हजारों सकारात्मक तरंगे निकलती हैं। इनके सब अवयवों और गांठ गांठ से ऊर्जा का संचार होता है।

जैसे दूर्वा औषधि हरी भरी रहती हैं और सबको प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार हम भी स्वस्थ रहते हुए अपने कुल, संतान, समाज और राष्ट्र की उन्नति में तत्पर रहें। जैसे दूर्वा औषधि सबके स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, वैसे ही हम भी अपने स्वास्थ्य की ओर उचित ध्यान देवें। जैसे दूर्वा व्यापक रूप से फैल जाती हैं, वैसे ही परमात्मा हम सबको पुत्र, पौत्र और ऐश्वर्य से विस्तृत करें।

0: ओ सुप्रभात, घर मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम टीना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल संशोधनों के साथ पारित कर दिए गए। इन दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है। इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में संशोधन किए गए। पेंशन रिफॉर्म से जुड़े संशोधनों पर सदन में तीखी बहस हुई। विपक्ष नेता जूली शोंगाओ ने वोट बाय डिवीजन की मांग की। पर्यटन जूनियर मिनिस्टर सिडनी पियर सरकार के एकमात्र सदस्य रहे जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया। वहीं विपक्ष के 5 सांसदों ने भी इसके खिलाफ वोट दिया। वैसे राष्ट्रीय सभा की कार्य अब मंगलवार 4 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि टारगेटिंग का उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों को अधिक सहायता देना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे। पेंशन की राशि पर अब हर साल जीवन के खर्च के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। ये बढ़ोतरी हर साल जनवरी महीने से लागू होगी। ये व्यवस्था कानून में शामिल की जाएगी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो ने कल रात राष्ट्रीय सभा में बहस के दौरान इसकी जानकारी दी। और कोविड-19 महामारी के समय खरीदे गए वेंटिलेटर लेकिन कभी नहीं मिले वेंटिलेटर मशीनों के मामले में सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। कल कैबिनेट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 2 कंपनियों के खिलाफ स्पेन के कोर्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है। ये 2 कंपनियां हैं पैक एंड ब्लिस्टर और मेडिटेरेनियन हेल्थ केयर सप्लाई नेटवर्क SL। ये फैसला एक स्पेन की एक लो फर्म की शुरुआती जाँच के बाद लिया गया। इस फर्म का मानना है कि 2020 में वेंटिलेटर मशीनों की खरीद के लिए खर्च किए गए करीब 103 मिलियन रुपये वापस प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि ये मशीनें कभी पहुंचाई ही नहीं गई। और विदेश में मोरक्को की सीमा से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेयूटा में गुरुवार को हजारों प्रवासी घुस गए। प्रवासियों ने बॉर्डर की बार तोड़कर स्पेन में प्रवेश कर दिया जिसके दौरान कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई। अब स्पेन ने इलाके

0: की में मोरक्को के साथ लगी सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला लिया है। और अंत में मौसम का हाल, पूर्व की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वानुमान आज दिन भर बादल ही रहेंगे, खासकर देश के पूर्वी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल बादल पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर रात्रि के समय। सूर्योदय आज 6:39 पर और सूर्यास्त शाम के 5:52 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Masti.
0: इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: 819 kilowatts. This is Radio Mauritius.
5: मंदिर में माथा टेकने से या गंगा में नहाने से पाप कभी कम नहीं होता। मंदिर में माथा टेकने से या गंगा में नहाने से पाप कभी कम नहीं होता। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपने किसी को रुलाया है, तो एक न एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। यह है AM2 रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज़ पर NBC का म्यूजिकल AM2 रेडियो चैनल। सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। नई सुबह, नए दिन का आगाज कीजिए रेडियो मॉरिशस के साथ। और आज है शनिवार, शनिवार 1 अगस्त साल 2026, नए महीने की शुरुआत। जी हाँ, जुलाई का महीना चला गया। गुड बाय जुलाई, वेलकम अगस्त। जी हाँ, अगस्त का ये महीना सभी के लिए अच्छी तरह से बीते और हम हैं यहाँ पर आप लोगों का साथ दे रहे। जी हाँ, अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। और बता दें कि हमारा प्रसारण चल रहा है लाइव रेडियो मॉरिशस चैनल पर, साथ में हमारे टिकटॉक पेज पर भी, जहाँ पर आप हमें देख सकते हैं। सो हमारे जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर, हम कहेंगे सुस्वागतम, वेलकम। और सुबह का वक्त है तो बस हम यही आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल है, परिवार में प्यार है, रिश्तों में मिठास है और बेशक जिंदगी अच्छी तरह से चल रही है। उतार चढ़ाव के बावजूद जीना पड़ता है, अपनी लीला से ही अपनों के लिए तो जीना पड़ता है कि नहीं। बस यही प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि आज शनिवार की सुबह और शनिवार का ये दिवस आप सभी के लिए मंगल ही मंगल हो, कल्याणकारी हो। आज आप जो भी कार्य करें उस कार्य में आपको सफलता मिले और आज दिन भर आप मुस्कुराते रहे। इन्हीं विचारों के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रोग्राम की ओर। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रोग्राम है वैदिक नाथ।

0: राठौट राजपूत महासभा की ओर से आइए सुनिए
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता
2: आनंद मंगल करूं
0: वैदिक नाथ
2: जय गायत्री माता
3: ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै

0: मानते हैं।
1: श्रावण मास की पहली तिथि अगस्त महीना का कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 2026। सुप्र

भाछुता गण, श्रावण मास में विशेष यज्ञ हवन से वातावरण को पवित्र किया जा रहा है। सभी को श्रावण मास अभिनंदन। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम्। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से वैदिक नाथ कार्यक्रम के सभी श्रद्धेय श्रोताओं का अभिवादन और पंडिता सुनीता रोजन बुदोई का सादर सप्रेम नमस्ते। संस्कार विधि से लिया गया यह मंत्र है, मनु महाराज का वचन है कि अभिवादन करने का जिसका स्वभाव और विद्या का अवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है उसकी अवस्था विद्या कीर्ति और बल इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि आचार्य माता पिता अतिथि महात्मा आदि अपने बड़ों को नित्य नमस्कार किया करे। प्रस्तुत ऋग्वेद का यह मंत्र यत्ते

यंदो परिस्नवा। अर्थ, हे राजन, परमात्मा यत्ते श्रुतम हवि, जो आपका पका फल तुल्य हवि है, मतलब संविधान के रूप में सब विषयों से परिपूर्ण कल्याणकारक एवं पुष्टिकारक जो वेद है, तेन उसी से नह सोमा भी रक्ष, हमारे बाल बच्चे व सांसारिक पदार्थों की रक्षा करते हो, जिससे अराति दुष्ट स्वार्थी लोग हमें मां तारित नहीं सतावे, च और नह किम चन को मो आममत, हमारे मोक्ष संबंधी किसी भी ऐश्वर्य को नष्ट भ्रष्ट न करे। हे इंदो आनंद स्वरूप परमात्मा, इंद्राय परिस्नव, परमेश्वर्य के लिए सब ओर से हमें सुख की वृष्टि करो। इसी बात की पुष्टि अर्थ आश्वालायन गृह्य सूत्रम के श्रावणी उपाकर्म के मंत्र ने समुचित स्थान प्राप्त किया है। मनुष्य जहाँ एक सामाजिक प्राणी है, वहाँ इसके लिए हर देश में राज्य की व्यवस्था करनी होती है। सरकार बनाना, नियमों को संविधान में पारित करने होते हैं, सैनिकों की नियुक्ति से विदेशी आतंकवादी आक्रमणों से देश को बचाना होता है, पुलिस की व्यवस्था से चोर डाकुओं के अत्याचारों से लोगों को बचाना होता है, अध्यापकों की नियुक्ति से बच्चों को शिक्षा युक्त करते हैं, चिकित्सालयों व अनाथालयों के निर्माण आदि से मरीजों व अनाथों की सेवा की जाती है। स्वामी दयानंद का कथन है, जैसे आँख का काम है देखना और कान का काम है सुनना, और देखने या सुनने में आँख या कान का कोई उद्देश्य नहीं होता, परंतु वह तो उसका प्राकृतिक स्वभाव ही है। इसी प्रकार सृष्टि की रचना करना नारायण का भी काम ही है, और सृष्टि को उत्पन्न करने अथवा उसके संहार करने में उसका उद्देश्य कोई नहीं है। सुतागण, प्रस्तुत ऋग्वेद का और एक मंत्र, संवत्सरम शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचम पर्जन्य जिन्विताम प्रमंडुका अवादिशुः। ब्राह्मणा, ब्रह्म वेद के साथ संबंध रखने वाले व्रतचारिणः, व्रती लोग, संवत्सर शशयाना, एक वर्ष के अनंतर पर्जन्य जिन्विताम, तृप्तिकारक परमात्मा के साथ संबंध रखने वाली वाचम, वाणी को प्रावादिशु, बोलने लगे मंडुका। वेदों का मंडन करने वाले इस मंत्र में परमात्मा ने मेंढक की उपमोदाहरण देकर यह भी सिद्ध कर दिया कि जो सृष्टि के आदि में अपौरुषेय ऋषि लोग थे, वे लोग भी हर साल

वर्षा ऋतु में वेद का पुनः स्वाध्याय करते थे। इस बात से हम ऐसा कह सकते हैं कि श्रावणी उपाकर्म पर्व सृष्टि के आदि से ही व्यवस्थित कर्म हैं। वैसे भी वेद का दूसरा मंत्र भी इस बात को समुचित पुष्ट करता है। अतिवायो ससतो याहि शाश्वतो यत्र ग्रावा वदति तत्र गच्छतम गृहमिन्द्रश्च गच्छतम विसूनृता ददृशे रियते घृतमा पूर्णया नियुता याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम। यह भी ऋग्वेद से लिया गया है। उक्त मंत्र में इंद्र पद से ऐश्वर्य वान धनवान राजा महाराजा व राजनैतिक नेताओं का भी संकेत धर दिया है। कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं कि हम वायु तुल्य उपासक लोग विद्वानों को सुनने के लिए तो जाएं, लेकिन धन संपन्न लोगों को भी क्यों लेकर जाएं? तो प्रश्न उठता है, जवाब ऐसा है, इस धार्मिक लोग धन के अभाव में भी धर्म रक्षणार्थ आश्रम गुरुकुल आदि के निर्माण में लोगों से चंदा भी इकट्ठा करते हैं। वेद का मंत्र हमें अधूरा ज्ञान नहीं देता। जहाँ ग्रावा तुल्य विद्वानों को सुनकर धर्म मार्ग को लाभान्वित होने को कहा है, तो वहाँ तत्र गच्छतम गृहमिन्द्रस्य गच्छतम, उन घरों में भी निमंत्रित होने पर इंद्र के साथ जाना चाहिए जहाँ सुन रीता की ददृशे वेद की सुनवाई होती है, और रियते घृतम, जहाँ विज्ञान का प्रकाश होता तथा घृत आदि से यज्ञ होता है। यहाँ गृहम पद से आमंत्रित घरों में जाने को कहा गया है तथा अपने घर वापस लौटने को भी कहा गया है। श्रोतागण, श्रावणी उपाकर्म क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं? श्रावणी उपाकर्म का नाम श्रवण नक्षत्र से होता है। वेद स्वाध्याय का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना यज्ञ हवन द्वारा संपन्न करते हैं। इसमें पूर्णिमा को रक्षाबंधन भी मनाते हैं। विद्वानों गुरुजनों द्वारा 4 मास तक चलता है। पूर्णाहुति गंगा स्नान को इसकी समाप्ति होती है। श्रावण सुधी पूर्णिमा को मनाते हैं। पूर्णिमा तिथि पक्ष को कहते हैं। यह जो पर्व है 4 मास तक मनाते हैं, मनाते मनाते गंगा स्नान तक चला जाता है। भारत में वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, तो वर्षा ऋतु में किसान लोग खेत नहीं जा सकते, तो वे लोग घर पर वेद पढ़ते या यज्ञहवन द्वारा वेदों का स्वाध्याय करते थे। इस पर्व को ऋषि तर्पण भी कहते हैं। मानव जीवन में हमें 3 प्रकार के ऋणों को चुकाना पड़ता है। हम सब कर्जदार हैं, ऋणी हैं हम। अब ऋण 3 प्रकार से होते हैं। पहला पितृ ऋण, पितर माता पिता दादा दादी इन सब का सेवा करना, हमें अपना कर्तव्य जानना जरूरी है, बड़ों का मान सम्मान करना। दूसरा वेद ऋण, जड़देव अग्नि वायु पानी सूर्य माता पिता भी जड़देव है। ऋषि तर्पण वेदों के विद्वानों का स्वाध्याय करना। ऋण कैसे चुकाते हैं? तो पितृ ऋण पितृ यज से, देव ऋण देव यज से, हवन द्वारा। ऋषि ऋण स्वाध्याय करने से आध्यात्मिक ज्ञान ऋषि तर्पण से। हमें यह कर्म अवश्य करना चाहिए श्रोतागण, और बच्चों को भी बताना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती का कथन है, नारायण परमेश्वर के अतिरिक्त और किसी की उपासना न करनी चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापी और सर्वत्र विद्यमान है, इन्हीं की उपासना करनी योग्य है। विद्या प्राप्त करके मन की शुद्धि करनी चाहिए और सत्य व्यवहार पूर्वक आजीविका कार्य तथा अन्य सांसारिक कार्य करने उचित हैं। प्रिय श्रोतागण, सभी की भलाई में अपनी भलाई माननी चाहिए। इन्हीं शुभ विचारों के साथ आज का वक्तव्य विराम ले रहा है। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।

0: अभी आप सुन रहे थे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से कार्यक्रम वैदिक नाद।
1: सुबह के 6:18 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति। मौसेलमों इंगन प्लान डिजेमिताज के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 1 अगस्त को दिन के 12 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सेबी इस असुविधा के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति। सुबह के 6:19 हो रहे हैं। कुछ क्षणों में 6:20 पर आप सुनेंगे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से श्रावण मास के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम हमें लेकर जाएगा सुबह के 6:30, जहां पर आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का स्पोर्ट्स रिव्यू। उसके बाद 7 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी इसी चैनल पर, रेडियो मॉरिशस पर प्रोग्राम होगा मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना, सुबह के 7 से 9 बजे के बीच। सो आशा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ अवश्य दे रहे हैं और हमारा साथ देते रहेंगे दिन के 9 बजे तक। सो याद है कुछ क्षणों में आप सुनेंगे श्रावण मास के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम।

0: सहारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मांसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शांति शांति शांति। गहलोत राजपूत महासभा मोर्चे द्वारा प्रस्तुत वेद मास के पावन अवसर पर एक विशेष वार्ता वेद के आधार पर आप समस्त श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते, हार्दिक स्वागत है सुनने के लिए। श्रोताओं, पांच तत्व से संसार और शरीर बना है। संसार का ऋतु परिवर्तन हमारे तन को प्रभावित करता है। जैसे प्रकृति में जब सर्दी होती है, गर्मी होती है, उस अवसर में हम अनुभव करते हैं कि अभी प्रकृति में ये परिवर्तन हुआ है। जो ही प्रकृति में परिवर्तन होता है, शरीर उसे प्रभावित होता है। ये कारण पांच तत्व से जो संसार बना है, उसी पांच तत्व से ये शरीर बना है, तो स्वाभाविक है संसार में जो परिवर्तन होता है वो शरीर प्रभावित होता है। सृष्टि आरंभ से यह चली आ रही है। मनुष्यों की प्रवृत्ति उन्नति मानी जाती है। उन्नत शरीर और आत्मा की बराबर होने का नाम धर्म है। अर्थात जो है शरीर वह भौतिक और आत्मा है आध्यात्मिक। इन दोनों की बराबर उन्नति को ही धर्म का

कहा जाता है। और इस बात को कनाद मुनि अपने वैशेषिक दर्शन शास्त्र में लिखा है, यत अभ्युदय निश्चयस सिद्धि सधर्म। इसका अर्थ यह होता है शरीर और आत्मा की सफलता ही धर्म है। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है, आज वर्तमान में यह देखा जाता है हम केवल शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। आप शरीर के लिए घर बनाए, शरीर को कपड़े पहनाए, शरीर के लिए अच्छी गाड़ी लीजिए, और इसके साथ साथ शरीर में अंदर जो आत्मा है उसके लिए भी कुछ करना, दोनों को बराबर लेकर चलना, शरीर और आत्मा की बराबर उन्नति को ही धर्म कहा जाता है। शरीर की सफलता ऋतु परिवर्तन अनुसार सात्विक भोजन, और आत्मा की सफलता परमात्मा का भजन। प्रकृति हमें इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जब शरीर जो भोजन चाहिए वह भोजन प्रकृति के अनुसार, जब सर्दी है सर्दियों का भोजन इस प्रकार से, गर्मियों का भोजन इस प्रकार से, इस प्रकार अगर हम करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। और उसी प्रकार से जब परमात्मा का भजन करेंगे तो आत्मा प्रसन्न, अर्थात दोनों को बराबर लेके चलना है। अर्थात वेद मंत्र पाठ अर्थ सहित करना, जो श्रावण मास में कर रहे हैं, इस श्रावण मास के अंतर्गत जो वेद मंत्र पाठ हम कर रहे हैं अर्थ सहित, उसको अर्थ को समझ करके हम अपने जीवन में लाएं तो दोनों की बराबर उन्नति हो ही जाती है। सनातन वैदिक धर्म, सनातन का अर्थ है जो कभी पुराना नहीं होता। ध्यान दीजिए यहाँ श्रोताओं, सनातन का अर्थ जो कभी पुराना नहीं होता। गायत्री मंत्र कभी पुराना नहीं होता, वेद मंत्र सनातन है। गायत्री मंत्र ये वेद मंत्र हैं और वेद मंत्र सनातन हैं। चारों वेदों में 20,416 मंत्र हैं और ये गायत्री मंत्र सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हम उसको हम उच्चारण करते आ रहे हैं, ये सनातन हैं। वैदिक का अर्थ होता है ज्ञान पूर्वक काम करना, वेद का अर्थ है ज्ञान और वैदिक का अर्थ है ज्ञान पूर्वक। अर्थात जो भी काम आप करेंगे उसको ज्ञान पूर्वक करते हैं तो होता है वैदिक। वैदिक का अर्थ ज्ञान पूर्वक काम को करना। और धर्म का अर्थ है शरीर और आत्मा की बराबर उन्नति। पूर्व में मैं बहुत प्रकार डाला इसमें। अब सनातन वैदिक धर्म का अर्थ हुआ वेद मंत्रों से शरीर और आत्मा की बराबर उन्नति करना, ये है सनातन वैदिक धर्म का अर्थ। आओ चलें उन्नति की ओर, वेद मंत्र पाठ और अर्थ सहित जैसे सुनते हैं उसको हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। श्रोताओं, आप जो हैं वेद मंत्र पाठ करते हैं, आप ये मत सोचें कि ये संस्कृत में है, संस्कृत जो है आपके लिए कठिन है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो हैं प्रतिदिन परमपिता परमात्मा के इस संसार में 24 घंटे ये चले आ रहे हैं, उन 24 घंटों में से प्रतिदिन अपने जीवन में से आप कुछ क्षण निकालना, कुछ समय निकालना, उस समय निकालना विशेषकर संधि वेला में। संधि वेला में इसे श्रावण मास चल रहा है, इसका शुभारंभ कीजिए, अपने जीवन में इसको लाइए और यहाँ से अपना अभ्यास को आगे बढ़ाइए। आरंभ तो होना ही है, चलो इस वेद मास से हम आरंभ करते हैं। अपने सायंकाल संधि वेला में संध्या के समय हम बैठेंगे। यहाँ हम बैठने का अर्थ है कि आप एकांत में बैठेंगे। कौन बैठेंगे? आँख देखना बंद कर दे, नाक सूंघना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे, जीभ चखना बंद कर दे, हाथ छूना बंद कर दे। जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं उनकी गतिविधियां से उनको आप रोक दीजिए, आप शांत बैठ जाइए। पूरा दिन आपने बहुत काम किया, शांत बैठ जाइए और परमपिता परमात्मा का ध्यान कीजिए। ध्यान आपको सुविधा के लिए, ध्यान अर्थात आप परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। आप जो है गायत्री मंत्र पाठ कीजिए, उसमें जहाँ है कि बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलें। आपका पूरा जो है दिन ठीक से बीता, बुद्धिपूर्वक बीता, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। ये बुद्धि जो है बहुत श्रेष्ठ है। गायत्री मंत्र से मांग के जाते हैं बार बार श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग। तो प्रतिदिन आप इसका अभ्यास कीजिए। श्रावण मास घर में आपके यह गायत्री मंत्र को आप उच्चारण कीजिए।

धारण कीजिए, इसके कंपन से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में विद्यमान रहेगा। आप इस भूल भुलैया में न रहें कि जो नहीं नहीं जो इसे करेंगे वैसे आपको मिलेगा। श्रोताओं, श्रावण मास है, लाभ उठाइए। परमपिता परमात्मा की वाणी वेद है, अपनी वाणी से उसको उच्चारण कीजिए। घर को, जीवन को, शरीर आत्मा को महान बनाइए। आपने ध्यान से सुना, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 6:30 बज रहे हैं।

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के तहत प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा, पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। इस बीच फाइनेंस बिल संशोधनों के साथ पारित हो गया है। कैबिनेट ने मॉरिशस और सऊदी अरेबिया के बीच ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर की तैयारी को मंजूरी दी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस इस शनिवार विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर पहली वार्षिक कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। विदेश में स्पेन के सेयूता क्षेत्र में मोरक्को सीमा से हजारों प्रवासी घुस आए, इस घटना में 41 लोगों की मौत हुई है। अरब समाचार विस्तार से। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन की टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि टारगेटिंग का उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों को अधिक सहायता देना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे। उनको सुनते हैं।
1: These bills are about putting in place a modern, fair and future-ready fiscal and regulatory framework which will support growth but also protect the vulnerable. The amendment before the House will help to consolidate our public finances while safeguarding critical social spending. It will enhance transparency and compliance in our tax and financial systems and it will support investment, innovation, job creation across all sectors, while also reinforcing our reputation as a clean, well-regulated international financial center.
0: कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल संशोधनों के साथ पारित कर दिए गए। इन दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है। इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में संशोधन किए गए। पेंशन रिफॉर्म से जुड़े संशोधनों पर सदन में तीखी बहस हुई। विपक्ष नेता जो लिजोंगा ने वोट पर बाय डिवीजन की मांग की। पर्यटन जूनियर मिनिस्टर सिडनी पियर सरकार के एकमात्र सदस्य रहे जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया। वहीं विपक्ष के 5 सांसदों ने भी इसके खिलाफ वोट दिया। राष्ट्रसभा के कार्य वैसे अब मंगलवार 4 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं और पर्यटन जूनियर मिनिस्टर सिडनी पियर को उनके पद से हटा दिया गया है। ये फैसला प्रधानमंत्री ने कल रात लिया। राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने नेशनल पेंशन एक्ट में किए गए संशोधनों के खिलाफ मतदान किया जो सरकार की नीति के विपरीत था। सिडनी पियर को पद से हटाने की घोषणा

0: व्हाइट हाउस के एक आधिकारिक बयान में की गई। पेंशन की राशि अब हर साल जीवन के खर्च के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। ये बढ़ोतरी हर साल जनवरी महीने से लागू होगी। ये व्यवस्था कानून में शामिल की जाएगी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कल रात राज्यसभा में बहस के दौरान इसकी जानकारी दी। उनको सुनते हैं।
1: And this is for the first time in the history of the country. Pensioners' pension will be readjusted when every January, taking into consideration the cost of living. Of course, cost of living is measured with the CPI. I've heard some of the opposition people saying that it should not have been cost of living. This is semantic. And so it will be adjusted. And the principle of the increase is legally enshrined in the law now, every January. And this is not very different from workers' compensation.
0: दूसरी तरफ विपक्ष नेता बलबीर होंगे ने इस बदलाव में स्पष्टता की कमी होने की बात कही। आइए उनको सुनते हैं।
2: Dans le finance bill, il était proposé que les pensions may be increased chaque année en se basant sur le taux d'inflation de l'année précédente, mais à la discrétion du gouvernement. Un amendement est devant nous. Je souhaite que ça ne va pas changer entre temps parce que j'ai entendu un ministre dire qu'il y aura d'autres amendements. Nous ne sommes toujours pas en présence de ces amendements. Mais en tous les cas, un amendement est devant nous qui a été circulé mardi dernier, qui propose que les pensions shall increase by a chiffre that may be prescribed.
0: और कोविड 19 महामारी के समय खरीदे गए लेकिन कभी नहीं मिले वेंटिलेटर मशीनों के मामले में सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। कल कैबिनेट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को दो कंपनियों के खिलाफ स्पेन के कोर्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है। ये दो कंपनियां हैं पैक एंड ब्लिस्टर SL और मेडिटेरियन हेल्थ केयर सप्लाई नेटवर्क SL। ये फैसला एक स्पेन की लो फर्म की शुरुआती जाँच के बाद लिया गया। इस लो फर्म का मानना है कि 2020 में वेंटिलेटर मशीनों की खरीद के लिए खर्च किए गए करीब 103 मिलियन रुपये वापस प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि ये मशीनें कभी पहुंचाई ही नहीं गई। मॉरिशस और सऊदी अरेबिया के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर करने की तैयारी हो रही है। इस फैसले को कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। ये समझौता दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रालयों के बीच सहयोग का एक ढांचा तैयार करेगा जिससे अनुभव जानकारी और अच्छी कार्य पद्धतियों का आदान प्रदान बढ़ेगा। इसके तहत पेट्रोलियम गैस नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा और इस MOU में क्लाइमेट चेंज से निपटने से जुड़ी तकनीकों सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग शामिल है। कैबिनेट ने ऐसे बच्चों की देखभाल से जुड़ा नया कानून तैयार करने को भी मंजूरी दे दी है जिनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं। इस पर जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय काम करेगा। इस प्रस्ताव में विशेष रूप से शुरुआती स्तर पर सहायता, चिल्ड्रंस कोर्ट द्वारा निगरानी, माता पिता को मार्गदर्शन तथा आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को किसी विशेष संस्थान में रखने का प्रावधान शामिल है और विशेष संस्थान का संचालन करने के लिए एक अलग संस्था भी बनाई जाएगी। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस शनिवार अपनी पहली वार्षिक कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी मॉरिशस के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही है। इस दौरान बिजनेस की दुनिया में ह्यूमन राइट्स और अतीत में हुए अन्याय के लिए न्याय और उचित मुआवजे पर चर्चा होगी। ये चर्चा हाल ही में यूनाइटेड नेशंस द्वारा पारित उस रिजोल्यूशन के संदर्भ में होगी जिसमें ट्रांस अटलांटिक अफ्रीकी लोगों की ट्रैफिकिंग को मान्यता के खिलाफ अपराध माना गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की डेप्यूटी चेयरपर्सन नाजा अहमद को सुनते हैं जिनसे जेनी येलापान ने बातचीत की।
3: L'objectif de notre conférence

0: c'est ben, d'amener autour d'une même table des universités.
1: हमारे सम्मेलन का उद्देश्य है यूनिवर्सिटी के अधिकारियों, सार्वजनिक उच्च अधिकारियों, सिविल सोसाइटी आदि को एक साथ लाना ताकि गंभीरता के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। हम वर्तमान कानूनी ढांचों का अध्ययन करना चाहते हैं, उद्योगों की जिम्मेदारियों के स्तर को जानना चाहते हैं और रिकंसिलिएशन पर विचार करना चाहते हैं। साथ में ठोस समाधान ढूंढना चाहते हैं ताकि हर एक व्यक्ति के अधिकारों की बेहतर रक्षा की जा सके।
2: और जेल से बाहर आने के बाद हर व्यक्ति को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, इसी सोच के साथ महिला जेल की लगभग 40 कैदियों को बाल काटने, सिलाई, बेकरी और कृषि जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये पहल किन्वेती एसोसिएशन की ओर से शुरू की गई है। इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग का शुभारंभ समारोह शुक्रवार 31 जुलाई को महिला जेल में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम MITD के सहयोग से किया गया। प्रिजन कमिश्नर रशीद अली बिकन ने बताया कि इन ट्रेनिंग्स से कैदियों को समाज में दोबारा शामिल होने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कौशल प्राप्त होंगे। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
3: C'est vraiment impressionnant dans le sens qui te permet d'être bien ce qu'on appelle un skill.
4: प्रिजन्स कमिश्नर रशीद अली बिकन कहते हैं ये एक सराहनीय परियोजना है जिसके तहत इन महिलाओं को अपनी प्रतिभाएं विकसित करने का मौका मिल रहा है ताकि जब वे कैद से छूटें तो वे बाहर इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जैसे वे परिवार वालों के बाल काट सकेंगी और शुरुआती तौर पर किसी सलून में भी काम कर सकेंगी, जबकि आगे चलकर वे अपना खुद का सलून भी खोल सकेंगी। हम देखते हैं कि आज इस काम की कितनी मांगे हैं। इस सहयोग और समर्थन के लिए मैं गैर सरकारी संगठन किन्वेती का आभार प्रकट करता हूं, चाहे वो महिला कैद खाना हो या पुरुषों का। ये संगठन कैदियों के पुनर्वास के लिए अथक प्रयास करता है।
3: Que ce soit dans des prisons femmes et prisons hommes aussi, ok, ils sont là dans un programme de réhabilitation.
2: विदेश में मोरक्को की सीमा से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेउटा में गुरुवार को हजारों प्रवासी घुस आए। प्रवासियों ने बॉर्डर की बार तोड़कर स्पेन में प्रवेश कर लिया, जिसके बाद कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई। अब स्पेन इलाके में मोरक्को के साथ लगी सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला लिया है। देश विदेशी खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। पूर्व की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वानुमान आज दिन भर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर देश के आधे हिस्से में, पूर्वी इलाकों में और ऊंचे इलाकों पर। तापमान सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। और सूर्योदय वैसे आज 6:39 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:52 पर होगा।

मौसम संबंधी जानकारियों के बाद आइए आज की प्रमुख खबरों को दोहराती है। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के तहत प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा, पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। इस बीच फाइनेंस बिल संशोधनों के साथ पारित हो गया। कैबिनेट ने मॉरिशस और सऊदी अरेबिया के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर की तैयारी को मंजूरी दी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी मॉरिशस इस शनिवार विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस

0: के अवसर पर पहली वार्षिक कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। विदेश में स्पेन के सेउटा क्षेत्र में मोरक्को सीमा से हजारों प्रवासी घुस आए, इस घटना में 41 लोगों की मौत हुई है। तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कादर और कपिल का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Jagannath Road, Rivière du Rempart, mais Jagannath Road, Rivière du Rempart, mais 67 साल की 67 years old की श्रीमती अंजनी शिचम, श्रीमती अंजनी शिचम पैदाइश नाम गणपत और जो चंद्रानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके बेटे श्री हेमंत कुमार शिवचम के घर जगन्नाथ रोड रिवियर चौपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 11:30 AM। नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाली पीटियो में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नंदनी देवी सिंह, पैदाइशी नाम दुबोरी और जो सीमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे उनके पिता श्री रमेश दुबोरी के घर नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाली पीटो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबॉ की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमारो एट 1:30 PM। रिजर्वोआर रोड कॉन्फुकोमी 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल रफीक चिकोरी जो रफीक नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के 10 बजे उनके मकान रिजर्वोआर रोड कॉन्फुकोम से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए कॉन्फुकोम की ताइबा मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए फिनिक्स के कब्रस्तान फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। अटलास रोड गुडलैंड्स में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आकामा नारायडू पैदाइशी नाम चिन्या और जो पिनम चिंता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे श्री राज नहाइडू के घर आतास्रोत गुडलैंड से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रॉय रोड ब्रिजेवेडिया में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री दयानंद काशीराम जो जुपा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके घर रोड ब्रिजेवेडिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। लंदन में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री दयानंद काशीराम जो जुपा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले रॉयल रोड ब्रिजेवेडिया रहते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके घर साउथ गेट लंदन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए साउथ गेट लंदन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। सेवोक लेन सेबास्तोपोल में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री अनिल कुमार सेवोक जो लेविस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज सुबह 3 बजे

जी आज सुबह 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती गीता से वो के घर से वो क्लेन सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजी इनका उदयमास की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM राय रोड ब्रह्मस्थान में, राय रोड ब्रह्मस्थान में वासुदेव रोशनी स्कूल के पास, वासुदेव रोशनी स्कूल के पास 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री रामानंद देवी, श्री रामानंद देवी जो प्यों रामानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, मृत्यु हो गई उनकी अर्थी। आज दिन के 10 बजे उनके घर रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM सुमंदर लेन पायोत में, सुमंदर लेन पायोत में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती शंकर, श्रीमती तारामती शंकर जो तारामती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और जो रजनी शंकर की माँ थी, मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी। आज दिन के बारह बजे उनके घर समंदर लेन पायोत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नोन नंबर 70 मोंसेलमो रामफल प्लेन दे पापा एमी, नंबर 70 मोंसेलमो रामफल प्लेन दे पापा एमी 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री रामाकृष्णा नारायणा रेड्डी, श्री रामाकृष्णा नारायणा रेड्डी जो या देवन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, मृत्यु हो गई उनकी अर्थी। आज दिन के डेढ़ बजे उनकी पत्नी श्रीमती पेचाय नारायणा रेड्डी के घर नंबर 70 मोंसेलमो रामफल पेंडे पापा से उठाकर दफनाने के लिए पेंडे पापा की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM अलीमोंग पोस्ट द फ्लाक में, अलीमोंग पोस्ट द फ्लाक में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री जमन लाल गंगू जो देव की शुफाबिस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, मृत्यु हो गई उनकी अर्थी। आज दिन के 10 बजे उनके घर अलीमोंग पजफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पजफ्लाक की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM रिश्मा फ्लाक में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रावती राम जावन पैदाशी नाम फ़ाकीरा और जो इंद्रावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी। आज इनके 9 बजे उनकी बेटी श्रीमती प्रेमिता गजाधर के घर रिश्मा फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9 AM KGW Lane Le Rouge Terre Rouge में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री मानिको मुताई जो मानिको नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी। आज दिन के 10 बजे उनके घर KGW Lane Le Rouge Terre Rouge से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वालिद फैद की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM A01 Dudu NHDC La Tourquenec में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पालम्बल अप्या जो याया तौंतीन लाबुचिक नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी। आज इनके 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती शास्त्री अप्या के घर A01 Dudu NHDC लातो के निक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वालिद फैद की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM एवेन्यू ड्रापे बेलरोज में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भाग्या बुलका जो भाग्या हाबित नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी। कल रविवार को सुबह तीन बजे उनके घर आवेन्यू ड्रापे बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडीगार्ड की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 3 PM और फॉरेस्ट पार्क हेनोल्ट रोड आईफोर्ड IG6 3HP इंग्लैंड में
Freesburg, Hinoltrode, Ifold, IG6, 3HP, England Me,

63 साल की, 63 years old की श्रीमती रूपा मंगरू, श्रीमती रूपा मंगरू जो गोविंद मंगरू की बेटी थी, मृत्यु हो गई है, और जो पहले वैसे बैलेंस सूरी नाम रहती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन, आज मर्शन समय अनुसार दिन के

मौसम समय अनुसार सुपहर 3:30 बजे इंग्लैंड से उठाई जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM. शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्पोर्ट्स न्यूज़। वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने 2 और मेडल्स जीते हैं। नोमी अल्फोंस ने 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि मेविन क्लेल ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ज्यादा जानकारी स्पोर्ट्स बुलेटिन में विकास रामदनी के साथ।

सुबह के 6:55 और 22 सेकंड सुनने वालों को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे एथलीटों ने ग्लासगो में मॉरिशस राष्ट्र का नाम ऊंचा किया, तो उधर फीफा के अध्यक्ष ज्यानी इन्फांटिनो ने विश्व फुटबॉल का नाम नीचा किया। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने इन्फांटिनो को फीफा का नेतृत्व करने वाला रॉन्ग मैन बताया है। इन तमाम विरोध के चलते आज सुबह ही अभी से कुछ ही मिनट पहले इन्फांटिनो ने अपना प्रस्ताव खारिज किया। पर सबसे पहले द राइट मैन एंड वुमेन की बात करें, नोएमी अल्फोंस ने जीता सिल्वर मेडल मॉरिशस के लिए यानी रजत का पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो मेवे क्लेयर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर पाया। इन दो पदकों के बल पर कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका में मेडल टेबल में मॉरिशस भी शामिल हो गया है। हम 23rd स्थान पर है और आज भी पदक जीतने की बड़ी उम्मीद है। इन खेलों में ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे निकल गया है 51 स्वर्ण पदकों के साथ। लगता है उसे कॉमनवेल्थ गेम से ही बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड केवल 15 गोल्ड मेडल्स, कनाडा 15, मेजबान स्कॉटलैंड ने अब तक 10 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, तो भारत 8वें स्थान पर आ गया है कुल 19 पदकों के साथ, जिनमें 5 स्वर्ण, 10 चांदी के और 4 कांस्य पदक हैं। अमिता डे ने जूडो में गोल्ड मेडल हासिल किया और वो इस खेल में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। लड़कों में हर्ष सिंह ने भी जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। हमारी अपनी नोएमी अल्फोंस ने 400 मीटर T54 रेस में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल हासिल किया, तो बॉक्सिंग में मेवे क्लेयर सेमीफाइनल में जाकर हार गया वेल्स के होली सोतोमी के सामने। उसे मिला ब्रॉन्ज मेडल, हार्दिक बधाई। और उल्लेखनीय है कि जूडो में फिर आज हमारे कुछ खिलाड़ी एवं एथलीट्स टेटामी पर उतरेंगे। सो आज का प्रोग्राम इस प्रकार है। याद रहे कि आज राष्ट्रमंडल खेलों का पूर्वांतिम दिन है, कल समापन समारोह। आज दिन के 10 बजे से ही हमारे पारा एथलीट सिद्धिक बैना मेंस शॉटपुट के फाइनल में अपनी किस्मत आजमाएगा, तो सिद्धिक गावे 1500 मीटर के फाइनल में रेस दौड़ेगा। क्रिस्टोफर सूफी मेंस डिस्कस थ्रो के फाइनल में होगा दिन के 10 बजे से ही। जबकि जूडो में नोएमी एवनो लड़कियों में और लड़कों में रेमी फेये दिन के 10 बजे से ही अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। फिर लगभग 1 बजे से 4 बार 100 मीटर रेस का पहला राउंड निर्धारित है, जिसमें हमारे क्वाचियो नोआ बीबी, जेरेमी लारा रोडेज, ओफे टोपीज और जोशान वेंकटसामी देश का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे इस समय स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। रात के 7:25 पर मॉरिशस की सारी उम्मीदें पारा एथलेटिक की 400 मीटर T54 रेस पर होंगी, जिसमें नोएमी अल्फोंस के साथ ब्रांडी पेरिन भी मेडल लाने का प्रयास

करेंगे। तो इतना सब कुछ राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर, जिसका समापन समारोह कल ग्लासगो में निर्धारित है। इसलिए कम ऑन मॉरिशस, चले चलो लाइव MBC के चैनल 11 पर ये राष्ट्रमंडल खेलों का सीधा प्रसारण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा में आग लग गई है, हाहाकार मच गया है। जब से इसी गुरुवार से फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फांटिनो ने ऐलान किया कि संस्था की प्रमुख घटनाओं, जिनमें वर्ल्ड कप भी है, का आयोजन एक कमर्शियल सब्सिडियरी कंपनी को दिया जाएगा, तब से विश्व भर के फुटबॉल राष्ट्रों में भूचाल आ गया। इस प्रस्ताव को यदि बहुमत यानी मेजोरिटी वोट के बाद ही पारित किया जा सकता था तो 211 में से 136 देशों ने इसका अभी से ही खुलकर विरोध कर दिया है। UEFA यूरोप के 55 देश, कॉन्काकाफ के 35 और एशिया फुटबॉल कन्फेडरेशन के 46 फुटबॉल राष्ट्रों ने, कुल मिलाकर 136 फुटबॉल राष्ट्रों ने इसका खुलकर विरोध किया, यानी कि बहुमत प्राप्त नहीं है। इसीलिए आज सुबह ही ज्ञानी इन्फांटिनो ने एक यूटर्न किया और इन सब विरोधों के सामने उसने सब खारिज कर दिया ये प्लान। नो टू फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज, जिसका मालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दामाद बताया जा रहा है, थ्राइव इटर्नल इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाला है, जिसका फाउंडर है जोशुआ कुशनेया, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेद का भाई है। यानी बहुत करप्शन है, इसीलिए सबसे पहले UEFA, कॉन्काकाफ और AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने इस प्लान को का खंडन किया। फिर ज्ञानी इन्फांटिनो के वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइजर कार्लोस काउडेरो ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तत्पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने जले पर नमक छिड़कते हुए इन्फांटिनो के रेजिग्नेशन त्यागपत्र की मांग की। बर्नहम के मुताबिक ऐसा बेहुदा ख्याल लाना ही साबित करता है कि इन्फांटिनो इज द रॉन्ग मैन। और कल रात फीफा के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर केविन लामू ने फुटबॉल के प्रति अपना प्रेम जताते हुए इसे एक आदमी का प्रोजेक्ट कहा। अब चाहे मेरी नौकरी ही क्यों न चली जाए, कम से कम मुझे चैन की नींद तो आएगी, कहा केविन लामू ने। लामू यानी प्यार तो हमें इंग्लिश फुटबॉल से भी है। बता दें कि आज सुबह ही इन्फांटिनो ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया। जिसका प्रीमियर लीग का नया सीज़न 21 अगस्त से शुरू हो रहा है। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने यदि फिर पैसे बहाकर कई खिलाड़ियों को आकृष्ट किया तो इधर उसका पुराना विंगर यूक्रेन का 25 वर्षीय मिखाइलो मुड्रिक फिर से खेलने के लिए आज़ाद है। ये बात अलग है कि क्लब को चेल्सी को 10 मिलियन पाउंड का जुर्माना भरना पड़ेगा। साल 2009 से 2022 के बीच उसने ट्रांसफ़र नियमों का उल्लंघन जो किया था, लेकिन मुड्रिच फिर खेलने के लिए तैयार है। याद रहे कि अक्टूबर 2024 में यूक्रेन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ड्यूटी के दौरान डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंधित पदार्थ मेल्डोनियम की कम मात्रा पाए जाने के बाद उसे 5 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। बाद में मुड्रिक ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS में अपील की। अब FA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA और मुड्रिक के बीच समझौते के बाद मामला सुलझ गया है। FA ने कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार यदि यही जांच आज होती तो कोई बुरा नतीजा या एडवर्स फाइंडिंग्स सामने नहीं आता। मिखाइलो मुड्रिक ने इसे अपनी करियर का सबसे कठिन दौर बताते हुए अपनी वापसी पर खुशी और चेल्सी फुटबॉल क्लब के प्रति आभार प्रकट किया। द ब्लूज ने भी मुड्रिक के फिटनेस बहाल कर टीम में शामिल करने और प्री सीजन 2 में उतारने की पुष्टि की है। इसलिए वेलकम बैक मिखाइलो मुड्रिक। चेल्सी आज ही खेलेगा दिन के दौरान टोटेनहम हॉटस्पर के खिलाफ सिडनी सुपर कप के फाइनल में। सो अब बात करें द रेड्स की। लिवरपूल के लाल कल संडे की रात अपने US 2 का आखिरी मैच खेलेंगे लीड्स यूनाइटेड के विरुद्ध। ब्रैडली बाकुला का ट्रांसफर सौदा अभी तक टंगा हुआ है। और फ्रेंडली मैचों की बात हुई तो कल शुक्रवार की रात यूवेंटुस ने निस को 2-0 से हराया और आज सुबह ही बर्मिंगहम सिटी और FC बार्सिलोना ने मैच ड्रॉ किया 2-2।

0: बार्सिलोना के लिए हमजा अब्दुल करीम ने दोनों गोल स्कोर किए। आज रात इन्हीं फ्रेंडलीज में मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला इंटर मिलान से, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, तो रियल मैड्रिड खेलेगा फ्योरेंटिना के विरुद्ध और आर्सेनल जाएगा जिरोना के मैदान पे। लिवरपूल लीड्स यूनाइटेड कल रात 12 बजे, फिर संडे रविवार 9 अगस्त को लिवरपूल का मुकाबला मोनाको से और 16 अगस्त को आखिरी फ्रेंडली मैच होगा कुमू एफसी के विरुद्ध। फिर प्रीमियर लीग की शुरुआत, किंतु एंटोनी इराओला ने जो बदलाव लाए हैं उनसे टीम की स्पिरिट थोड़ा बहुत टूट गई है। रेक्साम को 1-0 से रैक करने के बाद डोमिनिक जोबोस्लाई, कर्टिस जोन्स और कोस्टा सिमिकास के बीच मैदान में ही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स की खबर आ रही है। वास्तव में मैच से निकलते समय जोबोस्लाई ने अपना कप्तान का आर्मबैंड निकालकर सिमिकास को दिया, जो रिपोर्टों के मुताबिक जोन्स को पसंद न आया, उसे अच्छा न लगा। अब जोबोस्लाई खुद अंतरिम कप्तान था क्योंकि असली कप्तान वर्जिल वान डाइक अभी तक छुट्टी पे हैं, वो आने वाला है। इस बीच ब्रैडली बाकोला वाला ट्रांसफर मामला अभी तक सुलझा नहीं है, हालांकि हर तरफ से अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। पर क्या लिवरपूल पेरिस सेंट जर्मेन के 140 मिलियन पाउंड मिलियन यूरो का डिमांड पूरा कर पाएगा, सुनते रहिए। इस बीच न्यूकासल यूनाइटेड ने अपने कोच एडी हाउ के त्याग पत्र देने की पुष्टि की है। अब ये बात कन्फर्म है कि एडी हाउ क्लब को छोड़कर 5 साल बाद जा रहा है। इटली और एसी मिलान का ऑल टाइम ग्रेट फ्रांको बारेसी 66 ईयर्स ओल्ड की आयु में चल बसे। इन्होंने साल 1977 से 1997 तक अपने पूरे 20 साल का फुटबॉल करियर एसी मिलान में ही बिताया, जिसमें 6 सीरी ए टाइटल वो जीत पाया और 3 यूरोपियन कप या यूरोपियन चैंपियंस लीग। फ्रांको बारेसी इटली और एसी मिलान के ग्रेटेस्ट डिफेंडर माने जाते हैं। बारेसी ने 15 सीजन्स तक एसी मिलान की कप्तानी की, इसलिए अलविदा फ्रांको बारेसी। बोर्नमुथ ने बेनफिका के 22 वर्षीय पोर्टुगीज डिफेंडर एंटोनियो सिल्वा को 26 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया है। और फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप का वर्तमान सीजन यूरोप में ही संपन्न हो सकता है यदि मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट में युद्ध बरकरार रहा तो, ऐसा कहा फॉर्मूला वन के बॉस स्टेफानो डोमिनिकाली ने। क्षेत्रीय स्तर पर आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागांजा आईसीई का सीजन 4 आज से ही शुरू हो रहा है। पहला मैच 1 आज दिन के 1 बजे से एसएसओ क्रिकेट ग्राउंड मापू में कैंपस अब्रॉड लायंस और एएमजी पैंथर्स के बीच, फिर कल सुबह 9 बजे मैच नंबर 2 कंटिनेंटल चीताज और एपीपी लेपर्ड्स के बीच रोशनोवा फुटबॉल मैदान पे आज शाम 3:30 बजे से द दुदला बीमा सुवेनियर कप का 22वां एडिशन जारी रखा जा रहा है। आज शाम पेंदे रोश और थ्रियोले कैडेट्स क्लब के बीच जबरदस्त मुकाबला, सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Vous pérez un travail ou une formation? L'émission Nous Travail, Nous L'Avenir, là pour aider moi ou courrier à Zodi même. À suivre la télévision MBCN, lundi, mercredi et vendredi à 21h15. Aussi la radio et RME, mardi, jeudi et samedi vers 9h30 grand matin et l'après-midi vers 16h15. Et aussi la radio AM2, mardi, jeudi et samedi vers 6h50 grand matin. Nous Travail, Nous L'Avenir, une initiative ministère Travail et Relations Industrielles.
2: Ministry of Labour and Industrial Relations और MBC के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नू ट्रावाय नू लावेनिया। क्लीनिंग सर्विसेज के सेक्टर में मेडिनी हाइजीन कंपनी लिमिटेड जोन रुस्तम रोड बेलारिविया सेश में पावल जाना एगो क्लीनर खोजता जिकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हाउ जे पहुंच जाइया न त टेलीफोनी करिया 57 59 88 43। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 मानी की 31 अगस्त 2026। क्लीनिंग सर्विसेज के ही सेक्टर में मैक्सी क्लीन कंपनी

लिमिटेड जन घोंद रोजाली देपिने में पावल जाला एगो एडमिन क्लर्क हो जाता जिकर एच एस सी संगे कंप्यूटर लिटरेट बाटे चाहेला एक बरिस स्किल एक्सपीरियंस हो के साथ में एगो रिसेप्शनिस्ट जिकर एच एस सी बाटे कंप्यूटर लिटरेट बाटे और एक बरिस स्किल एक्सपीरियंस चाहेला हो के और खो जाता एगो स्टोर हेल्पर जिकर एस सी संगे कंप्यूटर लिटरेट बाटे और एगो मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस के होल्डर बाटे अपनी कासो करे खातिर अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है maxiclean.hr@gmail.com जस्ती जानकारी खोजब तो टेलीफोन करिए 243-05-30 58-48-12-26 अपनी कासो करे के अंतिम तारीख है 14 अगस्त 2026। बेकरी के सेक्टर में एक्सोटिक मकारों लिमिटेड जन 44-45 रू डे ला कानेल एबेन में पावल जाला एगो पेस्ट्री ऑपरेटर खो जाता जिकर एस सी बाटे अपनी कासो करे खातिर टेलीफोन करिया 401-14-75। अपनी कासो करे के अंतिम तारीख है 6 अगस्त 2026। होलसेल के सेक्टर में आर आर रैपिड सर्विस लिमिटेड जोन रॉयल रोड प्लान दे रोश में पावल जाला एगो ड्राइवर प्राइवेट कार खो जाता जिकर एस सी संगे 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे एगो लॉरी ड्राइवर जिकर एस सी संगे 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे और एगो ऑफिस क्लर्क जिकर एच एस सी संगे कंप्यूटर लिटरेट बाटे अपनी कास्तोकारी खातिर टेलीफोन करिया 412-84-68। अपनी कास्तोकारी के अंतिम तारीख है 4 अगस्त 2026। सिक्योरिटी सर्विसेज के सेक्टर में क्विक सिक्योरिटी गार्ड्स लिमिटेड जोन 19 मोसलमान ले फ्लैम्बॉयंट पाई में पावल जाला सिक्योरिटी गार्ड्स को जता जिनकर मोरालिटी सर्टिफिकेट बाटे और एगो ऑटोमेटिक और मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर के एगो सॉफ्टवेयर खो जता जिकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और खो जता एगो चेकिंग ऑफिसर जिकर एगो मोटरसाइकिल लाइसेंस बाटे और 3 बरिस के एक्सपीरियंस चाहेला हो के अपनी कासो करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न तो टेलीफोन करिए 285-4000 न तो 285-7000। अपनी कासो करे के अंतिम तारीख है 17 सितंबर 2026। रिसाइकलिंग के सेक्टर में द माउंट रिसाइकलिंग कंपनी लिमिटेड जोन लाटू के निक में पावल जाला एगो सोफिया खोजता जिकर 10 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे साथ में एगो हेल्पर जिकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे अपनी कासो करे खातिर टेलीफोन करिए 57-23-99-38। अपनी कासो करे के अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में रेजिग्लास कंपनी लिमिटेड जोन रॉयल रोड कालबास पावल जाला एगो फैक्ट्री ऑपरेटर फाइबर ग्लास खो जाता जिकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे अपनी कासो करे खातिर टेलीफोन करिए 59-20-93-99। अपनी कासो करे के अंतिम तारीख है 21 अगस्त 2026। एजुकेशन के सेक्टर में किंडरलैंड जूनियर स्कूल जोन एस्टेट रोड ले व्यू तमारिनिये गुडलैंड्स में पावल जाला एगो आर्ट टीचर खो जाता जिकर एच एस सी बाटे और लयका लोग संगे काम करे के एक्सपीरियंस चाहिला हो के साथ में एगो जुम्बा टीचर जिकर एच एस सी संगे लयका लोग संगे काम करे के एक्सपीरियंस हो चाहिला हो के अपनी कासो करे खातिर टेलीफोन करिए 289-27-33-5-259-10-05। अपनी कासो करे के अंतिम तारीख है 15 अगस्त 2026। ज्वेलरी के सेक्टर में KKD ज्वेलर जोन कालीमाय रोड रोशनुआ में पावल जाला एगो ज्वेलर खो जाता जिकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और एगो सेक्रेटर जिकर एच एस सी बाटे अपनी कासो करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न तो जे जस्ती जानकारी खोजब तो टेलीफोन करिए 411-55-54-5-789-63-15। अपनी कासो करे के अंतिम तारीख है 3 अगस्त 2026। जॉब कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टर में लासावान एग्रो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जोन रॉयल रोड ग्रांड बॉ में पावल जाला एगो एक्सकावेटर ऑपरेटर खो जाता जिकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो मासों जिकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और खो जाता एगो व्हीकल असिस्टेंट जिकर 6 महीना के

0: expérience bâtie. Application carré khatir. Téléphonez carré 58 38 22 33. Application carré ke antim tarikh hai 31 August 2026. Tourism ke sekte ami. Hilton Mauritius Resort and Spa. Jarwalma, flic en flac me pawal jala. Khojata ego steward, ego laundry attendant, ego room aur public area attendant. Saath me ego laundry supervisor jikar HSC bate, ego housekeeping supervisor jikar HSC bate, ego assistant pastry cook, ego cook, chef de partie, ego storekeeper, head waiter. Saath me ego hostess aur cashier. Application kare khatir apan CV email dwara e pata par bida kar di ha. mauritius.recruitment@hilton.com Jasti jankari khojba ta telefoni kariya 403 1000. Application kare ke antim tarikha 20 August 2026. Insurance ke sekte ami National Insurance Company jun Avenue François Mitterrand 102 flak me pawal jala. Ego insurance sales person khojata jekar SC bate. Application kare khatir telefoni kariya 413 28 37 nata 5252 43 82. Application kare ke antim tarikh hai 31 August 2026. Mechanical ke sekte ami Right Road All in One Garage Limited jo Royal Road Rosebel backyard of vieux moulin me pawal jala. Ego spray painter khojata jekar ek bar skill experience bate. Ego panel beater jekar ek bar skill experience bate. Ego mechanic automobile jekar certificate bate aur ego electrician automobile jekar certificate bate. Application kare khatir telephone kariya 57 78 96 14. Application kare ke antim tarikh hai 31 August 2026. Restaurant ke sekte ami Pick and Eat Limited, Jun Jean Chili, Branch Road, Moka me Pawal Jala, Ego Fast Food Operator Khojata. Application kare khatir, apan CV email dwara e pata par bida kar di ha. stulasiram.pne@eclosia.com Nata telefone kariya jasti jankari khatir 432-1600 Nata 55-00-36-71. Application kare ke antim tarikh hai 7 August 2026. Education ke sekte ami Mahatma Gandhi Institute jun Mahatma Gandhi Road Moka me pawal jala. Ego lecturer violin khojata jekar master's degree bate aur ego lecturer sitar jekar master's degree bate. Application form bhare khatir MGI ke website visit kariya www.mgirti.mu. Jasti jankari khojba ta telefone kariya 403-20-27 nata 57-68-51-99. Application kare ke antim tarikh hai 11 August 2026. Ta e rahal Ministry of Labour and Industrial Relations aur MBC ke milal julal sahyog se nous travail nous l'avenir.
1: सुबह के 7:17 हो रहे हैं. वेलकम टू AM2 रेडियो मॉरिशस. और अब प्रस्तुत है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां. कैटरबोन स्विमिंग पूल कॉन्डोली रेजिडेंस पे अलावा के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 1 अगस्त को दिन के 9 बजे से 11 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. बाउकली एवेन्यू रोज दे बोआ और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 1 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. और बोबासन सेंट म्यूनिसिपल मैगो लेन के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 1 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. Pip or Lees Willoughby Anderson Sutter Ginson Bird Migro Montoccio Party Azari Singh Flat Lotus Residence du Menil मौसल मोदाली और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 2 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे

0: से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फॉरेस्टसाइड, बू रेजिडेंस सेंट लुक, अटली, ला कोलंब, जसमें, ला ब्रासरी और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 3 अगस्त को दिन के 12 बजे से दिन के 1 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। क्योपेप, रिसोल लेन, इसोरी लेन, अल्बाट्रोस स्ट्रीट, कॉर्डिनल स्ट्रीट, नाइटिंगेल स्ट्रीट, कोरियोलिस रोड, एनएचडीसी जासंत के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 1 अगस्त को सुबह के 11:30 बजे से दोपहर बाद के 2:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में सेंट पियर, एनएचडीसी विन्योल, सेंट कॉन्स्टेंस और लाग्रेमेंट सेंट पियर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 1 अगस्त को, जी हाँ, 1 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना की बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।
1: ऑन द आवर, एवरी आवर, रेडियो मॉरिशस।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है और धूप मुस्कुरा रही है, क्या लवली मौसम है आज। सभी सुनने वाले दोस्तों को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मॉरिशस। आज है शनिवार, 1 अगस्त साल 2026। नए महीने की शुरुआत, नए दिन की शुरुआत एमबीसी रेडियो मॉरिशस के साथ ऑन 819 किलोहर्ट्ज। और बेशक हम हैं आपके साथ, ये आपका मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना। सुबह का नजराना जहाँ पर हम चलाते हैं प्यारे प्यारे गाने, लवली म्यूजिक और होते हैं मीठी मीठी बातें। कहते हैं दोस्तों, कहते हैं कि जब आपके पास पैसा होता है, जब आपके पास पैसा होता है तो लोग पूछते हैं कैसे हैं आप, पर जब आप कंगाल हो जाते हैं तो लोग पूछते हैं कौन है आप। सोचने वाली बात है कि नहीं। और बेशक हम हैं यहाँ पर योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना 20 से 9 बजे तक, और आशा करते हैं कि हर शनिवार की भांति आज भी आप लोग हमारा साथ देंगे। यस, यही दुआ है, ये प्रार्थना है परमपिता परमेश्वर से कि आज की सुबह और आज का पूरा दिन अच्छी तरह से बीते। और अगस्त का महीना शुरू हो रहा है आज से, सो आशा करते हैं कि यह महीना आप लोगों के लिए अच्छी तरह से बीते। अगर जुलाई का महीना अच्छा नहीं रहा, देयर हैव बीन बैड न्यूज़ इन जुलाई, सो आशा करते हैं कि इस अगस्त के महीने में गुड ही गुड न्यूज़ होंगे आप लोगों के लिए। जो काम आप जुलाई में नहीं कर पाए, उस काम को पूरा करना है अगस्त के महीने में। अभी एक महीना आपके सामने है, 30-31 दिन आपके सामने है। ऑलराइट, सो सुबह जब अपनी नींद से जागे तो अपने आपसे कहें कि आज जो भी होगा अच्छा ही होगा, और जो भी होता है अच्छा अच्छे के लिए होता है, प्रभु की मर्जी से सब कुछ होता है कि नहीं। सो आशा करते हैं कि आपके घर परिवार में प्यार है, अपनापन है, रिश्तों में मिठास है, बच्चे माँ बाप का आदर सम्मान करते हैं, और हम बड़े जो है बच्चों को ढेर सारा प्यार देते हैं। मीठा मीठा प्यार देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हम सभी प्यार के भूखे हैं, हम सभी प्यार के प्यासे हैं। और इंसान कहाँ जाता है दोस्तों, इंसान वहीं जाता है जहाँ उसे प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है। अगर आज की मॉर्निंग किसी को जादू की झप्पी दे सके, सो ज़रूर दीजिएगा जादू की झप्पी। आहा, क्या बात है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना प्रोग्राम को आज के चिंतन के साथ, और इसे प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर शांति महाबीर जी।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।

समय का दूसरा नाम यम है, गुरु है। गुरु से जीता या हारा नहीं जाता है, बल्कि सीखा जाता है। समय रहते मनुष्य को अपने चरित्र में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। स्मरण रहे, जो समय का सदुपयोग करता है वही अपना लक्ष्य पाता है।

कहते हैं साथियों कि कोई भी काम करने से पहले हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। अगर प्रभु का आशीर्वाद हो तो वो काम सफल होता है। सो आज की सुबह अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रभु का नाम लीजिए, उससे आशीर्वाद लीजिए कि हे प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता मिले।

जरा सोचिए दोस्तों, भगवान ने गन्ने को मिठास दी पर उसे फल नहीं दिया, सोने को चमक दी पर खुशबू नहीं दी, चंदन को खुशबू दी पर फूल नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों? अगर इंसान को सब कुछ मिल जाए तो उसका अहंकार आसमान को छू

0: जाता है। इसीलिए भगवान ने इंसान को सब कुछ नहीं दिया है, कुछ कुछ दिया है, और जो कुछ दिया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। और कहते हैं कि दोस्तों कि इस सफ़र को अकेला नहीं कटा जा सकता, सफ़र में किसी न किसी का साथ चाहिए, तब ये सफ़र जो है कट जाता है, वरना अकेला सफ़र करना मुश्किल होता है। सो देखिए, अगर कोई मिल जाए, कोई दोस्त, कोई हम सफ़र, कोई हम नशी, कोई साथ देने वाला साथी जो आपका साथ दे, तो ये सफ़र एकदम सफल से कट जाए। ये प्यारा सा जो गाना सुनेंगे, ये मुजरत नज़ीर की आवाज़ में सुनेंगे। चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता।
1: मैं फिल्म में गुलुकारा की हैसियत से गई थी, लेकिन एक और रास्ते पर चल पड़ी। मैंने अदाकारा की हैसियत से अपनी सलाहियतों को जाहिर किया। आज की नौजवान नस्ल से पहले के लोग जानते हैं कि मैंने फ़न के किन पहलुओं को दरियाफ्त किया। वक्ती तौर पर गाने का शौक दब गया। फ़न भी पानी के चश्मे की तरह होता है, ज़मीन के नीचे तो चला जाता है, अपनी ताकत से ऊपर उभर आ जाता है।

हम भी आहिस्ता आहिस्ता आपका साथ दे रहे हैं और 9 बजे तक आपका साथ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, हौली हौली। सुबह के 7:35 हो रहे हैं। कहते हैं दोस्तों कि जब तक पेड़ हरा होता है, हर कोई उसकी छाँव में सुकून ढूंढता है, उसके फल का आनंद लेता है। पर जब वही पेड़ सूख जाता है तो उसे बचाने के लिए किसी ने उसे एक बूंद पानी देने के लिए ज़रूरी नहीं समझा। ज़िंदगी के रिश्ते भी अक्सर ऐसे होते हैं। जब तक आप लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, आपकी मौजूदगी की कदर की जाती है, लेकिन जिस दिन आपको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, वही लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। जीवन का यही कटु सत्य है दोस्तों, इसीलिए किसी पर निर्भर ना रहें। बी इंडिपेंडेंट, बी सेल्फ रिलायंट, अपने आप पर निर्भर करें। अपने हाथों पर, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने पैरों पर खड़े हो और अपने हाथों से अपना काम खुद करें। ऑलराइट, समझदार को इशारा काफ़ी है। और वैसे हम आपका साथ दे रहे हैं, आप लोग भी हमें सुन रहे हैं बहुत प्यार के साथ। और अगर जिन बातों को हम आपसे शेयर करते हैं, उन बातों को आप जीवन में अमल करें, सो यू विल सी लाइफ विल बी सो ब्यूटिफुल। और अब ज़रा सुनते हैं एक प्यारा सा तराना, मैं प्यार की पुजारी। जी हाँ, जितने लवर्स हैं, जितने लोग प्यार में विश्वास रखते हैं, उनके नाम ये गाना, सभी प्यार करने वालों के नाम, मैं प्यार की पुजारन। इससे हमने लिया है फिल्म हत्या से।

मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, हर इंसान को प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, तब तो वो जिंदगी में खुश रह सकता है। प्यार के बिना कौन खुश रह पाया है या कौन खुश रह पाएगा। सभी को चाहिए जीने के ये ढेर सारा प्यार, है कि नहीं। इसी गीत के साथ ही सुबह का नजाना पार्ट वन यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब बढ़ते अगले प्रोग्राम की ओर। ज्ञान सरोवर हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से 8 बजे समाचार होगा। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर। सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम जान सरोवर में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर ईश शर्मा उपस्थित हैं। प्रोफेसर ईश जी, MBC स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद विश्वानंद जी।
0: श्रोताओं, आचार्य चाणक्य ने कहा है, अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांते विषप्रदम। अर्थात जब भोजन न पचे तब उस समय पानी लेना औषधि दवा के समान काम करता है। भोजन के पच जाने के बाद जो जल हम पीते हैं वह शरीर को बल प्रदान करता है। भोजन करते समय पिया गया जल अमृत के समान लाभकारी होता है, जबकि भोजन समाप्त होने के तुरंत बाद अधिक मात्रा में पिया गया जल विष के समान हानिकारक माना गया है। यह श्लोक अनुभवों और प्रयोगों पर आधारित है और हमें यह भी सिखाता है कि जल का सही प्रयोग कैसे करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, हमारे आसपास कई औषधीय पौधे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर ईश शर्मा जी से सामान्य औषधीय पौधे एवं उनके चिकित्सकीय उपयोग विषय पर चर्चा हम करेंगे। श्रोताओं, यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि डॉक्टर ईश शर्मा पारंपरिक वैद्य परिवार से हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्हें जीवन शैली जनित रोगों के उपचार में विशेष सज्जता प्राप्त है तथा उन्होंने मधुमेह, ऑटो इम्यून और तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों पर अनेक अनुसंधान किए हैं। आयुर्वेद शिक्षा प्रशिक्षण, रोगी सेवा और आयुर्वेद पर्यटन के क्षेत्र में उन्हें 25 वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है। प्रोफेसर ई शर्मा 4 पुस्तकों तथा 20 शोध पत्रों के लेखक हैं। उन्होंने पंजाब के बाबेके के आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का सफल नेतृत्व किया तथा गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 2021 से 2024 के दौरान वे मॉरिशस विश्वविद्यालय में आयुष चेयर के रूप में भी कार्यरत रहे। इस अवधि में उन्होंने मॉरिशस के प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में आयुष वेलनेस प्रोग्राम को कार्यान्वित किया, इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयुर्वेदिक उद्यान की स्थापना करवाई तथा मॉरिशस की आयुर्वेदिक औषधीय वनस्पतियों के अध्ययन का नेतृत्व भी किया। जनवरी 2025 में उन्होंने पंचकुला में द सोस आयुर्वेद एंड वेलनेस पंचकर्म सेंटर की स्थापना की और आजकल जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड चंडीगढ़ में चिकित्सा सेवाओं एवं अनुसंधान के निदेशक डायरेक्टर के रूप में अपना दायित्व संभाल रहे हैं। प्रोफेसर ई शर्मा जी, आप कृपया श्रोताओं को यह बताइए कि मॉरिशस में पाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पौधे कौन कौन से हैं और उनके मुख्य औषधीय गुण क्या है।
1: जी धन्यवाद विश्वानंद जी। आयुर्वेद में जितने भी मैदानी इलाकों में होने वाले और साउथ इंडिया

0: में पाए जाने वाले पौधे हैं
1: जी,
0: वो लगभग सभी मॉरिशस में उपलब्ध हैं। और अगर मैं कुछ का नाम गिनूं, हालांकि वो लिस्ट 200 के करीब पौधों की है, लेकिन नीम, अश्वगंधा, तुलसी, सदाबहार, हल्दी, अदरक और बरगद, पीपल, चंदन
1: जी,
0: अनेकों अनेक शतावरी, अनेकों अनेक पौधे हैं जो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और लोगों को अगर उनके बारे में अवगत करवाया जाए तो उनका थोड़ा बहुत उपयोग करके वो अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं।
1: उनमें से मान लीजिए कौन से गुण पाए जाते हैं, औषधीय गुण?
0: सभी लोग जानते हैं कि नीम जो है वो एक तिक्त द्रव्य प्रधान प्लांट है
1: जी,
0: और स्किन के लिए और दांतों के लिए। नीम की दातुन तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया करती है
1: जी हाँ।
0: स्किन के लिए नीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रिसर्च में पाई गई हैं
1: जी।
0: इवन इनफर्टिलिटी केसेस में नीम के तेल का पिचु धारण स्त्रियों के द्वारा,
1: अच्छा,
0: ये भी रिसर्च में साबित हुआ है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, ये भी लाभकर होता है। और नीम के अलावा सदाबहार जो कि आपके घर के आसपास में पेरिविंकल नाम का एक छोटा प्लांट मिलता है,
1: बहुत सुंदर
0: फूल आते हैं, व्हाइटिश और पर्पलिश। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर दवाइयां हैं वो उसी पेरिविंकल प्लांट से, सदाबहार प्लांट से निकलती हैं।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जिनको हम लोग विनक्रास्टिन और विनब्लास्टिन के नाम से हम दवाइयों को जानते हैं
1: जी जी,
0: और विंका रोजिया इसका लैटिन नेम है। डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए आयुर्वेद में सदाबहार का प्रयोग बताया गया है। ऐसा नहीं, एक जिंजर का, काली मिर्च का प्रयोग हम सब लोग जानते हैं और मॉरिशस तो अच्छा उत्पादक रहा है काली मिर्च का एक समय में
1: जी।
0: तो अनेकों अनेक पौधे हैं, अनेकों अनेक गुण हैं।
1: बहुत बहुत बढ़िया प्रोफेसर जी। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि तुलसी, नीम, एलोवेरा जैसे औषधीय पौधों का पारंपरिक एवं आधुनिक चिकित्सा में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है?
0: जी, तुलसी, एलोवेरा, नीम आदि जो पौधों का हमने नाम अभी आपको गिनाया
1: जी जी,
0: उन सभी का आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रयोग होता आ रहा है और वो अनेकों अनेक सिस्टम्स पे
1: जी,
0: जैसे तुलसी जो है ना केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम पर स्किन में, इम्यूनिटी में, एसिडिटी में और मल्टीपल जगह पर तुलसी काम करती है। ऐसे एलोवेरा जो है लिवर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है।
1: अच्छा,
0: फर्क ये है, मेन आयुर्वेद भी प्लांट्स का प्रयोग करता है और एलोपैथी की 60% दवाइयां कहीं ना कहीं प्लांट ऑरिजिन की हैं
1: जी।
0: फर्क ये है कि एलोपैथी उनके एक्सट्रैक्ट का यूज करता है, उसके फाइटोकेमिकल्स को सेपरेट करके यूज किया जाता है, जबकि आयुर्वेद होल प्लांट के प्रयोग का निर्देश करता है।
1: अच्छा,
0: तो इस प्रकार से प्राय अधिकतर मॉडर्न मेडिसिन का भी जो है, जो जनक है, जो ओरिजिन है, वो प्लांट से ही है।
1: एकदम सही कहा आपने प्रोफेसर जी। प्रोफेसर इस जी, क्या मॉरिशस की जलवायु और पर्यावरण एनवायरनमेंट औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुकूल है? कृपया उदाहरण सहित इस पर
0: जी
1: प्रकाश डालें।
0: बहुत ही अनुकूल है। पहला तो आयुर्वेद का ये एक उपदेश है, ना अनौषधि भूतम किंचित द्रव्यम उपलब्धति जगते
1: जी।
0: जगत में कोई भी द्रव्य अनौषधि भूत नहीं है, यानी कि हर प्लांट का कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू है। अब उनको कैसे प्रयोग करते हैं ये आपको देखना पड़ेगा
1: जी हाँ।
0: तो अभी जब मैं मॉरिशस में था तो यहाँ की गवर्नमेंट को एक रिसर्च फंडिंग के लिए मैंने एक रिक्वेस्ट दी थी, जिसमें मैंने ये स्थापित किया था कि अगर मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे उगाने लग जाएं, और मैंने एग्जांपल दिया था केवल तुलसी का
1: जी हाँ।
0: जितना हमारा एरिया, जितने हेक्टेयर्स अंडर शुगर केन कल्टीवेशन है, उतने ही हेक्टेयर्स में अगर तुलसी उगाएंगे तो मॉरिशस गवर्नमेंट फाइनेंशियली उसका डबल बेनिफिट मिलेगा। शुगर केन के टोटल प्रोडक्ट से जितना पैसा मिलता है उससे डबल केवल तुलसी से मिलेगा। तो ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे वाटर इंटेंस क्रॉप्स को ज़्यादा ना लगा के वाटर टेबल को प्रिजर्व करने के लिए मेडिसिनल प्लांट लगाए जाएँ और जो कि दुनिया को स्वास्थ्य लाभ का वितरण करें और कमर्शियली भी ये ज़्यादा वायबल है।
1: कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग भी उसका सेवन करें और बाहर के लोग भी
0: जी, दुनिया भी सेवन करें बिल्कुल
1: जी हाँ। तो एक बहुत ही अच्छा विचार है प्रोफेसर जी। मॉरिशस में बढ़ते जीवन शैली संबंधी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे के नियंत्रण में औषधीय पौधों, मेडिसिनल प्लांट्स की क्या भूमिका हो सकती है?
0: जी देखिए, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो आपने नाम गिनाए, हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, मोटापा है, कैंसर्स हैं, ये सभी के सभी एक तरह का वन वे ट्रैफिक हैं। ये आते हैं लेकिन क्योर नहीं हो पाते या बहुत कम क्योर हो पाते हैं
1: जी।
0: तो इसमें पौधों का बहुत बड़ा रोल है, रिसर्च प्रूवन है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और तथ्य जोड़ना चाहूँगा

0: आयुर्वेद ये चिकित्सा केवल कुछ पौधों या कुछ दवाइयों को खिलाने मात्र का नाम नहीं है।
1: जी जी,
0: आपको आहार विहार शमन के नाम पर कुछ पौधे और पंचकर्म, ये चारों चीजें जब एक साथ लेंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन, क्योंकि आचार्य काश्यप ने बोला है आहारम परम भैषज्यम, फूड इज सुपर मेडिसिन। अगर डाइटरी करेक्शन नहीं करेंगे तो ये पौधे भी आपको बहुत मदद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले डाइटरी

0: एकदम सही कहा आपने प्रोफेसर जी। चर्म रोग अर्थात स्किन डिजीज से पीड़ित व्यक्तियों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इसके लिए, जैसे इलाज के लिए क्या कह सकते हैं और ताकि मरीज इससे लाभान्वित हो?
1: जी, चर्म रोगों में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दूध पीना बिल्कुल बंद कर दें।
0: अच्छा,
1: एनिमल मिल्क बिल्कुल एक ड्रॉप भी नहीं आपने पीना, एनिमल मिल्क बिल्कुल बंद कर दीजिए, एनिमल प्रोडक्ट्स कम कर दीजिए, हरी सब्जियां फाइबर ज्यादा लीजिए, साबुन का शैम्पू का केमिकल का प्रयोग बंद कीजिए। अब बहुत दुख होता है विश्वानंद जी जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपको चर्म रोग है, आपको स्नान जो है बिना साबुन के करना है, तो वो इतने अचंभित होते हैं कि वो बिना पानी के तो नहा लेंगे पर बिना साबुन के नहीं नहा सकते, ये हाल है
0: जी।
1: तो बिल्कुल साबुन जो है आपकी त्वचा का दुश्मन है। अगर आप में त्वग रोग है, चर्म रोग है, तो इसको तुरंत बंद कीजिए। अगर आपको त्वचा का रोग नहीं है, आप त्वचा को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो भी साबुन शैम्पू बाकी सारे केमिकल को मिनिमाइज कीजिए, चाहे वो हर्बल शैम्पू है चाहे वो हर्बल सोप है।
0: तो ऐसी स्थिति में किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए?
1: जी, ऐसे में देखिए, हम आजकल इतना कोई धूल मिट्टी में काम नहीं कर रहे कि आप पसीना पसीना हो रहे हैं, बहुत गंदे हो रहे हैं। अगर आपका कोई दिन बहुत ज्यादा धूल मिट्टी में पसीने में निकला, उस दिन हल्का फुल्का साबुन लगाइए, कम लगाइए, नहीं तो नॉर्मली आप सप्ताह में एक दिन अगर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर नहा लेंगे तो आपको बहुत लाभ आपको मिल सकता है। आंवले के पानी के साथ नहाना, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाना, ये आपकी त्वचा के लिए बहुत ही फ्रेंडली है, त्वचा को हेल्दी रखेगा। तो जितना हो सके परफ्यूम साबुन शैम्पू से दूर रहिए।
0: एकदम सही प्रोफेसर ईश जी। घरेलू स्तर पर औषधीय पौधों का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: जी देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा जो रसोई है, हमारा किचन अपने आप में एक हमारी प्राइवेट फार्मेसी है।
0: जी हाँ,
1: उसमें लगभग हर रोग का इलाज छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रात को 2 बजे बहुत तेज पेट में दर्द हो गया, आप डॉक्टर के पास भागने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार आप एक बड़ा चम्मच भर के अजवाइन खा लें गर्म पानी के साथ में
0: जी।
1: और मुझे लगता है कि जब 15-20 मिनट में जब तक आप अपनी गाड़ी निकालेंगे, आपके पेट का दर्द इतना दब जाएगा कि आप बोलेंगे ठीक है सुबह देखेंगे डॉक्टर को।
0: जी जी,
1: तो बिल्कुल अजवाइन हो गया, हमारे रसोई में पहुंचा हुआ कोई भी पौधा कोई भी मसाला एक्सीडेंटल नहीं है।
0: जी हाँ,
1: वो सब औषधीय गुणों से भरपूर हैं। ब्लैक पेपर तो किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। अति ना करें, अगर आपको छोटे मोटे स्व चिकित्सा से अगर आपको जल्दी आराम नहीं आया तो तुरंत ही डॉक्टर को मिलना चाहिए।
0: और कहा भी गया है ना, अति सर्वत्र वर्जय।
1: जी बिल्कुल,
0: अति किसी चीज में ना करें।
1: जी
0: प्रोफेसर जी, आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ जीवन के लिए औषधीय पौधों के संरक्षण संवर्धन और दैनिक जीवन में उनके उपयोग का क्या महत्व है, विशेषकर मॉरिशस के संदर्भ में?
1: जी बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल से हमको एक मद प्राप्त हुई, एक फंड प्राप्त हुआ, जिसको लेकर हमने मॉरिशस में उगने वाले आयुर्वेदिक पौधों का अध्ययन किया और पाया गया वो बहुत ही हाई क्वालिटी पौधे हैं। और एक डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, जब हमने रिपोर्ट सबमिट करेंगे हम लोग डिसेमिनेशन सेरेमनी में, पब्लिक के लिए हमने एक रिपोर्ट बनाई है कि अपने आसपास के पौधों को कैसे आप लोग प्रयोग कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं।
0: जी हाँ प्रोफेसर जी, आपके अमूल्य विचारों के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। श्रोताओं, ऋग्वेद में कहा गया है, या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्यस त्रियुगम पुरा मनैनु बभ्रुणान अहम शतम धामानी सप्तच। अर्थात जो औषधियाँ प्राचीन काल में उत्पन्न हुई, जो देवताओं से भी पहले 3 युगों से विद्यमान है, उन अनेक गुणों से युक्त औषधियों की मैं स्तुति करता हूँ। उनमें 100 और 7 प्रकार की शक्तियाँ एवं गुण विद्यमान हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि औषधीय पौधों या जड़ी बूटियों में ऐसी शक्तियाँ या गुण हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए वैदिक काल से ऋषियों ने भी इन औषधियों को प्रकृति का अमूल्य उपहार माना है, उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता भी व्यक्त की है। हमें भी अपने घर आंगन खेत वनों आदि में प्राप्त औषधियों पौधों का सुप्रयोग करके अपने जीवन को रोग मुक्त और सुखमय बनाना है। प्रिय श्रोताओ, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर ईश शर्मा को आ जा दीजिए। अगले सप्ताह फिर एक ऐसे ही जानवर्धक कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। नमस्कार और शुभ दिन।

0: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: ये वक्त फजर के ठीक 8 बजे बाते. सब कुछ के नमस्ते. भोजपुरी में समाचार सुना जा. कल रात के राष्ट्रीय सभा में द फाइनेंस बिल पर बहस होल, किंतु एकर समापन यानी समिंग अप के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम बोलन कि पेंशन के टारगेटिंग के हटाइला से जन कमी आल बाते ओकरा पूरा करे खातिन सरकार के चाहेला 6.2 बिलियन रुपया के अतिरिक्त इंतजाम करे के सरकार के परी. उ बतैलन कि टारगेटिंग के जन मकसद है उ सबसे कमजोर जना के जस्ती सहायता दे के बाते. प्रधानमंत्री बोलन कि आर्थिक विकास के बढ़ावा दे खातिन और ई कमी के पूरा करे खातिन दूसर उपाय चाहेला लागू करे के. कल रात 10 बजे से तनी सुन समय आगे एक थोड़े से बाद राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसिलानियस प्रोविजन बिल सुधार के बाद पारित कर देवल गल है. दोनों बिल्स विधेयक के जरिए 19 जून के जन बजट 2026-2027 पेश करल गल रहल ओकर घोषणा के कानूनी रूप देवल गल बा. है दौरान नेशनल पेंशन एक्ट के संगे चार कोरी से जस्ती कानून में सुधार लावल गल. पेंशन रिफॉर्म से जन सुधार जुड़ल बातें ओकर पर सदन में तीखा बहस होल. विपक्ष नेता जो ले जाऊंगा वोट बाय डिवीजन के मांग करलन. पर्यटन जूनियर मंत्री सिडनी पिया सरकार के अकेला सदस्य रहलन जन हई विधेयक के खिलाफ वोट देलन. होजे परी विपक्ष के 5 सांसद भी एकर खिलाफ वोट देलन जा. राष्ट्रीय सभा के कार्य अब आवत मंगलवार 4 अगस्त को के दिन के 11:30 पर जारी रखल जाए. एक स्थगित कर देवल गल बा. सिडनी पिया के कल रात के पर्यटन जूनियर मंत्री के पद से हटा देवल गल है. फैसला प्रधानमंत्री लेलन जा कहे कि नेशनल पेंशन एक्ट में संशोधन के मुद्दा पर फाइनेंस बिल के चर्चा के दौरान सांसद सिडनी पिया सरकार के नीति के खिलाफ जाके अमेंडमेंट के विरुद्ध वोट देलन जा. जॉ सिडनी पिया के पद से रद्द करला के बाद यानी रेवोकेशन के बाद स्टेट हाउस देने से जारी कम्युनिके के माध्यम से आधिकारिक रूप से हई घोषित कर देवल गल. पेंशन के राशि अब हर बरिस जीवन खर्च यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से बढ़ावल जाए. है बढ़ोतरी हर बरिस जनवरी महीना में लागू होई. ई जन इंतजाम है कानून में शामिल करल गलबा है व्यवस्था. समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों काल रात के राष्ट्रीय सभा में बहस के दौरान एकर जानकारी देलन जा. दूसर दिन ने विपक्ष नेता पुल बियांजे है बदलाव में क्लारिफिकेशन यानी स्पष्टता के कमी होला पर बात करलन जा. मॉरिशस और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा लेनेजी के क्षेत्र में सहयोग के और मजबूत बनाई खातिन एगो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर करे के तैयारी होवत बा. है फैसला काल कैबिनेट के बैठक में एकरा मंजूरी देवल गल. है समझौता दोनों देश के ऊर्जा मंत्रालय के बीच सहयोग के एगो ढांचा तैयार करी जेकर अनुभव जानकारी और अच्छा काम के आदान प्रदान एक्सचेंज बढ़ी. दूसर खबर में जूनियर मिनिस्टर और सांसद वेरोनिक ले गोविन के पति गुलशन गोविन के रेनियन टापू में लगभग 100 किलो जमाल जब्ती मामला के जांच के सिलसिला में काल गिरफ्तार करल गल. है बड़ा घटनाक्रम से है मामला के राजनीतिक और न्यायिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ मिल गल बाते. अब सांसद के पति से पुलिस और जाँच एजेंसी जनह वो लोग पूछताछ करत हवन जा. राष्ट्रमंडल खेम गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस 2 पदक जीतले बा. नोएमी अल्फोंस 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल करलन जा और मेयर वैक्लेया बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल कल रात के जीतलक. अब आज भी ग्लासगो में ढेर खेल इवेंट

0: रखल गल बा। खासतौर पर आज रात के 7:25 पर मॉरिशस के जितना उम्मीद बाते उ पारा एथलेटिक के 400 मीटर T54 रेस पर रही, जिनमें नोएमी अल्फोंस संगे ब्रांडी पेरिन भी मेडल जीते के कोशिश करें जा। फिर सेड्रिक रावे, पारा एथलीट सेड्रिक बेनर, क्रिस्टोफर सोफी मेंस डिस्कस थ्रो के फाइनल में रही, रेमी फेयर, नोएमी एवनो जूडो में, ये सब आज ई खेल के लगभग आखिरी दिन है। कल ग्लासगो में एकर समापन समारोह रही। और दूसर देश में मोरक्को के सीमा से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र स्यूटा में बीफे के हजारन की संख्या में प्रवासी घुस गए लंजा। प्रवासी लोग बॉर्डर के भीरी ओकरा दीवार तोड़ के स्पेन में प्रवेश कर लन जा, जेकर दौरान कमती से कमती 41 जना के मौत हो गल बाते। अब स्पेन इलाका में मोरक्को संगे जन सीमा लगल गल बा, ओकर शांति बनाए रखे का दिन ओकर फैसला ले ले बा। ये रहल भोजपुरी में समाचार, ये बखत फजर के 8:05 होल बाते, हमने संगे जुड़ल रहिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

समाचार सुना जा जगन्नाथ स्रोत विजुआ पौमी जगन्नाथ स्रोत विजुआ पौमी 67 साल के 67 के श्रीमती अंजनी शिवचम, श्रीमती अंजनी शिवचम पैदाश नाम गणपत, पैदाश नाम गणपत जिनका लोग चंद्रानी नाम से निरंजा गुजर कर हवन कर्मा थी। आज इनके 11 बज के आधा उनका बेटा श्री हेमंत कुमार शिवचम के घर जगन्नाथ खोत्र विजुआ पौ से उठा कर अंतिम संस्कार का तिल्ला पहुँच के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 11:30 AM। A01 22 NHDC La Tokenik Me 80 Bariski 80 के श्रीमती पालम्बल अप्या, श्रीमती पालम्बल अप्या जिनका लोग गया या तौसिन ला बुटीक नाम से रंजा गुजर कर हुन करमाती आज दिन के 11 बजे। आज दिन के 11 बजे उनकर बेटी श्रीमती शास्त्री अप्या के घर A01 22 NHDC La Tokenik से उठा के अंतिम संस्कार खाते वालिद फैद के शमशान भूमि ले जावर जाए क्रमिशन टुडे एट 11 AM। KGW Lane Le Haut Chêtre Rouge 80 बरिस की 80 के श्री मानिकों मुताल, श्री मानिकों मुताल जिनका लोग मानिकों नाम से जाना रंजा गुजर कर हन करमाती आज दिन के 10 बजे। आज फजर के 10 बजे उनकर घर KGW Lane Le Haut Chêtre Rouge से उठा के अंतिम संस्कार खतिन से पाए भूले फालिद फैद के शमशान भूमि जाव जाए क्रमिशन टुडे एट 10 AM। रिश्मा फ्लाक में 91 बरिस के 91 के श्रीमती इंद्रावती राम जावन जिनका लोग इंद्रावती नाम से जाओ, पैदाशी नाम फकीरा गुजर गल हवन करमाती आज फजर के नौ बजे उनकर बेटी श्रीमती प्रेमिता गजाधर के घर रिश्मा फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिन रिश्मा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 9 AM। अली मॉन्ग पोस्ट द फ्लाक में 76 बरिस की सुनसेजों के श्री जमनलाल गंगू जिनका लोग देव की शुफा बुस नाम से चंद्र फ्रंजा गुजर कर हवन करमा थी आज दिन के दस बजे उनकर घर आली मॉन्ग पोस्ट द फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार का दिन पोस्ट द फ्लाक के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 10 AM। नंबर सत्तर मोसलमो रामफल प्लंदी पापा एमी 69 बरिस के 69 के श्री रामा कृष्णा नारायणा रेडी जिनका लोग आया देवन नाम से जनता गुजर कर हन करमाती आज दिन के 1:30 बजे। आज दिन के 1:30 बजे उनकर पत्नी श्रीमती पेचाई नारायणा रेडी के घरे नंबर 70 मोसलमो रामफल प्लंदी पापा से उठा के दफनावे खातिन पंडित पापा के शमशान भूमि ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। समंदर लेन पायोत में 79 बरिस की 79 के श्रीमती तारामती शंकर जिनका लोग तारामती नाम से रंजा और उज्जैन रजनी शंकर के माँ रहलंजा को सरकर हवन करमाती आज दिन के 12 बजे। आज दिन के 12 बजे उनकर घरे समंदर लेन पायोत से उठा के अंतिम संस्कार का दिन गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए।

0: On the hour, every hour, Radio Marches.
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,

किसी को छोटा बताकर आप कभी बड़े नहीं बन सकते, किसी को नीचे दिखाकर आप ऊपर नहीं जा सकते, और किसी को नीचे धकेल कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, किसी का दिल दुखाकर आप कभी सुखी नहीं रह सकते। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, आप सभी का अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। यह है आप लोगों का मनपसंद रेडियो चैनल MBC रेडियो मॉरिशस AM2 लाइव। टिकटॉक पेज पर आप हमें देख रहे हैं और लाइव रेडियो पर आप हमें सुन रहे हैं 800 kHz पर। थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। वेलकम इन द सेकंड पार्ट, सुबह का नजराना, योर मस्त मॉर्निंग शो। सुबह के 8 बज के 21 मिनट और प्लेलिस्ट में बहुत सारे गाने हैं, जैसे कि वेलकम टू द जंगल, धमाल चार, सरफरोश, नील अन्य की नाम, पूनम और नरसिम्हा। अगर इन फिल्मों के नाम आप अपनों के नाम गीत करना चाहेंगे तो बेशक इन गीतों पर आप डेडिकेशन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 4028085 या फिर SMS कीजिए हमारे टिकटॉक पेज पर। और ये पहला तराना फ्रॉम द मूवी वेलकम टू द जंगल, ऊंचा लंबा कद, ये गीत हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस, ऑलराइट। सो अनु जी है, लीला जी, अजमेर खान, आगात अशिष्ट, कुमन बहोरा, अनु, अजुदा गिया, सूरज सजदा, आशीष, अनु, प्रीति, फिर अमृता बिहारी, ज्योति गुली, और यही गाना जाएगा चिक्की प्रतिमा बंसु गावा के नाम। हैप्पी बर्थडे टू नेफ्यू अवनीश फ्रॉम ज्योति, रविन, निखिल, आरती, विशाल एंड ऑल फैमिली, गुली परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार है। फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजागी कंदसामी। हाय आजागी, कल आपसे मुलाकात हुई थी। कैसे हैं आप आजागी? बहुत प्यार से हमें देख रही है, सुन रही है। आजागी कंदसामी, ये गीत आपके नाम भी, और आपकी सहेली उसका नाम क्या है? हम उसका नाम भूल गए। आपकी सहेली जो आपके साथ काम करती है, जस्ट सेंड मी ऑन टिकटॉक एंड आई रीड हिज नेम। ज्योति बिसे सर हमारा साथ दे रहे हैं। हेलो, हाय प्रीतम राम, आशा अडवा, अनिता लाल जी, हाय, हेलो अनिता जी, कैसे हैं आप? ठीक है। दीपक फौदार जी हमारे साथ दे रहे हैं, थैंक यू जी। संजय बिहारी मोहतबा, उनकी पत्नी सुरेखा और सभी परिवार, यही गाना स्नेहा जी के नाम हम चलाएंगे। और यस, आजागी कन्नासामी, आपकी सहेली का नाम, जो सहेली आपके साथ काम करती है उसका नाम बताइए। यस, श्रुति भी हमारा साथ है। हाय श्रुति, सच ए लवली नेम श्रुति, वाओ। और ये गाना चाहेगा इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारा साथ दे रही है। यस, सुबह से आप हमें सुन रही है, क्या बात है, क्या बात है। यस, सो ये गाना जाएगा खासम खास मनीष चाम सिंह और उनके परिवार के नाम, रीति शमन, आदित्या चाटुआ, अनिता पांचू, अंजू किशन, आशील चितंकी, अजीजा, फिर बाल गोबिन है साथ में। ये गाना जाएगा भाई गुरु जो कि विदेश में है, भामा भारती, बुलाकी, वृंदा पांचू, शकील, प्रयाग सिंह, कोतन देवी, दीना टीना, गिरीश लक्ष्मण, गनु हंस, हिरीश नारायण, विशाल हीरू, उनकी पत्नी शालिनी, कलाईवानी, केशव रिसोल, कृषि महादू, मलिनी दौलत, मिस बैनी, माया, मिस्टर गंगा एविन, नावीन जानकी, उदित, प्रवीण बुधन, प्रीति बाबुआ, प्रीतम भैरव, प्रीतम ज्वेलर साहब, राधा गनु, फिर रीता, रोशन हरनाम, रोशनी

Hari, Rose Hai, Rosie, Sadish Mahabir, Sanjay Harichand, Satyam Subosh, Helen Bansi, Shamini, Sadik, Suraj Parmanan, Sarju, Tayaba Uzagir, Uma Jaganaiklu, Urusa, Virapen, Vinesh Subban, Vishwani Babulal, VSU और नटराज रामकुरन के नाम और इसमें हमारे साथ रही है राज सियातन जी हेलो सुचिता आजादी खान सामी की ओर से की सहेली सुचिता के नाम और रोजबेल में जितने लोग काम करे इस समय जितने लोग इस समय रोजबेल में काम कर रहे हैं और हमें सुन रहे हैं सो यह गीत आपके नाम भी एंड राज सियातन ये गाना जाएगा आपके नाम भी और 402805 पर आप फ़ोन कर सकते हैं कुर्सी या गीत आपके नाम भी अंजना संयोगिता हेलो यह गीत आपके नाम भी स्वीटी यह गीत हम चलाएंगे आपकी नीस हंसिनी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हैप्पी बर्थडे हंसिनी आपको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद हमारी ओर से और स्वीटी की ओर से नंद जी हमारा साथ दे रहे हैं और जितने भी लोग घर पर है या घर से बाहर है काम पर है रास्ते पर है या कहीं जा रहे हैं कहीं से लौट रहे जितने पैसेंजर है और हमें बस में है गाड़ी में है लॉरी में है जिस वाहन में भी हैं आप हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है सो गीत आपके नाम फ्रॉम द मूवी वेलकम टू द जंगल चलिए एक साथ सुनते हैं गाना

0: इसे भरपूर मूवी जहां जाप हंसेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक 3 घंटे का हंसना है इस फिल्म में। 3 hours कॉमेडी, नॉनस्टॉप कॉमेडी, वेलकम टू द जंगल। आजकल ये फिल्म हमारे सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है बड़े पर्दे पर, क्या बात है। नेक्स्ट गाना साड़ी का गाना है, धमाल 4 से ले गया। ये भी मूवी बहुत अच्छी है, इस फिल्म को आप देखेंगे तो अपना सारा स्ट्रेस भूल जाएंगे। फिल्म का नाम याद रखिएगा, धमाल 4, धमाल 4। कहते हैं कि किसी इंसान के पहनावे से, उसके कपड़े से या पैसे से उसकी ताकत नहीं होती, इंसान की ताकत होती है उसके व्यवहार से, उसके शब्दों से, उसके तब वो पहचाना जाता है। इंसान के पास पैसा हो सकता है, धन दौलत हो सकता है, पर अगर इंसान के पास गुड मैनर्स ना हो तो वो इंसान किस काम का। सोचने वाली बात है। सो द नेक्स्ट गाना स्वीटी जी की ओर से, उसकी नीच हंसनी की नाम, यस माधवी दुमो जी हमारा साथ दे रही है, हेलो। एंड ये गाना मधु जी के नाम, मधु, फिर अनुमोता एब्रॉन से है, हाय। गाविन, प्राची, कायरा, सियना, ये लोग हॉलीडेज में है, मॉरिशस में एंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है। वालिनी, कालूम, इसी डैनियल, गीत आपके नाम, चाचा देव, चाची माला फ्रॉम यूके। एंड ये गीत चलेगा अनुषा की ओर से, उनकी मामा चंद्रिका और दिमेश के लिए, बहुत बहुत प्यार के साथ, यस। एंड यही गाना हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम। इंदिरा जी, अंबर जी, कैसे हैं आप? इंदिरा जी बहुत प्यार से मैं सुन रही हैं सुबह से, थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। शोभा भी हमारा साथ दे रही है। संगीता मिलन लाखोजा से, हाय संगीता, और बहुत प्यार से मैं सुन रही है, थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम। रेहाना जो है नोटरडेम से है, हेलो रेहाना जी फ्रॉम नोटरडेम। और इंदिरा की ओर से गीत राजेश उगर और उसके पूरे परिवार के लिए। और यहाँ लाइन पे हैं कुछ दोस्त जो हमारे इंतज़ार करें, ओके थोड़ी समय में हम आपसे बात करेंगे। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका जी। आपका शुभ नाम?
1: मेरा शुभ नाम है माया।
0: माया कहाँ से?
1: ख्वाबुचिक
0: से। आपका स्वागत है।
1: मैं अपनी बहन के लिए एक गाना मांग रही हूँ।
0: बेशक।
1: इसका नाम है रश्मि रामलगन। जो मोटालोंग रहते हैं और उनके सभी परिवार जो रोजगार रहते हैं, भाई बहन, उनके सब भाभियों रोजगार में रहते हैं, और निफ्यू नी सब,
0: और पूरे परिवार की भी। ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत से लोग इंतजार करें प्लीज। और एक दो से लाइन पे, हेलो 402-805। हेलो,
2: हेलो
0: प्रेमिला जी, कैसी हैं आप?
2: नाम?
0: क्या बात है, क्या बात है, इतनी सुबह सवेरे आप हमें सुन रही है ना?
2: हाँ, सुन रही।
0: और मनोरंजन भी हो रहा है।
2: बहुत
0: कैसा है हालचाल? ठीक ठाक,
2: हालचाल बहुत ठीक है।
0: परिवार सब कुशल मंगल, बच्चे लोग सभी ठीक? अगला गाना किसके लिए? साड़ी का गाना है।
2: हाँ,
0: शादी की साल, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो, बधाई उन्हें। और उनके पति का नाम क्या है?
2: थैंक यू।
0: हाँ,
2: पति का नाम है प्रवेश।
0: ओके,
2: नारायण परिवार और शिशर परिवार, शिशंकर परिवार।
0: ओके,
2: सो दे रहे हैं। और रामनाथ परिवार,
0: रामनाथ परिवार भी है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फ़ोन किया। और यही गाना जो है हम चलाएंगे, कासम खास, ग्रैंड सन रियांश, सर नाम के नाम, आप है कौन दिमाग से, बेस्ट विशेज, पापा कौशल, मामा कुष्मा, दादा प्रकाश, दादी शकुन, तला, अनिता, अमिता, ग्रैंड पारुषी फ्रॉम कनाडा, रविश, पप्पू, दीपा, फूफा, सचिन, भाई कृष्ण, विदिश और सब सर नाम, लीलकंठ, परबोतिया और बिलक परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार। रियांश सर नाम को, रियांश सर नाम, हमारी ओर से भी आपको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद है बेटा। फिर यही गाना हम चलाएंगे, खासम खास, श्रवण के नाम, हेलो। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे जितने बड़े जन हैं, जो दादा दादी है, चाचा चाची है, नाना नानी है, आप सभी के नाम यही गाना जाएगा। सब दुमर परिवार जो फ्रांस में है, रामशरण परिवार यूके में है और मॉरिशस में भी। और यही गाना जाएगा शारदा चमन के नाम। शारदा चमन का जन्मदिन है आज, बधाइयाँ अक्षय, कुणाल, अमृता, वरुण और सब बाबाजी परिवार की ओर से। हाय बीना पादू, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतिमा दुखित्रा

राम गीत आपके पति कृष्ण, मामा बसंती, सब दुखित राम और राम शरण परिवार के नाम। और यही गाना जाएगा खासम खास बीना पादू की ओर से, सब पादू परिवार के नाम जो रॉस बेल रहते हैं। और यही गाना हम चलाएंगे दोस्तों का नाम जो कोशिश तो करे पर लाइन नहीं मिल रही है। फिल्म का नाम है धमाल 4, साड़ी का गाना। चलिए एक साथ सुनते हैं।

जिसका दिल साफ होता है वो हर जगह से ठुकराया जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जिसका आंसू बात बात पर निकलता है वो दिल के कमज़ोर नहीं, दिल का सच्चा होता है। कितना सच्य है, कितनी सच्चाई इस बात में है कि नहीं। यस, और अगला गाना, इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, और इस दीवाने लड़के कौन समझाएगा जी। यस, संजय बिहारी। यस, ये प्यारा सा गाना उनके लेट चाचा जी, हाँ, जो दुनिया में नहीं है। चाचा जी का नाम है देवदत्त सिंह बिहारी, बुआमोंग अपने पापा।

0: के रहने वाले थे, आज वो दुनिया में नहीं है। सो संजय अपने लेट अंकल चाचा देवव्रत सिंह बिहारी को याद कर रहे हैं, और यही गाना जो है हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बहुत प्यार के साथ। यस ओके यस, गाना जो है चलेगा आशा जानू के नाम, आप रहती को तेज आपके पूरे परिवार के लिए। फिर राफिक मोहित तयाग से, भाई आबू सलाम वालेकुम, आप है वाकवा से, ये गीत आपकी बेगम आपके बच्चों सभी आबू परिवार के नाम वाकवा से है। राफिक मोहित तयाग से ये गीत आपके नाम भी। लॉन्ग चिबुक राजा स्टीव राजमन्ना नानो प्रवीण भैरव संजीव और प्रीतम दिनू, दिस गाना फॉर यू। सैतोबे SSS कॉलेज जो कि साउथ में है, वहाँ के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ के रेक्टर के नाम स्पेशली, और एक और दोस्त है वहाँ पर मिस्टर दाया, मिस्टर साजू, मिस्टर रोसा, मिस्टर धर्म गंगू, व्यापेन, प्रतिमा, दीना, अपाया और सभी स्टूडेंट्स और अध्यापक जो आजकल स्कूल की छुट्टियों का मजा ले रहे। हैप्पी स्कूल हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू। ओम देवी लक्ष्मी ओम देवी लमिचान, ये गीत आपके नाम भी। और यही गाना हम चलाएंगे शोभा जी की ओर से, अब वाकवा से है, ये गीत आपके नाम हम चलाएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। शुभ दिन कहते हैं आपको शोभा। सादिया जी हेलो, ये गीत आपके नाम भी हम चला रहे हैं बहुत बहुत प्यार के साथ। श्रेया का जन्मदिन है, सो बधाइयाँ प्रतिमा की ओर से, सब राम शरण परिवार की ओर से। बद्री प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड माधवी थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी ऑन टिकटॉक पेज। जी हाँ, हमारे बहुत सारे जो श्रोता है टिकटॉक पर आगे है, हमारा साथ दे रहे हैं। यू एंजॉइंग द लाइव, मी टू। और यही गाना जो है हम चलाएंगे उन सभी दोस्तों के नाम जो बीमार है, अस्पताल में है, क्लिनिक में है, अनाथ आश्रम में है, और दुनिया में जिसका कोई नहीं है। तो बस हम कहेंगे आप निराश ना हो, हम आपके हैं, हम आपके परिवार है। जी हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका खुदा होता है। सो नेवर गेट डेस्परेट इन लाइफ, नेवर गेट डिप्रेस। होता है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है, हर किसी की ज़िंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं। सो दिस मॉर्निंग अगर आपका मूड ठीक नहीं है, किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया है, आपका मूड जो है ऑफ हो गया है, सो आई विल से जस्ट फॉरगेट इट। उसने कह दिया सो कह दिया, पर आप उसकी बात को अपने दिल में मत रखिए वरना आपका पूरा दिन बिगड़ जाएगा। लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए। ओके, एक दो से लाइन पर उनसे मिलेंगे, देन आई एम गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग इस दीवाने लड़की को। हेलो हेलो, बात कीजिए। हेलो
1: नमस्ते बेटा प्रताप।
0: नमस्ते माता जी, आप कौन?
1: मोंटेन लॉन्ग से सती है।
0: हाँ माता जी बोलिए।
1: हाँ, हमारी बेटी प्रिया के 30 तारीख 30 जुलाई के जन्मदिन था।
0: हाँ।
1: और उनके बेटे तनवीर मोतीलाल 28 तारीख 28 जुलाई का जन्मदिन था। और उनके पति रवीन मोतीलाल और उनके माता जी ललिता जुरिया और उनके पिता विजय जुरिया, उनके भाई अश्विन अनिल, बहन अनु, उनके सासू माँ शोभा मोतीलाल।
0: हाँ।
1: और मेरी तरफ से।
0: हाँ।
1: और उनके बहन, उनके बेटी और एक दो बेटी अनु और उमिका।
0: हाँ।
1: उमिका और वेदिका। और मेरी तरफ से सती।
0: हाँ।
1: शुभकामना भेज रही हूँ उनके जन्मदिन पर।
0: ओके, तो चलाएंगे अगला गाना उनके लिए?
1: एक चला देना एक सुंदर सा गीत जन्मदिन।
0: जी हाँ, जरूर हम चलाएंगे, आप सुनते रहिए।
1: हाँ, आपका शुभ दिन।
0: नमस्कार, शुभ दिन आपको भी। और फिर हमारे साथ जुड़े विकेश जी, हेलो विकेश, गुड मॉर्निंग। हाय अनुराधा, अंकुश जी सुस्वागतम, आपका भी हम वेलकम करते हैं। और ओके लेट मी, चलिए गीत सुनते हैं वरना अभी हम कॉल लेते रहेंगे, गाना नहीं रह जाएगा। इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी सरफरोश। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए।
2: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
3: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
2: सुना।
3: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: शाबाश अमीन खान साहब, क्या बातें कही आपने। कहते हैं दोस्तों कि आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले आए थे और इस दुनिया से एक दिन अकेले ही जाएंगे। इस सफ़र में दुख आएंगे, दर्द आएंगे और कैसी बहुत सारी ऐसी परेशानियां आएंगी जिससे आपको खुद लड़ना है इससे और आगे बढ़ना है। लोग आपके साथ दे सकते हैं, आपको हौसला दे सकते हैं, पर आपका दर्द पूरी तरह से कोई नहीं ले सकता। आपका दर्द आप ही को झेलना पड़ता है और प्रभु का साथ दे तो प्रभु आपका दर्द ले सकते हैं कि नहीं। यस, और अगला गाना गली गली में फिरता है, जहाँ बहुत ही प्यारा सा गाना। ये गाना हम सुनेंगे डॉक्टर राकेश रामचंद के नाम फ्रेंड मायों से है, और राकेश, रितेश और रिवेश, ये भी त्रिदेव है, पापा और बेटे हैं।

0: और पापा राकेश अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। रितेश और रिवेश भी अपने पापा के जान है, अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। राकेश, यह गीत आपके दो बेटों रितेश रिवेश के नाम, आपकी पत्नी है आशा और सब रामचंद्र परिवार जो अपने मायों से है। ऑलराइट, यही गाना हम चलाएंगे। ऑलराइट, टिकटॉक पर हम देख रहे हैं ओम देवी हमारा साथ दे रही है। विकेश माधवी डुमर जो है लंदन से हमें देख रही है टिकटॉक पेज पर, थैंक यू। हाय साई भावना भैरव, अगला गीत आपके नाम, और ये गीत जाएगा निजम बहादुर, निजम बहादुर के नाम। वन देवी कुर्सी, हेलो शर्मीली, यस। ये गीत जाएगा प्यूपिल्स ऑफ ब्लॉन्श नेज पीपीएस, वहाँ के सभी टीचर और पेरेंट्स के नाम। और अभी देखते हैं लाइन पे कुछ दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अगला गाना दैट विल बी फ्रॉम द मूवी थ्री देव है, गली गली में। एक दोस्त से उनसे मिलेंगे। हेलो हेलो, मेरी बात में ये समझ नहीं आती कि जब आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन लेते क्यों नहीं। हेलो
1: हेलो प्रताप भाई जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आप कब से फ़ोन ले रहे हैं? आप फ़ोन नहीं ले रही हैं, क्या बात है?
1: फोन किया।
0: ओके ओके, हाँ बोलिए बोलिए।
1: आप ठीक है ना?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? ठीक ठाक,
1: मैं ठीक हूँ। श्रावण ही चल रहे है ना?
0: हाँ, श्रावण मास है।
1: पूजा हो रही है।
0: हाँ।
1: अच्छा सा गीत डाल देना बच्चों के लिए।
0: हाँ जी जरूर चलाएंगे।
1: मेरे बेटे सूरज विकास पाविन और मेरी बेटी सविता कृतिका कृतिका और विजय, मेरी बेटी नाती दामाद सब है।
0: ओके जी जरूर चलाएंगे। अगला गीत उनके नाम, ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज हेलो
2: हेलो प्रताप जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
2: हम भूषण से बोला था, दिव्यानी।
0: हाँ दिव्यानी बोला।
2: कल हमारा जन्मदिन रहा।
0: हैप्पी बर्थडे आपको, ढेर सारा प्यार।
2: हमारा चार गो बेटा किरण किशन प्रीतिस आतिस और दुगो बहू बा लीना बहुना और हमारे नातिन अश्नी और ऋषि और हमारे नाती बास्ते हम एगो निमन गिद्दा जान। हमारे तीन गो बहन बा राधिका और अनिता सत्यानी।
0: हाँ बहुत से लोग इंतजार करे। हेलो सुनीता जी, मेबर्ग से। हाय सुनीता, कैसे कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वहाँ मौसम कैसा है मेबर्ग में?
3: आप अच्छे हो?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मेबर्ग में मौसम सुहाना है, मैंने सोचा सुहाना मौसम। थोड़ा थोड़ा पानी बा, थोड़ा थोड़ा चलो। हाँ ठंडा तो करता, यहाँ तो ठंडा करता
3: हूँ।
0: मौका ठंडा के था था जब सौ मोहता ही बने तो अरे मोहता ने तो उड़िया जाती थी सर।
3: और गाना मांग रखी हूँ, बर्थडे का गाना। आज मेरे नाती का जन्मदिन है।
0: क्या नाम है, क्या नाम है?
3: भविष्य। उसके मामा के लिए वर्षा और उसके पिता का नाम है युधिष और उसकी बहन का नाम है हर्षिनी।
0: ओके।
3: और मैं उसकी दादी हूँ।
0: हाँ।
3: और सभी सुनने वालों को भी, आपको भी, सभी दोस्त को भी।
0: हाँ। और आज क्या प्रोग्राम है, घर ही पर रहेंगी या कहीं घूमने जा रही है? नहीं घर ही पर।
3: एक गाने बैठते नहीं डालना?
0: नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज आप क्या घर पर रहेंगे या घूमने जाएंगी? ओके ओके ओके सर, सुनीता ने समझाने के हमने क्या कहा, कोई बात नहीं। श्यामा विल में से, हाय श्यामा।
4: हेलो नमस्ते प्रताप जी,
0: कैसी हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ, आप?
0: एकदम ठीक ठाक, आपका आशीर्वाद है।
4: मैं श्यामा विल में से, तो मेरी नातिन अनुष्का रामसगन का जन्मदिन है।
0: हाँ अनुष्का का जन्मदिन है आज, हैप्पी बर्थडे अनुष्का को।
4: हाँ, तो उसके मामा हैं रेशमा, पापा हैं अनिल, भाई यश और आंटी हैं श्वेता नीतू, मौसा है मानोज और कजिन है वृष्णी निधि परी यानिश और मिलाप और रामसगन परिवार की ओर से सुंदर सा गाना डाल देना
0: जी। हाँ प्यार सा गीत हम चलाएंगी और एक दूसरे लाइन पे उनसे मिल लेते हैं। हेलो
5: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते जी, ये प्यार
5: जी, ये प्यार,
0: ये प्यारी सी आवाज किसकी है
5: जी? तो आप ठीक से है? प्रतिभा।
0: प्रतिभा आपका।

0: थे।
1: जी आप ठीक है?
0: मैं ठीक हूँ।
1: ओके, मैं इस महीने में 4 जन्मदिन है।
0: हाँ।
1: आप एक सुंदर सा गीत डाल सकते हैं?
0: जरूर, नाम बताइए। नाम बताइए।
1: हाँ, कविश कौशल अर्नव मानव।

0: आप जी, धन्यवाद।
1: थैंक यू जी, आपने फोन किया। हेलो, चार चार बर्थडे, क्या बात है, डबल धमाल, नहीं ट्रिपल धमाल। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते प्रताप जी।
1: नमस्ते, आप कौन?
2: मैं इंदिरा मेबेक से।
1: हाँ इंदिरा जी, बोलिए।
2: आपको सावन मास की शुभकामनाएं।
1: आपको भी सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: जो गाना आप चलाने मेरे सभी दोस्तों के नाम और आपको भी और सभी एमबीसी वाली टीम।
1: थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। चलिए साथ सुनते हैं प्यार सा गाना, गली गली में फिरता है। डॉक्टर राकेश रामचंद स्पेशली फॉर यू, और आपकी बेटी रितेश विवेश और पत्नी आशा के नाम है नो रामचंद परिवार ऑफ प्लान माय योर।

लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, प्रिय श्रोताओ, देवी और सज्जनो, इसी गीत के साथ ही सुबह का नजाना यो मस्त मॉर्निंग शो का समय यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। 9 बजे का फ्लैश न्यूज के बाद आज की चर्चा प्रोग्राम पीक टाइम मैगजीन। सुबह के 6 बजे से अभी तक हमारा साथ देने के शुक्रिया। हमें टिकटॉक पेज पर देखने के लिए, रेडियो पर सुनने के लिए, आपके SMS फोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज रियली ग्रेट प्लेजर टू बी विद यू दिस मॉर्निंग। हमारी आपकी मुलाकात हो रही है आज शाम के 5 से 6 बजे रेडियो मनोरंजन और इन फ्री पर पुराने गीतों के साथ पुराने नगमे प्रोग्राम में। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम मी अजय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आदाब। शुभ दिन, लव यू ऑल, नमस्कार।

0: सुबह के ठीक 9 बजे हैं और समय हुआ है संक्षिप्त समाचारों का। समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं टीना बुदना। टीना जी नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि टारगेटिंग का उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों को अधिक सहायता देना था और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे। कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलिनियस प्रोविजंस बिल सुधार के साथ पारित कर दिए गए। इन दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है और इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में सुधार किए गए। और पेंशन रिफॉर्म से जुड़े सुधार पर सदन में तीखी बहस भी हुई। विपक्ष नेता जो लेजोंगाओ ने वोट बाय डिवीजन की मांग की। पर्यटन जूनियर मिनिस्टर सिडनी पियर सरकार के एकमात्र सदस्य रहे जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया। वहीं विपक्ष के 5 सांसदों ने भी इसके खिलाफ वोट दिया। राज्यसभा के कार्य अब मंगलवार 4 अगस्त को दिन के 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। सिडनी पियर को कल शाम पर्यटन जूनियर मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया क्योंकि नेशनल पेंशन एक्ट में सुधार के मुद्दे पर फाइनेंस बिल की चर्चा के दौरान सांसद सिडनी पियर ने सरकार की नीति के खिलाफ जाकर सुधार के विरुद्ध वोट किया था। दूसरी खबर में जूनियर मिनिस्टर और सांसद वेरोनिक लुगोविन के पति गुलशन गोविन को रेनियन टापू में लगभग 100 किलो जमाल जब्ती मामले की जांच के सिलसिले में कल गिरफ्तार किया गया। इस बड़े घटनाक्रम से इस मामले को राजनीतिक और न्यायिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ मिल गया है। अब सांसद के पति से पुलिस और जाँच एजेंसियाँ पूछताछ कर रही है। और कोविड-19 महामारी के समय खरीदे गए लेकिन कभी नहीं मिले वेंटिलेटर मशीनों के मामले में सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। कल कैबिनेट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 2 कंपनियों के खिलाफ स्पेन के कोर्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है। ये 2 कंपनियां हैं पैक एंड ब्लिस्टर और मेडिटेरेनियन हेल्थ केयर सप्लाई नेटवर्क SL। और आज कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने 2 मेडल्स जीते। नोएमी अल्फोंस ने 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया जबकि मेयावेन क्लिया ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आज मॉरिशस समयानुसार रात के 10:28 पर नोएमी अल्फोंस और रांडी पेरिन 400 मीटर की रेस में भाग लेंगे। और आज की चर्चा कार्यक्रम में आज CEB द्वारा प्रस्तावित न्यू फोटोवोल्टाइक स्कीम 2026 पर चर्चा की जाएगी। और आज किरण जानकी के मेहमान होंगे CEB के कस्टमर सर्विस ऑफिसर धर्मराज जूतन जी और CEB के इंजीनियर भूमेश नरसिंह जी। तो किरण जानकी के साथ आज की चर्चा कार्यक्रम सुबह 9 बजे के समाचारों के बाद दिन के 10 बजे तक। विदेश में मोरक्को की सीमा से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेउटा में गुरुवार को हजारों प्रवासी घुस आए। प्रवासियों ने बॉर्डर की बाड़ तोड़कर स्पेन में प्रवेश कर लिया जिसके दौरान कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।

0: आज की चर्चा।
1: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा ई कार्यक्रम में आज हमने के जो विषय बा वो हमने सब कोई से जुड़ल बा एगो ऐसा संस्था जेकर सहयोग जेकर सेवा हमने सब कोई रोजाना प्राप्त करी ला जा बात कर थे जा सीबी के। सीबी ई बरिस 2026 में एगो नवा स्कीम के साथ आलबा, फोटोवोल्टाइक स्कीम, और एकर नाम है हाउसहोल्ड रूफटॉप फोटोवोल्टाइक स्कीम 2026। और ई स्कीम में कौन नवापन बा कहे कि लगभग 10 बरिस से ओकर से जस्ती ही हमने के देश में फोटोवोल्टाइक के जोन इंस्टॉलेशन बा ओकर जोन सेवा बा स्थापित बा। लेकिन 2026 में जब ई नवा स्कीम आवता तो एकर अंतर्गत कौन कौन नवा बात बा, काहे ई सब नयापन आनल गल बा, ई सब पर बातचीत करे खातिर आज हमने संगे दुगो मेहमान हवन सीबी के। पहला तो सीबी के कस्टमर सर्विस अफसर श्री धर्मराज जूतन जी। जूतन जी नमस्ते,
2: नमस्ते जी।
1: और दूसरा हमने के हवन सीबी के इंजीनियर श्री भूमेश नरसिंह जी। नमस्कार नरसिंह जी, आप दोनों जना के आज स्टूडियो में स्वागत बा। और देखत है जा कि एक सप्ताह से जस्ती समय से हमने सुन लिया थे जा रेडियो और टीवी पर और अखबार में कि सीबी एगो नवा स्कीम के साथ आलबा फोटोवोल्टाइक के, तो हमने चाहते जा कि आज एक कार्यक्रम में आप लोग जनता के बतेबा जा समझेबा जा कि ई नवा स्कीम का है, कौन नयापन बा ई फोटोवोल्टाइक इंस्टॉलेशन में जो रूफटॉप हाउस होल्ड रूफटॉप से जुड़ल बा, केकर एकर से सीधा संबंध बा, के एकर से फ़ायदा हुई होला बा, ये सब बात पर आप लोग हमें के थोड़ा जवाब दे बजा आज। लेकिन सबसे पहले हमने के ये बतावा कि नवा स्कीम में ऐसा कौन सी बा जो जनता खातिर एगो आकर्षण बा।
3: हाँ जी, इमें एक है सब है बात समझे के पहले ये समझे के चाहें कि हमने के सरकार के काहे है स्कीम लॉन्च से कर ले
1: बा। हाँ, काहे
3: तो जाने ना जैसे सरकार पहले से बोल रहे हमनी एक टारगेट अचीव करे खोजते हैं सर 60% एनर्जी रिन्यूएबल बाय 2035। तो है टारगेट वा अचीव करे खाते हैं तो ढेर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं सर, और ऐसा प्रोजेक्ट वन सब एनर्जी रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, commercial, industriel, ढेर मना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं सर, ताकि हमने ये टारगेट वा के अचीव सके।
1: और ये टारगेट वा हा का कौन उद्देश्य बा आप लोग के?
3: तो उद्देश्य तो एनर्जी रिन्यूएबल जस्टिस आई के मॉरिस में हमने के डिपेंडेंस जो बा फॉसिल में, फॉसिल फ्यूल जैसे अभी गड़बड़ी से जैसे जाना था वह एगो सिचुएशन रहा जहाँ पर ही हमने के पावर कट करके पड़ता है, डिस्चार्ज करके पड़ता है, बस कि हमने लगे इतना एनर्जी हमने के जनरेशन में एगो प्रॉब्लम हो रहा है। तब जैसे जनबा टेलीविजन पर एमबीसी पर एगो अलार्म जैसे सिस्टम डले रही
1: है, पीक टाइम रहा,
3: पीक टाइम रोज रहा, जोन रहा और वेयर, तो है के आधारित आदमी लोग के सेंसिटाइज करते रही सर कि जैसे जैसे रूज जोन में आते हैं सर, तो एक थोड़ा सा अपन बगा सिचुएशन कॉन्ट्रीब्यूट करके एक लाइमिया जो गैस प्याज करते हो लाइमिया कहीं पर बरल बा या बुता दे के या कोई लापाई बरल बा बुता दे के, ताकि ऐसा सिचुएशन दे रिस्ताज में नहीं आप सर है टारगेट तो है कि है सिचुएशन वहाँ के इविटे करे खाते हैं। तो ये बारिश से मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हमने के मिनिस्टर पार्टी का सेवा दें एनर्जी रिन्यूएबल पर जस्ती लॉन्फाज जा रहा था वन, और इतना लॉन्फाज कि ऐसा स्कीम आना था वन ताकि आदमी लोग अपने आप इन्वेस्टिंग करें सर स्कीमों में आए के और फोटोवोल्टाइक इंस्टॉल करके हमने के डिपेंडेंस जो फॉसिल फ्यूल से घटा के।

0: अच्छा तो नरसिंह जी हमने के बतावत हवन कैसे हमने के देश में ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली के जो उत्पादन बा एगो समय आ रहल जहाँ पर एगो ऐसा स्थिति रहल हमने के चाहत बहुत सावधानी बरते के रेडियो टीवी पर अनाउंस करल जात रहल घोषणा करल जात रहल कि हमने के जो बिजली के पैदावार बा वो कितना हद तक वो कमती हो ले जाता और परत रहल कबो कबो बिजली के कटौती भी करे के बड़ा बड़ा देश में अक्सर ऐसे होवेला कि दिन भर में थोड़ा समय खातिर बिजली काट देवल जाला कहे कि बिजली के पैदावार कमती होवेला। लेकिन मॉरिशस में हमने देखते जा कि बहुत ही सस्टेनेबल रूप से बिजली के उत्पादन होते रहेला और बहुत अच्छा से एक संचालन होता अभी तक देखते जा कैसे हमने के एगो सेंसिटाइजेशन कैंपेन प्रस्तुत करल गल रहा कब आपके चाहे ना बिजली के इस्तेमाल करे के कब नहीं करे के कब एगो ऐसा स्थिति चल रहा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके चाहिए बिजली के जो गस्पियाज बग जो ज़ाया करत हुआ ऐसा ऐसा स्थिति चलावेला जहाँ आपके ही एगो ये बातें ख्याल नहीं रहेला कि कहूँ पर ग्लोब बरता कि एगो ऐसा लापाही ऑन कर देले हुआ एगो ऐसा समय में जहाँ पर आपके जस्ती पर बिल आपके बिल जस्ती हो जाए तो ये सब स्थिति से बचे खातिर सीबी लगातार एगो सेंसिटाइजेशन कैंपेन अनलेबा और अभी देखत है जा कि अपन बिजली के पैदावार के जस्ती समृद्ध बनावे के डाइवर्सिफाई करे खातिर नवा नवा स्कीम्स के साथ आवत हवन जा और ई में एगो ईबा हाउस होल्ड रूफ टॉप फोटोवोल्टाइक स्कीम 2026 तो हमने के जुतन जी आप ई थोड़ा समझाओ कि ई जो स्कीम बा एकर एक तो हमने के बोला आप भी थोड़ा संक्षेप में समझाओ एकर उद्देश्य का है इन नवा स्कीम के काहे ई आनल गल बा और कैसे जनता सकी ई स्कीम के बारे में जस्ती जानकारी पावे जे आज के कार्यक्रम में अभिनय से मजियन जा और कैसे सकियन जा आपके दफ्तर में आके ई स्कीम से लाभ उठावे पर जानकारी पाते हुए एकर एप्लीकेशन करे
1: हमने सीबी देने से हमने जहाँ ले सकेला 24 घंटा हमने कुरा बिजली दे ला सा
0: जी हाँ
1: हमने के है ये ऑब्जेक्टिव है कि घर घर में 24 घंटा लोग के कॉम्फो खातिर बिजली रही तो हमने देख ली सा जब फ्यूल से जब बिजली पैदा करी ला सा तो हमने के पर्यावरण के तनी क्षति पहुँचेला तनी
0: नुकसान
1: होला तो ये सोच के हमने के सरकार देने से हमने देने से दोनों मिलजुल के एगो ऐसा एगो योजना कर लें सा रूफ टॉप सोलर पैनल डाले के घर घर में जे सकी जगह बड़ा घर बहु सकी तीन बड़ा पैनल डाले तो है से हमने के लॉन्फिगोन में तनी कमती क्षति पहुँची नुकसान पहुँची तो मैं हमने के जो आगे के जो पीढ़ी आए हमने के कोशिश नहीं कि हमने कुछ नहीं करनी सर नेक्स्ट जेनरेशन खातिर
0: पर्यावरण बर्बाद करके चल गई
1: के धरती माँ की तनी निमन से रखब सर तनी जब मैं हमनियो निमन लेयर स्प्रे करब सर तो हाई ऑब्जेक्टिव से हमने की सी बी देने से सरकार देने से ही योजनावा डलने से अब हाई योजनावा की लाभ उठाई खातिर हमने के जितना ग्राहक बाद जो सकी फोटोवोल्टाइक डाले अपन घर में हमने मांग कर अब जाओ लोग कि आई के हमने के दफ्तर में हमने के दफ्तर मोरिस के कोना कोना में है जहाँ मूड़ी उठाए बता एगो सी बी के दफ्तर है
0: जरूर
1: तो हौजा आके अपन कहती दौ से आने के अपन कैसे बोला घर के को माटी के कोतरा और अपन एगो बिजली के बिल कोनो महीना आगे के आके हमने आगे मांग करे के हमने हम मांगवा के दर्ज करब सा हमने के कंप्यूटर में हमने के कंप्यूटर में जब दर्ज हो तो जाए भाई नर्सिंग के शिक्षों में तो उस शिक्षों में जाके तब वो लोग कमवा आगे लेके चली।
0: अच्छा और अभी देखा जाए थोड़ा घरी में कि ये जो नवा स्कीम बा जब एकर एप्लीकेशन करबा तो कितना समय बाद आपके ई मिली और ये नवा स्कीम में और कौन कौन ऐसा बात के प्रावधान करल गल बा जैसे कौन कौन लाभ आपके मिली एकर से कौन कौन फ़ायदा आपके हो होला बा और थोड़ा एगो छोटा ब्रेक के बाद फिर मिलब जा और ये बातचीत के आगे बढ़ावब जा।

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको के एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने सीबी द्वारा प्रस्तावित नवा सोलर पैनल स्कीम पर बचा थे जा 2026 के, और आज के हमने के मेहमान हवन सीबी के कस्टमर सर्विस अफसर श्री धर्मराज जूतन जी और सीबी के इंजीनियर श्री भूमेश नरसिंह जी। तो हमने के जूतन जी, अभी आप बोलत रहला कि कौन उद्देश्य से ये नवा, मतलब कि जो नवा सेवा प्रस्तावित करल जाता वो आप लोग सामने अनले हवा जा, हमने के थोड़ा बतावा कि जोन स्कीम पहले से रहल और अभी जोन 2026 में नवा स्कीम आना था वजह, एक में कौन अंतर बा?
1: एगो रहल होम सोलर प्रोजेक्ट जोन सीबी अपन देने से ग्राहक लोग के एगो पैनल देवत हल, तो उ ग्राहक लोग हमने के क्लियर लोग उ नहीं पिए गए कुछ, उ सीबी अपन बगल से देवे। तो हमने देखनी सा कि है योजना जोन परिवहन लॉबीवनमा की तनिक कमती अथी करी गए थे, तो हमने लॉन्से के नहीं सही पोजेवा पब्लिक एट लॉज के मजे जैसे कि इन्वेस्ट करे तो उ अपन पैसा डाल के अपन कुआँ से कि पोजे करे और जोन जस्ती रही सेवे के दे के और सेवे उकर बदले में ओके पेये करी। तो है लीदेवा से हमने बनी सब डाल देला सा जनता के जोन बड़ा जनता बहु सकी है मैं आई, तो है मैं जनता लोग के पर इन्वेस्ट करके मैं है मैं सरकार देने से तनी एगो इंसेंटिव मिला था डीबीएम बगल से एगो कैसे ग्रांट बोले जरा है ग्रांटवा मिली उन लोग के जनता लोग के।
0: अच्छा,
1: तो है ये लोग के बहुत सहायता करी।
0: अच्छा, और कोनो अंतर बा?
1: अंतर बा दू दे पा आगे 5 किलोवाट रहल 8 किलोवाट और अब 50 किलोवाट ले सकेला सकबा एगो पाने डाले तो।
0: अच्छा,
1: रूफ पर दे पाऊँ बा।
0: हाँ, और ये भी दे पाऊँ बा कि ये बात पर निर्भर बा कि आपके जन बिजली के उपभोग बा कितना कौसो में करेला।
1: हाँ,
0: कितना आपके चाहिए।
1: हाँ,
0: उकर हिसाब से।
1: हाँ, उकर हिसाब से अब अपन पैनल डाल बा।
0: जरूर,
1: अब ढेर पैनल बड़ा पैनल डाल बा तो
0: कौसो
1: छोटा बात नहीं बोला पेन बा।
0: हाँ,
1: ती तो हम अपन सब अपन एगो कोट करके तब एगो पैनल बैठा के अपन।
0: जरूर, नरसिंह जी, अभी जो बात जूतन जी बोलन थोड़ा हमके विस्तार से समझावा, आप जे वहां पर एगो इंजीनियर हवा
2: जानेलो

0: जैसे चेतन जी बोलन सीबी में मिनिस्टर से के इन सचिव से जिफा पोजे लॉन्से कर रहे सर तो हमने पोजे लॉन्से कर सर ओबारेशर आदमी खाते हैं मिडिल इनकम खाते हैं और हाई इनकम खाते हैं तो मिडिल इनकम और जो ओबारेशर हों सर वो लोग अपन से न सेकेंड सर सिस्टम फोटो वोल्टाइक अफोर्ड करे तो जन सरकार बाय गोइन चाचिव अलग फिनांसमेंट यूएनडीपी और बाकी इंस्टीट्यूशन से वो लोग के सहयोग से हमने जन ओबालेशन और मिडिल इनकम खाते पोषे कर रहा सर तो फ्री पी वी किट के पोषे कर रहा सर तो सी वी में पी वी किट के पोषे दो विभाग में बातर बा एक बा सी बी फंडेड और एक बा कस्टमर फंडेड जो सी बी फंडेड प्रोजेक्ट बा हौला से बी इम्प्लीमेंटे करेगा सभी सब फिनांसमेंट करेगा और ग्राचुई जो फ्री पी वी किट बा आदमी लोग के दीवार जाना हैला ऑन गोइंग है जैसे जितन जी बोला पहले होम सोलो रहा तो अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट बा होम सोलो फाज थ्रा इम्प्लीमेंटे हुआ था अभी ले चला था नेट बिलिंग बा और हेला आई खरी से हेला फ्री पी वी किट है स्कीम जो हाउस होल्ड रूफ टॉप हाउस होल्ड स्कीम हैला फ्री पी वी किट स्कीम में नहीं चलेगा हेला कस्टमर फंडेड पी वी स्कीम द टारगेट बा एगो हायर कैटेगोरी कस्टमर के जो जिनके मुआयें बा फिनांसमा करे के और जो देखबा तो जो फ्री पी वी किट बा वो लोग के इंसेंटिव थोड़ा सा कमती बा parce que ego investissement c'est bien que ça au gouvernement et ça tu ego fixe incentive de valjana c'est home solo mais ego fixe incentive de 433 rupees mais ça monthly on a monthly basis household gen, customer funded scheme on me va hola mais et nine incentive ne mille just incentive mille just intéressant le là or investissement va client que carré ça là तो है स्कीम है कैटेगरी में पड़ेगा तो है स्कीम पहले से हर हर हर बरी से जो जिन स्कीम लॉन्च कर है स्कीम जो हर लेकिन जाफिर के लॉन्च कर दे रही सर तो वह इतना अंगूमो नहीं रहा इतना लोग आदमी जनता लोग यहाँ तेरे से नहीं होते रहे सर तो नेशनल बजट में हमने के प्रधानमंत्री अनाउंस कर लन कि है स्कीम खातिन एगो ग्रांट 75,000 रुपये ग्रांट मिली इन्वेस्टिशमा में राइट तो जब है अनाउंसमा होल तब एगो एगो एगो एनकोराजमेंट पब्लिक के लोकल तो 11/5 जुलाई के एगो फंक्शन हो रहा है जहाँ पर हमने के मंत्री हमने के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी और जूनियर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहा वो लोग ऑफिशियली है ग्रांट स्कीम के लॉन्च करना सर तो है ग्रांट स्कीम के आधार पर जे एक आदमी इन्वेस्टिशमेंट करता है प्रोजेक्ट में फोटोवोल्टाइक में तो 25% प्रोजेक्ट अमाउंट देवे में एक ग्रांट दे
1: अच्छा
0: अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 75,000 रुपीस मैक्सिमम 75,000 रुपीस वो लोग के मिली सेवा फिनांस मवा आदमी के करके चाहिए
1: जरूर
0: है ला जनता लोग के समझे के चाहिए तो जब है स्कीम लॉन्च हुई तो खाली है इंसेंटिव नहीं बा देखे के चाहिए जब सिस्टम हुआ दलियन सा बाद में जब फंक्शन हुई तो वो लोग के क्यों लाभ होता है उसमें तो
1: हाँ।
0: है ला आदमी के समझे के चाहिए ना कि दो को कलिटे के पेमेंट मोडालिटी रखते हैं राइट ताकि वो लोग के फाइनेंशियल इंसेंटिव मिले है कि आधार पर वो लोग के कैलकुलेशन करे के चाहिए एक बार ग्रॉस मीटरिंग पेमेंट मोडालिटी और एक बार नेट मीटरिंग पेमेंट मोडालिटी तो ग्रॉस मीटरिंग पेमेंट मोडालिटी में क्या हो रहा आदमी वहाँ जैसे एक सिस्टम इंस्टॉल कर लग मान लो 5 kW 5 kW इंस्टॉल कर लग 5 kW से जनरेशन जो बा 600 यूनिटें ऑन एवरेज मंथली जनरेशन हो रहा तो है जनरेशन जो बा वो सेबे उखरा 83 में पे करी ऑन एमरसी बस है बोली 5 kW की 83 में पे करी तो 600 यूनिटें के जनरेशन 83 में कैलकुले कर बे तो अनविरा 2,500 à 3,000 रुपये हो जाला ऑन एमरसी बेसिस तो ये जनरेशन पर आधार पर

0: तब है जिसमें 3000 रुपये के जेनरेशन कर ला और तो हर कंसम्पशन था जन सेबे से सेवी कर ला 2000 रुपये के सेवी कर ला है पर एगो नेट ऑफ होला 3000 रुपये 6000 रुपये जन जस्ती 5000 रुपये हौला जस्ती कैरी फॉरवर्ड होला हाउ महीना के जाला
1: अच्छा
0: हाउ महीना जे जस्ती कुरो सेवी कर ला तो एडजस्ट होला तो है ला कंटिन्यूसली जाला जेनरेशन और कंसम्पशन के मॉनिटरी अमाउंट के हर महीना जाला 12 महीना
1: मतलब जब इतना इतना पैदावार करत हवा और इतना कंसेप्शन करत हवा तो आपके हिसाब धरला बराबर हो जाता आपके
0: हाँ
1: कुछ पे नहीं परी करके
0: हाँ कुछ पे करके नहीं पड़ी और जो ऑफिस पर आके मिले
1: आवत
0: हो
1: महीना खातिर
0: 12 महीना के बाद देखब से कितना आके मिले हो बा
1: जी हाँ
0: तब थोड़ा रिफंड करब सर
1: अच्छा
0: हाँ
1: एक बार रिफंड के भी प्रावधान बा
0: हाँ रिफंड के प्रावधानी बा है ला ग्रॉस मीटरिंग में बा और है रेट बा कातो भी कातो में थोड़ा अब नेट मीटरिंग में थोड़ा सुन अलग बा तो नेट मीटरिंग पेमेंट मोडलिटी में जुन बा होना में थोड़ा लोकेशन देवा थे सर लेने चुवा प्रोजेक्ट करे के अपन घर में सेवी करे के और जन जस्टिस मांग कर बस सेबे से जस्टिस सेवी करते हो सेबे से हौला इको नेट ऑफ करे के हौला इनर्जी वैल्यू पर रहेगा मान लो 5 किलोवाट के सिस्टम इंस्टॉल कर लो 600 इंचे के जेनरेशन हो तो 600 इंचे के जेनरेशन हैला घर में सेवी करबा थोड़ा सा एक्सपोर्टे करबा और 400 इंचे टू सेबे से सेवी कर लो तो हैला एगो नेट ऑफ जैसे होए और लेनर्जी लेनर्जी के नेट ऑफ हुए और 100 इंच जो जस्ती एक्सेस रही हौला रेजो में जाए रेजो में एगो स्टोरेज स्टोर करो सर जैसे मान लो स्टोर रहें सर इस रेजो में जाए और हर महीना कैरी फॉरवर्ड हुई लेनर्जी के आधार पर और 12 महीना के बाद हौला 3 रुपये पर थोड़ा पे करो सर हाँ तो हैला नेट मीटरिंग के स्कीम हौला ग्रॉस मीटरिंग के स्कीम के पेमेंट में जा रही थी बा
1: अच्छा
0: तो दोनों फासिल बा दोनों इंटरेस्टों बा जनता के कैलकुलेट करे के चाहे कौन जस्ती इंटरेस्टों बा कौन मोस इंटरेस्टों
1: तो
0: बा
1: जनता के चाहे चयन करे के दोनों में से एगो
0: हाँ
1: वो
0: तो
1: ग्रॉस मीटरिंग पर जाए कि नेट मीटरिंग
0: हाँ
1: पर
0: है ला जनता के फैसिलिटी खातिन एक तो ऐसा कंपनी सेंसिटाइजेशन करते हैं सर
1: जरूर
0: वेबसाइट पर ढेर इंफॉर्मेशन डले हैं सर वो लोग जयन से वेबसाइट पर ढेर इंफॉर्मेशन मिली डॉक्यूमेंटरी एविडेंस डॉक्यूमेंटरी इंफॉर्मेशन मिली
1: जरूर
0: और एक वो कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं सर हौला हाउस में चलाए वेबसाइट पर जहाँ पर वो लोग अपन कंसुमेशन सेक्शन से डाले कैपेसिटी सेक्शन से डाले एगो एस्टिमेशन ले हो जाए कितना कौन सिस्टम एंटीग्रेशन हुआ वो लोग कहते हैं
1: जी
0: एगो कैलकुल हो जाए वो लोग कहते हैं और ही हमने के कॉल सेंटर यूनिट वो बा जो कातोवेन ड्यूज पर एक्सेसिव बा वो
1: हाँ
0: लोग के सुने कर बा वो लोग जस्ती इंफॉर्मेशन जे कोनो क्वेरी रही स्कीम पर वो लोग है पर इंफॉर्मेशन दिए सर
1: मतलब कि आप लोग के एगो हॉटलाइन बा
0: 89
1: 89 12
0: 92
1: सीबी के हॉटलाइन नंबर 89 12 पर आप लोग सब बजा फोन करे और अभी हमने के श्री नरसिंह जी जितना भी जानकारी दिलन ई जो नवा स्कीम बा ओकर से जुड़ल कौन कौन लाभ आपके होई कैसे सक बजा कैलकुले करे किसी जग बजा चुने कि आप लोग ग्रॉस मीटरिंग पर जेबा कि नेट मीटरिंग पर ई सब के जानकारी आपके 89 12 पर मिली
0: हाँ कतो मैंने ट्यूज वेबसाइट और है
1: वेबसाइट
0: कैलकुलेटर जब डालो से तो हो जो सकी इन्फॉर्मेशन मिले काहे है सब इन्फॉर्मेशन देवत हैं सर काहे सब सेंसिटाइजेशन करते हैं सर एगो ताकि जनता लोग समझन सर स्कीम वा कैसे फंक्शन हो रहा
1: जरूर
0: और अभी जो बा मौके कर ले हैं सर ढेर नवा नवा इंस्टॉलर आवता और दो तीन गो ऐसा इंस्टॉलर वो आवता जन थोड़ा सा ठगत है उनसे
1: अच्छा
0: हाँ तो है सब के चाहिए जनता के प्रिकॉशन है कि
1: मतलब जनता के चाहिए जानने के अच्छा से पर रख के अच्छा से जानकारी इकट्ठा करके ई खरीदे के नहीं कि हर बरी में जाके कुछ लेके चले बा अब ओकर में आपके जे समस्या होई तो आप सोचबा कि सीबी के ओर से खराबी बा
0: हाँ तो जहाँ जहाँ जैसे बोली है इन्फॉर्मेशन में हाउ जा जाइए इन्फॉर्मेशन है
1: जी
0: जैसे बोली सीबी वेबसाइट तो अभी एगो एग्जाम्पल देव रिसामा एगो एगो प्रॉब्लम हो रहा एगो दूसर कंपनी सीबी के नाम लेके अपन वेबसाइट क्रिएट करके इन्फॉर्मेशन दे बतन तो हौला अपन एतरे खतिन करतन सर और नॉर्मल दुआ ने बा सीबी के नाम लेके तो वो लोग के चाहे सीबी वेबसाइट जब जाए बता cb.mu है
1: सी बी डॉट
0: डॉट
1: एम यू
0: cb.mu
1: ई ऑफिशियल वेबसाइट है सी

0: bkcb.mu के अलावा कोनो भी वेबसाइट पर नहीं जाइए, कहे कि नकलची पेज भी बा जहाँ पर समस्या खड़ा हो रहा और सीबी के बढ़ा रहा एगो कम्युनिके जारी करे के और नहीं समझल रही जब काहे ई कम्युनिके आ रहा तो अभी आप बताओ था कि आपके चाहिए खाली और खाली cb.mu पर जाइए
1: और लोन खातिर dbm के वेबसाइट पर जिस इन्फॉर्मेशन मिली और dbm के सब कॉल करे है सब जहाँ राइट इन्फॉर्मेशन सके मिले
0: ज़रूर।
1: तो जैसे बोले थे दू को मोर आई थी बा पेमेंट खातिर तो अभी थोड़ा टेक्निकल बोला ताकि जस्टिस समझ पाए तो पहले जब स्कीम लॉन्च कर रहे थे तो एगो रिक्वायरमेंट रहा कि ओब्लिगेटो में चाहे ना बैटरी डाले के तो अभी है रिक्वायरमेंट थोड़ा सुन आ लीजिए कर रहे अभी जो बा अप टू 3.5 किलोवाट जे एगो आदमी इंस्टॉल करता था तो ओब्लिगेटो नहीं बात बैटरी डाले के सकब 3.5 किलोवाट विदाउट बैटरी इंस्टॉल करे से मुझे 3.5 किलोवाट से जस्टी जेब 3.5 किलोवाट से जस्टी तब ओब्लिगेटो में पर बैटरी डाले के और एगो मैक्सिमम एक्सपो जब सकब करे से 15 किलोवाट से जस्टी एक्सपोते नहीं सकब करे राइट एक्सपोते बोलते हैं रेजो में एक्सपोते नहीं सकब करे सिर्फ जे चाहब तब बैटरी सकब डाले और पाछे पैनल सकब 50 किलोवाट ले डाले तो है ला थोड़ा सा टेक्निकल है आदमी लोग थोड़ा सा सेकेंड से कन्फ्यूजन हो रखे तो कहे एगो लिबर्टी जल्दी से 50 किलोवाट पैनल्स से मो एक्सपोर्ट 15 किलोवाट जाने कोनो कोनो आदमी बा जिनके कंसम्पशन इनर्जी कंसम्पशन जस्ती बा और एक्सपोर्ट ढेर नहीं करे लन सर तो का कुछ खोजे लन सर कि एगो सिस्टम डालें सर अभी जब बैटरी डालियन सर बैटरी से कौन सी होए जब पानी से एनर्जी पूजा होए हाउला बैटरी में स्टोर होए और बैटरी से घर में सकें सर सेवी करे तो जितना पैनल डालियन सर जितना बैटरी डालियन सर उतना जस्टी सकें सर स्टोर करे और घर में सेव करे अब कोनो कोनो आदमी के कंसुमेशन ढेर बा कोनो कोनो आदमी के सब देखवा 25 मिल रुपी 50 मिल रुपी रेजिडेंशियल के बोलते हैं बस है स्कीम खाली रेजिडेंशियल कस्टमर्स के है
0: खाली अपन आपके निजी उपभोग के है अपन घर खातिर है बिजनेस खातिर नहीं
1: बिजनेस खातिर नहीं है तो कोनो कोनो आदमी जो जगह कंसुमेशन जस्ती बा और जो चाहते हैं उनसे एगो लोटोनोमी हो इलेक्ट्रिसिटी पर जैसे लोटोनोमी के माने मान लिया अभी कुआं कुबे हो वो लोग है इलेक्ट्रिसिटी के सर्विस कंटिन्यू कर सकते हो उनसे तो बैटरी में है एनर्जी बार स्टोरेज हो तब सेकेंड से सर्विस करे तो जस्टी बैटरी डाले के चाहे ना तो पैनल सेकेंड से 50 किलोवाट डाले और ज़्यादा बैटरी वो सेकेंड से डाले स्टोर करे सर्विस करे पोनो प्रॉब्लम में बात से मो एक्सपोर्टे मैक्सिमम 15 किलोवाट से जस्टी नए सेकेंड से एक्सपोर्टे करे राइट और है यो 15 किलोवाट तो नॉर्मल थ्री फाजे चाहे ना है टेक्निसिटी है जब इंस्टॉलर देखें सर तो लोग के समझाए है और जो दे टाइम टेक्निक हो बा हमारा वेबसाइट पर डले हैं सर
0: अभी हमने सुनत रही जा श्री नरसिंह के जे कि इंजीनियर हवन सीबी के इ खातिर बहुत ही टेक्निकल रूप में हमने के समझेलन इ जो नवा स्कीम बा ओकर पीछे कौन कौन टेक्निकल बात के ख्याल रखल जाता श्री जितन जी आप कुछ जोड़बा जो अभी हमने के इंजीनियर साहब बोल रहे ओकर में
2: हम है जोड़ब हमने की देखल गल बा जो समय बीतल गल बा जन हफ्ता बीतल गल बा ढेर ग्राहक लोग आलवन से मांग करी वे लोग संगे ढेर इन्फॉर्मेशन है बा कितना किलोवाट वो लोग इंस्टॉल करी कितना किलोवाट बैटरी रही ये लोग के तो हम है मांग करब हमने के जितना ग्राहक हमने के दफ्तर में आयन सर हमने के एक दफ्तर में आई सके गो क्वालिफाइड इंस्टॉलर के भेंट करके अपन जितना कंसुमेशन लोग सेवी करे ला घर में जितना लापागी बा लोग की बोल के लेके इंस्टॉल आते ऐसे कितना पैनल सकें से डाले कितना बैटरी सकें से डाले तब हमने के ग्राह ऑफिस में आके अपन मांग करेगी
0: तब उन लोग के जस्ती समझ में भी आए आप लोग भी सब बचा जस्ती उन लोग के गीदे करे
2: एग्जैक्टली हमने जस्ती सगब सब बोले कोची हाँ तो हर मांग इतना बा तब सब बोले हाई सीमा में जा सिपा हाउ सीमा में जा
0: जरूर। और जैसे सुनत हवा देखत हवा आज के हमने के कार्यक्रम आधारित बा ई नवा सोलर स्कीम के जो सीबी प्रस्तावित कर ले बा जब रेडियो और टीवी और अखबार में थोड़ा थोड़ा एक दो मिनट के जो जानकारी बा ओकर से ठीक ठीक समझ

नहीं आल कि इस स्कीम में का बा जाना थे जा कि एगो स्कीम आल बा तो इस स्कीम पर जस्ती जानकारी देवे खातिर आज हमने संगे हवन सीबी के दुगो अफसर श्री जुतन जी और श्री नरसिंह जी जे हमने के पूरा स्पष्टीकरण देवत हवन जा ई नवा स्कीम के बारे में अभी जानकारी और देवब जा आपके एकर पर फिलहाल ले जा एगो छोटा सा विराम।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। जैसे सुनते आवा था वह शुरू से ई प्रोग्राम के हमने सीबी के जो नवा सोलर पैनल फोटोवोल्टाइक स्कीम बा ई बरिस के ओकर पर बातचीत कर थे जा। और हमने संगे दुगो सीबी के अफसर हवन, धर्मराज जूतन जी जे कस्टमर सर्विस अफसर से अफसर हवन, और फिर सीबी के इंजीनियर श्री भूमेश नरसिंह जी जे लोग भोजपुरी में आपके भाषा में बहुत ही सरल रूप से आज के

0: स्कीम पर हमने के विस्तार से जानकारी देवत हवन और सरल भाषा में जानकारी देवत हवन जा। अभी हमने के नरसिंह जी बतैलन कि कौन कौन लाभ हमने के मिली ये नवा स्कीम से। एक तो DBM आपके ग्रांट दे और ये ग्रांट के बारे में और जानकारी पावे खातिर आप सब DBM जाए या उकर वेबसाइट पर जाए। और फिर CB के ओर से आपके एक तो ग्रॉस मीटरिंग और दूसरा नेट मीटरिंग के ये दूगो जो ऑप्शन बा ओकर चयन सकबा करे। एकर पर अभी आप जानकारी देला कि कैसे आप सकबा आपके जो उपभोग बा आपके जो कंसुमास्टों बा ओकर हिसाब से अपन जो प्रोजेक्शन बा वो करे। और फिर जो बच जाए जे एक बरिस के बाद आपके रिफंड भी होई होला बा। और ये जो दोनों चयन जो दुगो विकल्प ऑप्शन बा एकर पर जस्ती जानकारी पावे खातिर आप सकबा CB के वेबसाइट cb.mu पर जाए या फिर हॉटलाइन 9912 पर फ़ोन करे। या फिर जैसे अभी जुतन जी बोलन सकबा आप कोनो भी CB के कस्टमर सर्विस दफ्तर में जाके एकर पर जस्ती जानकारी पावे। लेकिन आपके चाहिए पूरा पूरा जानकारी रहे के आप सकबा ये बात पर जानकारी पावे कि आपके कौन चीज़ चाहिए, आप कितना मतलब पैदावार चाहत हवा, कैसन पैनल बिठावे चाहत हवा, फिर ओकर हिसाब से आप जे जाइबा CB तो हुआ पर आपके बतायन जा कि आपके कौन चीज़ चाहिए करे के। तो हमने के अब थोड़ा बोला ये जो CB के नवा प्रस्ताव बा जे एकर से लाभ उठावे चाहबा तो आपके कौन चीज़ चाहिए करके पहला।
1: जैसे स्पेशली पहले थोड़ा जान जाए के चाहिए जे ग्रॉस मीटरिंग में जाएबा या नेट मीटरिंग में जाएबा हेला समझ जाए के चाहिए। बस एक हरा समझ जाए तब टेक्निकल जाए के पड़ी। तो जब हेला डिसीजन ले ले रहे हो तो एगो क्वालिफाइड इंस्टॉलर के देखेंगे जैसे जुटन जी बोलन एगो क्वालिफाइड इंस्टॉलर के देखे के चाहिए। बस जनरल इंस्टॉलर थोड़ा एक तो थोड़ा कुछ आशा देख कितना
0: जी
1: मैं दबो एगो कैलकुलेट करी एगो इस्तीमाशों करी कितना तुरा चाहना इस्ताले करेगे। मान लो ग्रॉस मीटरिंग में जाएबा बोलिए इतना लिस्पास बा इतना पर सगमा इस्ताले करे के आधार पर कितना पैसा थोड़ा रिफंड थोड़ा मिली थोड़ा सेबे पे करी या मौसी कितना मिली। ग्रॉस मीटरिंग पर काफ़ी आसान बा। नेट मीटरिंग में थोड़ा आसान ट्रिकी बा। बस जब नेट मीटरिंग में जाएबा हो जा बैटरी इंस्टॉल करबा हो जा कैलकुलेट करे खातिर तुर कंसुमेशन के देखे के चाहिए। तो बस जे ऐसने इंस्टॉल आते हुआ अभी बिना कंसुमेशन देखे बोल दे इतना सकबा इंस्टॉल करे अवला थोड़ा सावधानी बरते
0: के
1: चाहिए।
0: तो ई जन क्वालिफाइड इंस्टॉलर के बात करत हवा वो इंस्टॉलर आपके घर पर आए आपके मीटर देख के बोली आपके
1: नॉर्मल तो घर पर आए के निश्चय नहीं
0: बा।
1: एगो तो हर फैक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जब रही वो मैं अपन का समाशो सब बा वो के आधार पर वो लोग सेक्शन से कहा कि लेकर
0: अच्छा।
1: और जब कहा कि लाशों कर जन सा तब वो लोग बोल जन सा ओके थोड़ा इतना PV पैनल्स चाहे ला इंस्टॉल पैनल्स इतना सकबा एक्सपोर्ट करे और इतना बैटरी साइज थोड़ा चाहे ला। बस ये है तीन इंफॉर्मेशन नेसेसरी परी एप्लीकेशन करे खाते
0: अच्छा।
1: बस जब जाएबा CB में एप्लीकेशन करे है तीन इंफॉर्मेशन पैनल साइज इंस्टॉल पैनल कैपेसिटी एक्सपोर्ट कैपेसिटी और बैटरी कैपेसिटी है तीन इंफॉर्मेशन चाहिए थोड़ा CB के देख ताकि थोड़ा एप्लीकेशन स्टैंड रहे।
0: अच्छा
1: तो एप्लीकेशन खाते जब जाएबा तब हमारे देखे जुतन जी है पर ज़्यादा सेकंड से
2: जैसे हमारे नरसिंह भाई बोलन कि है इंस्टॉल कैपेसिटी बैटरी कैपेसिटी एक्सपोर्ट कैपेसिटी है जानकारी जब प्राप्त कर दिए हमने के ग्राहक लोग तो वो लोग सकी हमने के दफ्तर में आए कोना कोना में हमने के दफ्तर बा तो अपन मांग करियन जा हाउ आधार पर इंस्टॉल कैपेसिटी बैटरी कैपेसिटी और एक्सपोर्ट कैपेसिटी से तो हमने लोग के बोलब जा वाला एगो एप्लीकेशन करियन सा हमने के जो आसम बा जो ऑफिसर हम जा लोग एप्लीकेशन कर दियन सा एप्लीकेशन हम जब करियन तो संगे संगे एगो एगो फॉर्म निकलेला एगो फॉर्म में एगो QR कोड बा तो हाउ फॉर्म वाले के लोग सकियन सा DBM जाए अपन ग्राउंड के मांग करे में डायरेक्टली DBM नहीं सकियन सा जाए पहला पर CBI के मांग करे के एप्लीकेशन करे के फॉर्म भरे के फॉर्म सीए करेगी, जब फॉर्म सीए होगा तो हाउ फॉर्म एगो कॉपी हमने संगे

0: रही, एगो कॉपी और फिर दोनों ओरिजिनल भी रही, एगो हमी संगे रही, एगो ग्राहक संगे रही, और फोमा लेके जाके अपन डीबीएम से अपन मांग करी ग्राउंड के।
1: मतलब कि तीन गो स्टेप बा, पहला एक प्रोफेशनल इंस्टॉलर देखे के, दूसरा ओकर लेफ्ट मास्टर लेके तब सीबीआई के, तब सीबी तोहरा एप्लीकेशन करे के जन प्रक्रिया बा वो पूरा करी।
0: हाँ।
1: और फिर ई जन फॉर्म तोहरा सीबी पर मिली वो लेके जे आपके ग्रांट चाहिए डीबीएम से, तब आप डीबीएम जेबा वहाँ पर एगो एप्लीकेशन करबा। और ये जो जानकारी बात डीबीएम से ग्रांट खातिर आप सकबा अकते जाए कि एक जब आपके मिल गए तब?
0: नहीं परी भाई, फॉर्म भर गया भर दिला हम, जब फॉर्म देनी सा एगो क्यू आर कोड बा, हाउ क्यू आर कोड बा ऑथेंटिक है
1: जी,
0: तो हाउ क्यू आर कोड बा से जाए ग्राहक डीबीएम में। अब डीबीएम में हो जा जोन जोन फॉर्म आ लीते बा वो हो जा हुई है आप अच्छे है क्यू आर कोड बा से है फॉर्म से।
1: अच्छा, और फिर एक बात
2: डीबीएम में जब जाए तो हो जा वेबसाइट पर सकबा एप्लीकेशन करे अला कल रघुबर जी से बात कर ले रही तब बोलन डेटा हमारा दिलन कैसे करके चाहे सबकेन से वेबसाइट पर एप्लीकेशन करे से सब डॉक्यूमेंट आशन
1: चाहिए रहे के,
2: या सेकेंड से को डीबीएन सेंटर में जाए हौजा एप्लीकेशन करे सब डॉक्यूमेंट संगे हौजा एगो क्रिटेरिया बाइल पहले तो रेजिडेंशियल कस्टमर के खाली खाली एंटरटेन करें सर। और दूसर जन फैमिली इनकम बा जन हस्बैंड वाइफ के इनकम फैमिली इनकम मंथली फैमिली इनकम 150,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो के चाहिए
1: जी,
2: जी 150,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो थोड़ा हाई ग्रांट वाने मिले।
1: ओके
2: okay. और तीसर का से जन कनेक्शन एग्रीमेंट बा और थोड़ा सप्लायर से कोटेशन आने के पड़ी राइट right? जो इंफॉर्मेशन डलिन कनेक्शन एग्रीमेंट में हवे इंफॉर्मेशन टाली करे के चाहिए सप्लाई के कोटेशन संगे, जे लिखल बा 100 किलोवाट तो सप्लाई के कोटेशन में लिखल रहे के चाहिए 100 किलोवाट, तब ई के आधार पर वो लोग असेस करें जो थोड़ा ग्रांटवा मिले के चाहिए या नहीं। तो ग्रांटवा मिले खातिर वो लोग थोड़ा एक वाउचर दियन एगो ग्रांट वाउचर, तब वाउचर हुआ जब दिया है कि इम्प्लिकेशन है कि टूथ स्वीट ग्रांट में मिली
1: जी।
2: अभी खाली वाउचर मिलल बा, बाकी सब फिनांसमों तोरा अपन बगल से देखे के पड़ी। तो जब वाउचर मिल बा तो वाउचर के ठीक से रखे के चाहिए, तब अपन बगल से तू अपन इंस्टॉलर के देखिया इंस्टालाशमा करे खातिन तोरा 6 महीना मिली इंस्टालाशमा कम्प्लीटे करे खातिन वाउचर के वाली से जो हमने के बोला गल बा 6 महीना मिली हमारा कॉन्फियमे डीबीएम से कॉन्फियमे से कैसे करे ये 15 साल से यानी
1: जी हाँ।
2: तब हाउ इंफॉर्मेशन जब सब मिल गया तो सकबा आज लोन किया के डिमांड करे डीबीएम से सकबा लोन के डिमांड करे या दूसरा लाभांक से सकबा ओब्लिगेट हुआ नहीं बा डीबीएम से लोन के डिमांड करे सकबा दूसर कमर्शियल बैंक बैंक हो जाए, तब जब लोन है सब फिनांसों के बंदोबस्त हो जाए तब इस तरह लाते हैं कि देखे कि भरी इस तरह आशा करेगी। तो इस तरह से हुआ जब थोड़ा कोटेशन हुआ जब पेमेंट करे के लिए बस कन्फर्मेशन कमांड के कन्फर्मेशन करे के चाहिए, तो हो जाए जब कन्फर्म कर दे बा जब इंस्टॉल कर दे तो खाली है आश्वय करके चाहिए कि फाइनल पेमेंट में जो वेंसेंग पूसें प्रोजेक्ट अमाउंट बा थोड़ा घटाए बस है वाउचर हुआ कि पैसा डीबीएम तोहरा पे नहीं करी जनता हुआ के पे नहीं करी वाउचर के पैसा डायरेक्ट सप्लायर के पे करी।
1: ओके,
2: मान लो 300,000 रुपये के प्रोजेक्ट बा, तो जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो फाइनल पेमेंट थोड़ा देशों जो वाउचर मिल गए जिस वाउचर सब अप्रूवे हो गए तो सप्लायर वा के फाइनल पेमेंट थोड़ा 200,000 रुपये करे के पड़ी। और जब सब कुछ कनेक्टे हुए तब जो 100,000 रुपये बाकी बा हाउला डीबीएम डायरेक्ट सप्लायर के अकाउंट पर वैसे करें
1: okay.
2: हैला याद रखे जाए।
1: अच्छा,
2: तो जब लोन है सब फिनांसों के डिमांड हो जाए इंस्टॉलेशन हो जाए तब तोरा इंस्टॉलते हुआ जो बाई गो सर्टिफिका इंस्टॉलेशन जनरे करी है सर्टिफिका हुआ और एगो अनेक्स टेक्निकल अनेक्स बा और दूसरा डॉक्यूमेंट टेक्निक बा हाउला तोरा जाके परी कस्टमर सर्विस में डिपोजिट करे
1: सेबे के
2: कस्टमर सर्विस में जाके डिपोजिट करे के और हौजा से दूसरा प्रोसेस ही नीचे हुए
1: हौजा
2: से सीबी कस्टमर सर्विस हमने के से

0: संपर्क करिए कि बुलियन सर इतना इतना सुमित कर दिले हम सर और जाए को टेक्निकल वेरिफिकेशन करब सर जे जोन स्थले करब बा जे सी बी के रिक्वायरमेंट के आधार पर बा या अनो अकाउंट बा जे हमने के रिक्वायरमेंट के आधार पर बा तो लोग के मीटर हमने चेंज करब सर मीटर समझे करब सर और एक बाद कमीशनिंग करब सर
1: जरूर
0: कमीशनिंग के बाद क्लियोमा के एगो

0: और कंप्लायंस डॉक्यूमेंट वहाँ लेके थोड़ा परी डीबीएम फिर से जाके बोले कि है डॉक्यूमेंट वहाँ बा कंप्लायंस सर्टिफिकेट सब काम हो गया बा, अब वाउचर वा के आधार पर संख्या भी या वनसैंग पूसा प्रोजेक्ट अमाउंट सप्लायर के पे करेगी, है फाइनल स्टेप है।
1: तो जैसे सुन ला आज के ये प्रोग्राम में देख लीजिए ये 16 पैनल के जो प्रक्रिया बा शुरू से अंत तक कैसे चली। हमने संगे खाली 2 मिनट रह गल बा नरसिंह जी
2: हम एगो
1: जुतन
2: चीज
1: जी
2: हम एगो चीज जोड़े खोजब भुला के नहीं सब शुरू में बोले के
1: हाँ।
2: जे जे हमने लाके आई मांग करे एप्लीकेशन करे एगो प्रोसेसिंग फी 2000 के प्रोसेसिंग फी है भुला के नहीं सब बोले के ए परिपेय करे के 2000 के प्रोसेसिंग फी है तंजोरी करनी।
1: अच्छा तो आज के कार्यक्रम में आप लोग भाग ले जा बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम में कुछ बोले चाह बजा जोड़े चाह बजा एक दो शब्द।
0: हाँ तो हम और कुकाजे करती जनता के है पोजमा में विस्ती करेंगे बस ये निमन प्रोजे है
1: जी
0: देर और कुकाज में मिला था और संख्या भी घाट या 25% प्रोजेक्ट अमाउंट के घाट एक वेमा निमन इंसेंटिव
1: और हाउस होल्ड में पति पत्नी के भी जन पगार बा एक 100-150 मिल ई भी अच्छा
0: एक
1: अच्छा बारे में रखा गया बा।
2: हम जन बोले खुद दी हमनी के लव यू उनमा के जस्ती आर नुकसान नहीं पहुंचा सा है सिस्टम वा से है स्कीम वा से जनता लोग के मांग करब गोर हाथ जोड़ के मांग करब कि है मैं इन्वेस्ट करे के हमनी के पर्यावरण के कमती क्षति पड़ी और हमनी
1: के सुरक्षा करे के
2: निमन से सांस ले बब सब प्यू एयर
1: और ग्लोबल वार्मिंग गर्मी बढ़ ले जाता वो भी घट वो भी उतना नहीं बढ़ रही
2: हमनी के जो आगे के जनरेशन बच्चा लोग बा लोग हमनी के कोशिश नहीं
1: ज़रूर। तो श्री नरसिंह जी श्री जुतन जी आज आप लोग फजीर फजीर अपन कीमती समय निकाल के आज अयला जा सीबी की ओर से सीबी और आप दोनों जना के बहुत बहुत शुक्रिया। एगो अगला कार्यक्रम में एगो अगला एगो विषय के साथ फिर आवाब जा आज आशा करत है जा ई विषय पर आप लोग के पूरा जानकारी मिलल जे जानकारी कमती हुई तो आप सक बजा वेबसाइट पर जाए सक बजा हॉटलाइन पर फ़ोन करे और हॉटलाइन नंबर है 1 of 2 या फिर आप सकबा सीबी के कोनो भी दफ्तर में जाके ई सब जानकारी हासिल करे। आप सब कोई के आपके ध्यान खातिर बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: टाइम चेक सुबह के 10 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। टीना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। सिडनी पिया को कल शाम पर्यटन जूनियर मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया क्योंकि नेशनल पेंशन एक्ट में सुधार के मुद्दे पर फाइनेंस बिल की चर्चा के दौरान सांसद सिडनी पिया ने सरकार की नीति के खिलाफ जाकर सुधार के विरुद्ध वोट किया था। जॉन सिडनी पिया की रिवोकेशन को स्टेट हाउस द्वारा जारी एक कम्युनिके के माध्यम से आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। फाइनेंस बिल पर बहस के

0: समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि टारगेटिंग का उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों को अधिक सहायता देना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे। कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राज्यसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजन बिल सुधार के साथ पारित कर दिए गए। इन दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है। इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में सुधार किए गए। पेंशन की राशि अब हर साल जीवन के खर्च के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। ये बढ़ोतरी हर साल जनवरी महीने से लागू होगी। ये व्यवस्था कानून में शामिल की जाएगी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुपो ने कल रात राज्यसभा में बहस के दौरान इसकी जानकारी दी। दूसरी तरफ विपक्ष में शामिल पल बिहोंजे ने इस बदलाव में स्पष्टता की कमी होने की बात कही। कैबिनेट ने ऐसे बच्चों की देखभाल से जुड़ा नया कानून तैयार करने को भी मंजूरी दे दी है जिनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं। इस पर जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय काम करेगा। इस प्रस्ताव में विशेष रूप से शुरुआती स्तर पर सहायता, चिल्ड्रंस कोर्ट द्वारा निगरानी, माता पिता को मार्गदर्शन तथा आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को किसी विशेष संस्थान में रखने का प्रावधान शामिल है। विदेश में शांति योजना के द्वितीय चरण को लागू करने के लिए पिछले कई दिनों से मिस्र की राजधानी काहिरा में मध्यस्थों और हमास प्रतिनिधियों के बीच वार्ता चल रही थी। वार्ता के बीच गाजा में इसराइल के हमलों में 2 बच्चों समेत 6 लोग मारे गए हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। मोंसलमान वीओएस प्लेनमान्यों में 75 साल के 75 years old के श्री विट्टल कुमार तोता जो विट्टल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर मोंसलमान वीओएस प्लेनमान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमान्यों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 3 PM। फैब्रिक लेन मोदालबेयर में 82 साल के 82 years old के श्री नरदेव गुदूरी जो सुवेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री वीरेन गुदूरी के घर फैब्रिक लेन मोदालबेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोदालबेयर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM। अवेन्यू वोहोल सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर में 83 साल की 83 years old की मिसिज साफिया बीबी बादल पैदाइशी नाम ओसेनबक्स और जो साफिया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज सुबह दस बजे उनके दामाद जनाब नूरुद्दीन रामजान के मकान अवेन्यू वोहोल सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर से निकाल कर दफनाने के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। इंटरनेशनल स्ट्रीट रिवेज रामपोर में 95 साल की 95 years old की श्रीमती दुर्पत्या दुबोरी जो दुर्पत्या नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके बेटे श्री सुनील जेतू के घर इंटरनेशनल स्ट्रीट रिवेज रामपोर से उठाकर दफनाने के लिए पंडिलास्का की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना।
1: 819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से फिनिक्स के जोन इंडस्ट्रियल के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि आज 1 अगस्त 2026 को

0: हूँ अकमर।
1: सूरतुल माईदा की आयत नंबर 101। सूरतुल माईदा का 14वां रुकू और 7वें पारे का 4था रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों, ला तसअलू अन अशिया इन तुबदलकुम तसुकुम, ऐसी बातें न पूछो जो तुम पर जाहिर की जाएं तो तुम्हें बुरी लगे। तफसीर अहमदी में इसका शान नुजूल ये लिखा गया कि बाज लोग सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से बेफायदा सवाल किया करते थे, फजूल सवालात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग करते हैं, और ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर गिरा गुजरती। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जो पूछना है पूछ लो, मैं हर बात का जवाब दूंगा। एक शख्स ने पूछा कि मेरा अंजाम क्या है, आपने फरमाया जहन्नम। दूसरे ने पूछा मेरा बाप कौन है, आपने उसके असली बाप का नाम बता दिया जिसके नुतफे से वो था, बावजूद इसके कि इसकी मां का शौहर और कोई था जिसका ये शख्स बेटा कहलाता था। इस पर यह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि ऐसी बातें न पूछो जो जाहिर की जाएं तो तुम्हें नागवार गुजरें, तुम्हें बुरी लगें। बुखारी मुस्लिम की हदीस में है, एक रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदमा देते हुए इरशाद फरमाया, जिसको जो पूछना है पूछो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदी अल्लाह ताला ने खड़े होकर पूछा, मेरा बाप कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुज़ाफ़ा, यानी जिस शख्स की तरफ तुम मंसूब हो वही तुम्हारा बाप है। उन्होंने पूछा मेरा बाप कौन है, आपने फरमाया हुज़ाफ़ा, फिर फरमाया और पूछो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने उठकर ईमान और रिसालत के इकरार के साथ माजरत

जिसको उसने अपनी किताब में हराम फरमाया और जिससे सुकूत किया वो माफ, तो कुलफत में न पड़ो, मुश्किल में न पड़ो। कितना वाज़े हुक्म है कि जो चीजें हराम की गई वो हराम है और जो चीजें हराम बयान नहीं की गई वो जायज हैं, हलाल हैं। लिहाजा उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए कि वो हर मामले में कहते हैं अगर ये जायज है तो बताओ कुरान में कहां जायज लिखा है, हदीस पाक में इसको जायज कहां कहा गया है। तो उसूल हमेशा के लिए समझ लें, कुरान और हदीस में जिस काम को नाजायज कहा गया, हराम कहा गया, गुनाह कहा गया, वो गुनाह है, हराम है, नाजायज है। इसके अलावा तमाम काम जिन्हें हलाल कहा गया वो भी हलाल हैं, जिन्हें जायज कहा गया वो भी जायज हैं, और जिनके मुतालिक सुकूत है, जिनका जिक्र नहीं किया गया, वो भी जायज हैं और हलाल हैं। अपनी तरफ से किसी हलाल चीज को हराम करार देना ये अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है। قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, तुमसे पिछली एक कौम ने उन्हें पूछा, यानी अपने अंबिया से लोगों ने इस तरह के बेजरूरत सवालात किए। जब अंबिया अलैहिस्सलाम ने अहकाम बयान फरमा दिए तो वो अमल न कर सके। قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, तुमसे पहले एक कौम ने उन्हें पूछा, ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ, फिर उनसे मुनकिर होकर बैठ गए। पहले उन्होंने सवाल किया, जब सवाल पर हुक्म आया तो उन्होंने इनकार कर दिया। यहां पर एक मसला बहुत जरूरी है, वो समझ लें कि जब कुरान मजीद फुकान हमीद नाजिल हो रहा था उस मौके पर सहाबाए कराम को हुक्म दिया गया कि जिस काम का, जिस हुक्म का बताना जरूरी होगा वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बयान कर देंगे, तुम इनसे मत सवालात करो, अगर सवाल ज्यादा करोगे तो मुश्किल अहकाम नाजिल होंगे, तुम्हारे लिए वो चीजें जाहिर हो जाएंगी जो तुम्हें फिर नागवार गुजरेंगी। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जाहिरी हो गया, कुरान के नुजूल का सिलसिला खत्म हो गया, शरीयत के अहकाम मुकम्मल हो गए, अब अगर हम किसी मुफ्ती साहिब से या आलिम साहिब से जितने भी सवालात करें, ज्यादा सवाल भी करें, तो उनसे ज्यादा सवाल करने से कोई शरीयत नाजिल नई नहीं होगी, शरीयत तो पहले ही नाजिल हो चुकी है। तो हम जितने भी सवालात करें वो वही हुक्म बयान करेंगे जो कुरान पाक में है, जो हदीस पाक में है। बाद लोगों ने इन बातों का मतलब गलत लिया और वो कहते हैं कि किसी आलिम से ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए, अगर ज्यादा सवाल करोगे तो फंसोगे। हमने कहा वो कैसे फंस जाएंगे, क्योंकि हम जितने भी सवालात करें वो तो वही हुक्म बयान कर सकते हैं जो शरीयत में हुक्म मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ज्यादा सवालात किए जाते तो नए अहकाम नाजिल हो जाते थे, और यहां तो ऐसा नहीं है। और दूसरा, कुरान मजीद फुकान हमीद ने हुक्म दिया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर नहीं मालूम तो अहले इल्म से पूछो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें पूछने का हुक्म दिया कि अहले इल्म से पूछो। तो वो इसका जवाब ये देते हैं कि जब हम पूछेंगे और वो मसला बयान कर देंगे फिर हम अमल नहीं करेंगे तो हमें गुनाह होगा। बहुत बड़ी नादानी है। मुफ्ती साहब से पूछें या ना पूछें, मुफ्ती साहब बयान करें ना करें, हर सूरत में अमल करना तो जरूरी है। अगर मसला नहीं मालूम तो दो गुनाह है, एक तो मालूम ना होने का गुनाह है और दूसरा अमल ना करने का गुनाह है। तो इसलिए इस तरह की सोच दिल में हरगिज नहीं होनी चाहिए। दूसरे, बाज लोग ये भी सोच बना लेते हैं कि हम मुफ्ती से सवाल अधूरा पूछ लें

और मुफ्ती कह दे कि ये काम करना जायज है। अब हमारी जान छूट गई, कल बरोज़े क़यामत मुफ्ती पकड़ा जाएगा। पर सीधी सी बात है, जब आप सही तौर पर सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर इस सूरत में आपको मसला तो सही मालूम नहीं होगा। मतलब कोई शख्स जाकर मुफ्ती साहब से कहे कि एक शख्स ने अपनी बीवी को एक तलाक दी, बताइए क्या हुक्म है, तो मुफ्ती साहब तो यही कहेंगे एक तलाक का हुक्म ये है कि उसने जब ये कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूं तो ये तलाक रजी है, और चूंकि एक तलाक दी है तो इद्दत में वो रुजू कर सकता है। अब अगर उसने तीन तलाकें दी हैं और मसला अधूरा बयान किया या गलत बयान किया तो इससे मुफ्ती के कहने से जान नहीं छूटेगी, बल्कि जो शरीयत का हुक्म है वो तो लागू है और हमें इस पर अमल करना है। ये बस नफ्स शैतान के वार हैं। अल्लाह अपना फजलो करम फरमाए और हर एक को इसकी समझ अता फरमाए। एक वाकया मैं आपको सच्चा सुनाऊं। एक शख्स जुबे का काम करता था, उसको समझाया गया कि ये काम करना हराम है, तो इसने कहा मैंने तो मुफ्ती साहब से फतवा लिया है और मुफ्ती साहब ने मुझे इस काम की इजाजत दी है। तो इससे कहा गया कि ये बताओ कि मुफ्ती साहब से तुमने सवाल क्या किया था। तो इसने कहा कि मैंने सवाल ये किया था कि मैं एक काम करता हूं, इसमें कभी नफा हो जाता है कभी नुकसान हो जाता है, तो ऐसा कारोबार करना कैसा है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि कारोबार में तो यही होता है, कभी नफा होता है कभी नुकसान होता है, तो ऐसा कारोबार तो जायज है। अब आप बताएं सवाल के अंदर क्या इस तरह की कोई बात है कि जिससे ये मालूम हो कि ये जुआ खेल रहा है। फिर ये कहने लगा देखें जुए में भी तो ये होता है ना कि कभी हम जीत जाते हैं तो फायदा हो जाता है, कभी हार जाते हैं नुकसान हो जाता है। तो इस तरह घुमा फिराकर सवाल पूछ लिया जाए और कोई जवाब भी मिल जाए तो कल बरोज़े क़यामत नजात हासिल नहीं होगी। इसी तरह बाद लोग ये करते हैं कि इतने ज्यादा सवालात करते हैं, बस उनको फिक्र ये होती है किसी तरीके से मुफ्ती साहब के मुंह से ये निकल जाए कि हाँ ठीक है कर लो। और अगर कोई मुफ्ती माशाल्लाह समझदार हो और इतने सारे सवालात के बाद आखिर में ये कहें कि आप जितने भी सवाल करें मसला यही है, तो फिर आइंदा ऐसे मुफ्ती के पास जाते ही नहीं है, कहते हैं ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनकी बातें हमारी समझ में नहीं आती। और जहां मुख्तलिफ सवालात करें और मुफ्ती से गलती हो जाए तो बस ये मुफ्ती बहुत अच्छा है जो हमारे मन पसंद मसले बयान करता है। हालांकि इस तरह की हरकतें करना क्या एक मुसलमान को जेब देती हैं? अच्छा फिर मुफ्ती के पास बैठकर या किसी आलिम के पास बैठकर इत्मीनान से मसला भी नहीं पूछेंगे, चलते चलते पूछेंगे, अधूरा सवाल पूछेंगे। अब इसकी कोई फिक्र नहीं कि हम अपना मसला समझा भी सके कि नहीं। मुफ्ती साहब को हमने अगर मसला बयान किया और वो गलत समझ गए और उन्होंने उस हिसाब से बयान किया तो चलो जान छूट गई। हालांकि इंसान को फिक्र करनी चाहिए, चलते चलते मसला पूछने के बजाय इत्मीनान से बैठकर वो अपना पूरा मसला बयान करे, और इसके बाद उसको ये फिक्र होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि मुझसे सवाल में गलती हो गई, मैं समझाने में नाकाम रहा, तो इस वजह से हराम तो हलाल ना होगा और सारा गुना मेरे ऊपर होगा। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अपना खौफ अता फरमाए और इन चीजों में हमें एहतियात करने की तौफीक अता फरमाए। मा जअलल्लाहु मिन बहीरा, अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया है बहीरा को, वला साहिबा और ना ही साहिबा को मुकर्रर किया है, वला वसीला और न ही वसीला जानवर को मुकर्रर किया है, वला हामिन और न ही हामी जानवर को अल्लाह ने मुकर्रर किया है, वलाकिन्नल्लज़ीन कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, हाँ काफिर लोग अल्लाह पर झूठा इफ्तरा बांधते हैं, अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। इस आयत करीमा में काफिरों की मजम्मत है जो हलाल को अपनी मर्जी से हराम कहते हैं। अभी जिक्र हुआ कि जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया, नाजायज करार दिया, नापाक करार दिया,

वो चीज नापाक है, नाजायज है, हराम है। इसके अलावा तमाम मामलात, तमाम काम, तमाम चीजें वो हलाल हैं, जायज हैं, पाक हैं। अब ये कहना कि ये अगर जायज है तो इसकी दलील बयान करो, कहीं लिखा हुआ हो कि ये करना जायज है, अगर ये ना मिला तो ये हराम हो जाएगा, और उसे हराम समझना ये अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है, क्योंकि हराम वही है जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया।

0: सामीन, कभी कभी छोटे छोटे वाकयात जो हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये छोटे छोटे आमाल, छोटे छोटे वाकयात हमारी ज़िंदगी को ऐसी नसीहतें देते हैं, ऐसे सबक देते हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह की कहानी है जिसका उन्वान है एक बूढ़े आदमी की सबक आमोज कहानी। पेश खिदमत है ये कहानी।
1: एक गरीब बूढ़े शख्स ने चिवंटी के साथ अपना रिस्क बांटा तो अल्लाह ने उसके लिए सोने का खजाना निकाल दिया। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुलेमान एक गरीब बूढ़ा आदमी था जो एक दौर इफ्तादा गांव के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी में रहता था। गोविया जमाने ने उसे भला दिया हो। उसका घर मिट्टी की एक तंग व तारीख कोठड़ी से ज्यादा कुछ न था, जिसकी दीवारें फटी हुई थीं और खजूर के सूखे पत्तों की छत न सर्दियों की शदीद ठंड से बचा सकती थी और न ही गर्मियों की जलती धूप से। सुलेमान बिल्कुल अकेला था। बरसों पहले इसकी बीवी वफात पा चुकी थी और उसका अकलौता बेटा रोजी की तलाश में गांव छोड़कर चला गया था, फिर न कभी लौटा और न ही उसकी कोई खबर आई। यूं सुलेमान की जिंदगी खामोशी और तन्हाई में डूब गई। उसकी झोंपड़ी में हुआ की सीटियों और पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरचराहट के सिवा कोई आवाज न थी। शदीद गुर्बत इसके कमजोर जिस्म को निचोड़ रही थी और अंधेरी रातों में भूख उसकी आंतों को मुरोड़ देती थी, मगर इसके बावजूद वो बावकार नफ्स का मालिक था। उसकी रूह खुददार थी, जल्लत और सवाल से नफरत करती थी। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, न किसी अमीर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। वो भूखा सोना कबूल कर लेता था मगर इज्जतें नफ्स पर आंच न आने देता। इससे पहले कि हम इस हैरत अंगेज कहानी को आगे बढ़ाएं और जाने कि एक चिवंटी किस तरह अल्लाह के हुक्म से उसकी जिंदगी बदल देगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दुनिया के किस हिस्से से ये कहानी सुन रहे हैं और क्या आपने कभी अपनी आंखों से नेकी का सला देखा है? सुलेमान बड़ी मशक्कत से अपना गुजारा करता था। वो लोगों के फेंके हुए सूखे रोटी के टुकड़े जमा करता, उन्हें साफ करके धूप में सिखाता, फिर कुछ को पैस लेता और कुछ मवेशियों के चारे के तौर पर चंद सकू में बीज देता। ये काम इस उम्र में उसके लिए बहुत कठिन था। उसके बालों में सफेदी उतर चुकी थी और वक्त ने उसके चेहरे पर सब्र की गहरी लकीरें खींच दी थीं। अफसोस कि पड़ोसियों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी के बजाय तमस्कर था। लोग उसे हकारत की निगाह से देखते, सरगोशियां करते और जब वो झक्की हुई कमर के साथ रोटी की बोरी उठाए गुजरता तो उसे भूला बुसरा फकीर कहकर पुकारते। यहां तक कि उसने बुला जरूरत घर से निकलना भी छोड़ दिया ताकि तेज जबानों से बच सके। इसी उदास झोंपड़ी के एक तारीख कोने में इस कहानी का आगाज हुआ। सुलेमान ने देखा कि दीवार के नीचे एक दुराड़ में सियाह चिवंटियों का एक गुरुआ आ जा रहा है। उसने न उन्हें

मारा न उनका बल पानी से भरा जैसा कि लोग उमूमन करते हैं, बल्कि उन पर तरस खाया। उसने इन कमजोर चिवंटियों में अपनी ही तस्वीर देखी, तन्हाई, मेहनत और बका की जदोजहद। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गुर्बत और चिवंटी की कमजोरी के दरमियान कोई उनदेखा रिश्ता है, जैसे दोनों रिज्क की तलाश में सरगर्दा हूं। उसके पास एक पुरानी जंग आलूद डबिया में थोड़ी सी खरदरी शक्कर थी जो उसने बड़े दिनों के लिए संभाल रखी थी, मगर उसके नर्म दिल ने गवारा न किया कि वो खुद रखे और चिवंटी को खाली हाथ देखे। वो थके हुए घुटनों के बल बैठा, शुक्र की एक छोटी सी मिट्टी ली और नरमी से चिवंटियों के रास्ते में डाल दी, गविया मौजिज मेहमानों की जियाफत कर रहा हो। वो उन्हें देखता रहा कि किस खुशी और लगन से वो शुक्र के जरे उठाकर ले जा रही हैं। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जिसने उसके थके चेहरे को रोशन कर दिया। उसे यूं लगा जैसे उसकी जिंदगी का अब भी कोई मकसद है और कोई ऐसा है जिसे उसकी जरूरत है, चाहे वो एक नन्ही सी चिवंटी ही क्यों ना हो। सुलेमान को जरा भी अंदाजा न था कि ये मामूली सा अमल जो उसने खालिस नीयत और सच्चे दिल से किया है उसकी पूरी जिंदगी का रख बदल देगा। ना ही वो जानता था कि जिस चिवंटी को वो आज अपने थोड़े से रिज्क में शरीक कर रहा है, वही चिवंटी अल्लाह के हुक्म से उसका एहसान ऐसे लौटाएगी कि अक्ल दंग रह जाएगी। लेकिन हमेशा सब कुछ हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता। कुछ आंखें उसे देख रही थीं और कुछ जबानें उसके खिलाफ जहर उगलने के लिए तैयार थीं, ताकि उसके दिखों में एक और दुख का इजाफा कर सकें। एक अब्र आलूद सुबह थी। सुलेमान अपने नन्हे साथियों के साथ अपनी रोजमर्रा की मशक्कत में थका हारा मशगूल था कि उसे खबर ही न हुई कि उसके टूटे हुए झोंपड़े की खिड़की के पास एक भारी सा साया आकर ठहर गया है। वो साया सालिम का था जो उसके पड़ोसियों में से एक था, फजूल तजस्सुस और संगदल दिल के लिए मशहूर। वो दीवार के पीछे से चुपके से झांक रहा था। इसकी तंग नजर अक्ल इस मंजर को समझ ही न सकी। एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसके पास एक रोटी खरीदने के पैसे नहीं, वो कीमती शुक्र जमीन पर बिखेर रहा है ताकि बेफायदा और हकीर समझी जाने वाली चिवंटियों को खुला सके। सालिम तंजिया कहकह लगाकर हंस पड़ा। उसने बात को अपने दिल में ही न रखा, बल्कि दौड़ता हुआ गांव के बाजार जा पहुंचा जहां मर्द व औरत जमा थे। वहां उसने मुबालगा आराई के साथ जो देखा था बयान करना शुरू कर दिया। उसने सुलेमान को पागल करार दिया, कहा कि गुर्बत ने उसकी अक्ल छीन ली है। वो उसकी नकल उतारने लगा, चिवंटियों से बात करते हुए उसके अंदाज की नकल करके दिखाई, जिससे मजमा में हंसी, चमैगोइयां और तंज के तेर चल पड़े। बात आग की तरह फैल गई। सुलेमान गांव की महफिलों और चाय खानों में मजाक का मौजूआ बन गया। यहां तक कि गलियों में खेलते बच्चे भी इसकी झोंपड़ी की तरफ इशारा करके चिल्लाने लगे, यहां चिवंटियों वाला पागल बूढ़ा रहता है। ये आवाजें और कहकाए सुलेमान के कानों तक पहुंचे जब वो अपनी तन्हाई में बैठा था। ये अल्फाज इसके लिए कोड़े से ज्यादा तकलीफदेह थे। इसके सीने में कर्ब बबल पड़ा और गर्म आंसू उसके मुरझाए हुए गालों पर बहने लगे। वो पागल नहीं था जैसा कि लोग कहते थे, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसका दिल रहमत से लबरेज था, मगर लोगों के दिल पत्थर हो चुके थे, यहां तक कि वो चट्टानों से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। उसने अपने बोसीदा दरवाजे को मजबूती से बंद कर लिया और फैसला किया कि अब वो सिर्फ रात की तारीकी में ही बाहर निकलेगा, लकड़ियां या पानी लाने के लिए, ताकि ताक लगाए बैठे लोगों की नजरों से बच सके। दिन बोझल और सुस्त रवि से गुजरते रहे, यहां तक कि सख्त सर्दियों का मौसम आ गया। तेज आंधियों और बारिशों ने झोंपड़ी की हालत बदतर कर दी। छत छलनी बन गई, बारिश का पानी अंदर टपकने लगा और मिट्टी की जमीन सर्द चपचपे कीचड़ में बदल गई। सर्दी इस हद तक बढ़ गई कि सुलेमान की रगों में खून जैसे जम गया हो। इसके पास मौजूद सूखी रोटी भी खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ शक्र की एक निहायत छोटी सी मुट्ठी बाकी रह गई थी। वो अपनी पतली सी ओढ़नी में कांपता हुआ बैठा, छत के सुराखों से आसमान की तरफ देखता और अल्लाह से दुआ करता, ऐ अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा और मुझे लोगों के हवाले न कर। इसी इंतहाई किस्मपरसी के आलम में सुलेमान ने एक अजीब बात नोट की जो चिवंटियों के मस्कन के पास हो रही थी।
सर्दियों में चींटियां आम तौर पर छिप जाती हैं।

मगर ये नन्हा सा लश्कर गैर मामूली सरगर्मी में था। वो मुसलसल खुदाई कर रही थी, इस बार खुराक जमा करने के लिए नहीं बल्कि जमीन के अंदर गहराई तक पहुंचने के लिए। सुलेमान देखता कि चिवंटियां जमीन के नीचे से एक अजीब सर्ख माइल मिट्टी के बारीक जर्रात उठाकर बाहर ला रही हैं। ये मिट्टी झोंपड़ी की आम मिट्टी से मुख्तलिफ थी। वो उसे बल के पास ढेर कर देते हैं और फिर वापस खुदाई में लग जाते हैं। जब भी सुलेमान इस मिट्टी को समेटकर अपनी जगह साफ करता, अगले दिन चिवंटियां इससे भी ज्यादा मिट्टी बाहर ले आते हैं, जैसे वो वक्त के खिलाफ दौड़ रही हूं और किसी गहरी चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। शुरू में सुलेमान ने सोचा कि शायद वो बारिश के पानी से बचने के लिए अपना मस्कन वसीया कर रही हैं। एक बार फिर इसके दिल में उनके लिए तरस जाग उठा। उसने हाथ में मौजूद शुक्र के आखिरी जर्रात की तरफ देखा और शकिस्ता आवाज में कहा, खा लो मेरे नन्हे दोस्तों, शायद अल्लाह मुझे भी रिस्क दे और तुम्हें भी। तुम अंधेरे में मेहनत कर रहे हो और मैं रोशनी से आने वाले फर्ज का इंतजार कर रहा हूं। ये हालत कई दिनों तक जारी रही और पुरानी चटाई के उर्द गर्द निकाली गई मिट्टी के ढेर बढ़ते चले गए। अब सुलेमान के दिल में शक और तजस्सुस जागने लगा। ये चिवंटियां इतनी गहराई में क्यों खुदाई कर रही हैं? ये सरखी माइल मिट्टी कैसी है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी गांव में कभी नहीं देखी? क्या ये नन्ही मखलूक उसे कोई पैगाम देना चाहती है, या फिर वाकई भूख और तन्हाई उसके जहन पर असर डालने लगी है, जैसा कि इस जालिम पड़ोसी ने कहा था? वो इस सुराख के करीब जा बैठा जो अब कुछ वसीया हो चुका था, और लकड़ी का एक मजबूत डंडा ले आया जिसे वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल करता था। वो चिवंटियों की आमद वो रिफत को गौर से देखने लगा, जैसे वो उसे भी अपने साथ शामिल होने की दावत दे रही हूं। एक अजीब सी अंदरूनी तहरीक के तहत और ऐसे तजस्सुस के बास जिसे वो अपनी कमजोर हालत के बावजूद रोक ना सका, उसने फैसला किया कि वो भी जमा शुदा मिट्टी हटाने में उनकी मदद करेगा। शायद इस अजीब इसरार का राज खुल जाए। वो नहीं जानता था कि यही लम्हा जलत की जिंदगी और इज्जत की जिंदगी के दरमियान हद फासिल है, और इस मिट्टी के नीचे छिपी हुई चीज आने वाली नस्लों तक दास्तान बन जाएगी। सुलेमान को फौरन एहसास हो गया कि ये अजीम रिस्क दरअसल गुरबत से भी बड़ा इम्तिहान है। उसने आंसू पूछे, सोने को जल्दी से जमा किया, दोबारा मटके में रखा और पुराने चौलहे के नीचे एक नई खड़ी में छिपा दिया। फिर उस पर राख और लकड़ियां डाल दें। उसकी जाहिरी जिंदगी में कुछ भी तब्दील ना हुआ। वो अब भी पैवंद लगे कपड़े पहनता रहा और लोगों की नजरों से बचने के लिए हस्बे मामूल सूखी रोटी जमा करने निकलता रहा, मगर असल तब्दीली खामोशी से शुरू हो चुकी थी। सुलेमान ने फैसला किया कि यह दौलत सिर्फ उसकी आसाइश के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के साथ तिजारत होगी। वो खफिया तौर पर करीबी शहर गया और सोने के सक्कों में से सिर्फ एक दिनार बीचा। इस रकम से उसने आटा, तेल और गोश्त खरीदा, लेकिन दिन की रोशनी में कुछ भी अपने घर न लाया। उसने एक दियांतदार ताजर से माहिदा किया कि वो ये रिज्क रात के वक्त गांव के गरीबों, बीवाओं और मेहताजों के घरों तक पहुंचाए और किसी को यह ना बताए कि देने वाला कौन है। गांव में एक हलचल मच गई। लोग एक ऐसे नामालूम मोहसिन की बातें करने लगे जो घरों को नामतों से भर रहा था। सालिम और उसकी बीवी हैरानी से पूछते फिरते थे कि यह सुखी दौलत मंद आखिर कौन है, और सुलेमान वो सब कुछ सुनता, अपनी सूखी रोटी पेसता और दिल ही दिल में मुस्कुरा देता ताकि किसी को शक ना हो। महीने गुजरते गए और सुलेमान ने अपने सबसे बड़े मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। इसने शहर के एक वकील के जरिए मस्जिद के करीब एक जमीन खरीदी और वहां एक बड़ी तकिया बनवाने का हुक्म दिया ताकि मुसाफिरों और फकीरों को खाना खिलाया जा सके। जब इमारत मुकम्मल हुई तो पूरा गांव हैरत से उमड़ाया। लोग दौर से उसे देखते, करीब आकर खामोश हो जाते, जैसे आंखों को अपनी ही नजर पर यकीन न आ रहा हो। सुलेमान इन सब के सामने खड़ा था, सादा लबास, झुकी हुई नजरें, मगर लहजे में अजीब सा वकार था। उसने पुरसकून आवाज में ऐलान किया, ये जगह अल्लाह के लिए वक्फ है और जब तक सांस है मैं खुद उसकी निगरानी करूंगा। ये सुनते ही मजमा साकेत हो गया। किसी के मना से आवाज ना निकली, किसी के पास सवाल का हौसला ना रहा। वही भूला बुसरा फकीर, वही चिवंटियों से बातें करने वाला बूढ़ा
जो कल तक गली के कोने में बैठा नजर आता था, ये सब कैसे मुमकिन हो गया?

0: लोगों ने एक दूसरे को देखा, सरगोशियां हुए, नजरें बदली गईं, किसी ने शक किया, किसी ने हसद, किसी ने खौफ महसूस किया, मगर सच ये था कि सामने खड़ी हकीकत को झटलाना आसान न था। दिन गुजरते गए। इस इमारत के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ वापस न लौटा। कहीं राशन बंटता, कहीं यतीमों की खबर ली जाती, कहीं मुसाफिर को छत मिलती, कहीं बीमार को सहारा। मुसलसल खैरात और खामोश भलाई ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जबानें बंद कर दीं और दिलों के कफल खुलने लगे। कल तक जिस पर हंसा जाता था, जिसका मजाक बनाया जाता था, आज इसी के सामने लोग अदब से सर झुकाने लगे। सालिम, जिसने सबसे ज्यादा उसे अजियत दी थी, जो हर मौके पर इसकी तजलील करता था, एक दिन कांपते कदमों से इसके पास आया। सुलेमान ने न उसके माजी का जिक्र किया, न उसके जख्म गनवाए। उसने उसे भी वैसे ही दिया जैसे अल्लाह ने उसे दिया था, बला हिसाब बला शर्त। सालिम की आंखें भर आए, वो नजरें झुकाए, कांपती आवाज में माफी मांगता वापस लौटा। और सुलेमान ने दिल ही दिल में शक्र अदा किया कि अल्लाह दिलों को भी बदल देता है, जैसे किस्मतें बदल देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आसमान में एक पुरानी दुआ मौलिक थी, जो अपने वक्त की मंतजर थी। बारिश वाली एक रात थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी गमगीन दिल की हचकियां हों। हुआ में ठंडक थी और फजा में एक अनजानी उदासी। कहीं उसी रात एक बाप हाथ उठाए अपने गुमशुदा बेटे के लिए दुआ कर रहा था। उसकी आवाज बारिश में घल जाती, मगर आंसुओं में डूबी वो दुआ अर्श तक पहुंच रही थी। उधर सुलेमान तकिया में खाने की तकसीम की निगरानी कर रहा था। हाल में खामोशी थी, सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज और बारिश की मध्यम सरसराहट सुनाई देती थी। अचानक दरवाजा खुला, एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। फट्टे पुराने कपड़े, झुका हुआ जिस्म, कदम घसीटता हुआ, चेहरा जर्द, आंखें गुर्बत और थकन से धंसी हुई। उसके कपड़ों से नमी टपक रही थी, जैसे वो बारिश में बहुत देर भटकता रहा हो। उसने नजरें उठाकर किसी को ना देखा, खामोशी से चलता हुआ हाल के एक कोने में जा बैठा। वो कुछ ना बोला, सिर्फ सामने रखे बर्तनों को देखता रहा, एक गर्म प्याला साफ मिलने का मुंतजर। सुलेमान हसबे आदत खुद आगे बढ़ा। उसे कभी किसी को खाली हाथ लौटाना गुवारा ना था, खास तौर पर अजनबियों को जो खामोशी में ज्यादा चीख रहे होते हैं। उसने सूप का प्याला लिया, चंद कदम आगे बढ़ा और नरमी से इस शख्स के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने प्याला उसकी तरफ बढ़ाया और वो शुक्रिया अदा करने के लिए सर उठाने लगा, आंखें आंखों से मिल गईं। एक लम्हे को वक्त जैसे ठहर गया, सुलेमान वहीं मंजमद हो गया। इसके हाथ से चमच गर पड़ा। इसने बरसों जदाई और दर्द के बावजूद पहचान लिया, ये बाप का दिल था जो कभी खुता नहीं करता, ये उसका बेटा खालिद था। सुलेमान की चीख ने पूरा तकिया हिला दिया। मेरा बेटा! खालिद इसके कदमों में गर पड़ा, निन्हे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा और उन हाथों को चौमने लगा जो बरसों की मेहनत और अता से रंगे हुए थे। मुझे माफ कर दीजिए अबू, मैं गुम हो गया, सब कुछ हार बैठा, कर्जों और नाकामियों से भागता हुआ आपके पास लौटा हूं और देखता हूं कि आप कौम के बुजुर्ग और यतीमों के बाप बन चुके हैं। सुलेमान ने उसे उठाया, सीने से लगा लिया, आंखों से आंसू बहते हुए कहा, मत रो बेटा, जब इंसानों ने मुझे छोड़ दिया तब अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। क्या तुम जानते हो अल्लाह के बाद मेरी निजात का सबब कौन बना? खालिद ने हैरत से देखा। सुलेमान ने जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, एक कमजोर चिवंटी, मैंने उसे खुलाया तो रब्बुल आलमीन ने मुझे नवाज दिया। उसने खालिद को आहिस्ता आहिस्ता मटके के उस मख्फी मकाम तक ले जाकर वो राज दिखाया जो उसने उम्र भर किसी को न बताया था। वो जगह जो आम आंखों से ओझल थी, मगर यकीन और नियत की गहराई से रोशन। वहां खड़े होकर सुलेमान ने चंद अल्फाज कहे, सादा मगर वजनदार, जो उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा थे। बेटा, रिज्क ना ताकत से आता है ना अकल की चालाकियों से, रिज्क वहां से आता है जहां इंसान का गुमान भी नहीं पहुंचता। जब नियत अल्लाह के लिए साफ हो और हाथ खैर के लिए फैला हो तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है, चाहे वो खैर अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक के लिए ही क्यों ना हो। खालिद खामोश खड़ा सुनता रहा और उसके दिल में ये अल्फाज नक्श होते चले गए। सुलेमान ने बाकी उम्र इज्जत, सुकून और वकार के साथ गुजारी। न उसे दौलत का गुरूर हुआ, न मकाम का फख्र, वो बस शुक्रगुजार रहा। चिमटियों के साथ उसकी कहानी इस गांव में एक दास्तान बन गई, ऐसी दास्तान जो सिर्फ सुनी नहीं जाती थी बल्कि समझी जाती थी और फिर नस्ल दर नस्ल दिलों में मुंतकिल होती रही। एक सबक की तरह, एक इमानत की तरह लोगों को यह कहानी बार बार याद दिलाती रही कि नेकी मुसीबत से बचाती है और जो अल्लाह के साथ हो, अल्लाह जमीन व आसमान के लश्कर इसके लिए मुसख़र कर देता है। इसी चिवंटी के बल के पास सुलेमान आकर रख गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे मगर नियत मजबूत थी। उसने बहुत एहतियात से मिट्टी हटाना शुरू की, एक एक मुट्ठी, इस डर से कि कहीं मिट्टी गिरकर चिवंटियों को नुकसान न पहुंचा दे, कहीं अल्लाह की उस छोटी मखलूक को तकलीफ ना हो। हवा सर्द थी मगर उसके माथे पर पसीना बहने लगा, सांस तेज हो गई, सीना भारी होने लगा, बाजू थकने लगे, मगर एक अनजानी सी कुव्वत उसे रखने ना देती थी, आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। हर लम्हा दिल में दुआ थी और हर हरकत में एहतियात। अचानक लकड़ी के डंडे से एक भारी खोखली सी आवाज आई। सुलेमान ठठक गया, उसके हाथ वहीं रख गए। ये पत्थर ना था, ये मिट्टी भी ना थी, चिवंटियां इसी जगह जमा हो गई, जैसे खामोश जबान में रहनमाई कर रही हूं, जैसे कह रही हूं यहीं, बस यहीं। सुलेमान घटनों के बल बैठ गया। इसकी सांस भारी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने टूटे हुए नाखनों से बड़ी एहतियात के साथ मिट्टी हटाना शुरू की, हर हरकत सोच समझ कर, हर लम्हा इस खौफ के साथ कि कहीं जरा सी बेएहतियाती इन नन्ही मखलूकात को नुकसान न पहुंचा दे। मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता हटती गई और फिर कुछ सख्त सा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद एक पुरानी मिट्टी की सराही का मुना जाहिर हो गया, जिस पर मोम की एक सख्त जमी हुई तह थी, वक्त की तरह मजबूत, राज की तरह खामोश। बड़ी मशक्कत से सुलेमान ने सराही को दोनों हाथों से थामा और जमीन से बाहर निकाला। वो साइज में छोटी थी मगर उसका वजन ऐसा जैसे लोहे से भरी हो, जैसे उसमें सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बरसों का भरोसा बंद हो। कांपते हाथों से उसने मोम को तोड़ा। जब सराही को हल्का सा झुकाया तो टाट की बोरी पर एक एक करके सुनहरी सके लड़क पड़े कदीम इस्लामी सोने के दीनार, जिन पर कलमश तौहीद किंदा था। गरीब सी झोंपड़ी में यूं चमकने लगे जैसे अंधेरे में सूरज के टुकड़े बिखर गए हों। सुलेमान के मना से हल्की चीख निकली, वो सजदे में गर गया और कांपती आवाज में बोला, पाक है वो जो सबबों का सबब है, पाक है वो जो चिवंटी को उसके बल में रिस्क देता है और मुझे उसी के जरिए। मगर वो जानता था अगर ये राज फैल गया तो यही नामत हिलाकत बन जाएगी। अब सवाल ये था, एक तन्हा बूढ़ा इतने बड़े खजाने के साथ क्या करे और सालिम जैसी आंखों से इस राज को कैसे छिपाए। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। खुदा हाफिज।
1: सामीन, गुलहाय अकीदत प्रोग्राम का मुकर्रा वक्त यहाँ पर अख्तिताम को पहुँचा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। गोशे समा में पेश खिदमत है ये कव्वाली और इसी के साथ ही प्रोग्राम का मुकर्रा वक्त अख्तिताम को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनुर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।

हो आ गई तो कल्ब की तारीफ हो गई, वो चल दिए तो फिर वही तकलीफ हो गई। हश्र में एक सवाल किया था करीम ने मुझसे वहां।

0: बालानंदम बालानंदम
1: संगीत प्रियुलारा इंका बालाल विशेषंगा मन पिल्ललु ई बालानंदम अने तेलुगु कार्यक्रमं विशेषंगा शनिवारं नाडु मी कोसम मी आनंदं कोसम

ఇదో నా బంగారు పాప.

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। मौज करवा गुजराती गीतों ना प्रोग्राम गीत बहार नी साथे गीतों नी बहार गीत बहार गीत बहार।

0: 800 and 19 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को, हमारा अभिवादन। इस समय 2:15 हैं, हमारा आपका साथ है रेडियो मॉरिशस पर। और समय के बारे में तो पता है, शो के बारे में तो पता है आपको, सैटरडे को 2:15 वो तो आपकी पसंद कार्यक्रम ही होना है। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं वही शो जिसे पसंद करते हैं आप, जिसमें आपकी पसंद के गाने चलते हैं, आपकी पसंद। आपका दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा ऐसी दुआ है हमारी, और सेहत आपकी बहुत अच्छी होगी, खुश खुश होंगे, ह्यूमर भी आपका बहुत अच्छा होगा, मूड भी आपका बहुत अच्छा होगा। इन सारी दुआओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी पसंद,
2: आपकी पसंद।
1: जहाँ भी होंगे खुश खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और आपकी पसंद कार्यक्रम की शान बढ़ाएंगे आप, ऐसी हमारी उम्मीद है। अभी याद तो दिलाएंगे हम आपको, अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं फरमाइशों को लेकर तो 5251-7005 पर आप मैसेज भेज सकते हैं, और जो आप करना चाहते हैं कॉल तो कीजिएगा 4028085 पर। हम आपका इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार करते हुए आप लोगों के नाम एक प्यारा सा गाना तो करेंगे हम। ये गाना हम आप सभी श्रोताओं के नाम करते हैं और साथ चलने की इल्तिजा करते हैं आपसे। ये गाना है अनुराधा पौडवाल हरिहरन की आवाज़ों में, और गाना है पगला कहीं का, मूवी से लिया गया।

चलिए जरा हम गायत्री की पसंद का गाना पेश करते हैं, राम नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सोनू निगम की आवाज़ है, निवे फॉस की गायत्री जी की पसंद का ये भजन है और गायत्री जी ने गाना मांगा है अपने बेटे अजय के लिए, मेबक की मामी कल्याणी मोहन के लिए, लॉन्ग माउंटेन की भाभी शकुंतला के लिए और निवे फॉस की सखी गीता बाई के लिए।

इस बार चलिए प्रभु से यही प्रार्थना करें, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करें कि हर किसी के मन में शक्ति भर दें, हर किसी को अपने जीवन में अपने दुखों से लड़ने की शक्ति रहे और हर किसी के हृदय में बहुत सारी हिम्मत भी रहे। ऐसी ही दुआ इस गाने में है और ये गाना हम सुनीता जी के लिए पेश कर रहे हैं, कौगुप की सुनीता जी की तरफ से उनकी बहनों के नाम।

चलिए ज़रा सलामत सलामत की दुआ करते हैं, सलामत रहे उनकी बेटी, ऐसी दुआ रेहाना जी ने की है। फिर नुफदाम की रेहाना जी अपनी बेटी समीना को बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर, उनकी सालगिरह पर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं उनके चाचा चाची फूफा फूफू की तरफ से और पूरी फैमिली की तरफ से। और रेहाना जी तो ढेर सारा आशीर्वाद भी दे रही हैं जन्मदिन की मंगल कामनाएँ हमारी पूरी टीम की तरफ से समीना जी।

0: इस समय 2:37 हुए हैं और बढ़ाते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम को, आपको आपका मनोरंजन करने का ये सिलसिला बढ़ाते हैं।
1: एक हसीन सफर रेडियो मॉरिशस।
0: चलिए जरा माओं के नाम करते हैं ये अगला गाना। इनफैक्ट ये है जैसे कोई तैसा मूवी का गीत, जिसकी फरमाइश की है आइलाबाई जी ने। आइलाबाई जी ने ये गाना अपनी मामा जया की याद में मांगा है, अपनी बहन कल्याणी के साथ मिलकर और मामी यशवंती के साथ मिलकर।

जादू है ये ममता का कि इस जहां में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ की जगह अलग होती है, पिताजी की जगह अलग होती है, और न माँ का की जगह न पिता की जगह कोई ले सकता है। बस एक ही रिश्ता है माँ बाप का इस जहां में, जो कभी भी अपने लिए नहीं सोचता, पहले सबसे पहले अपने बच्चों के लिए सोचता है, वरना हर कोई तो अपनी बात पहले रखना चाहता है। 3:45 बज रहे हैं अभी, 2:43 हुए हैं, कुछ ही मिनट, एक ही मिनट में, बस एक दो मिनट में 2:45 बज जाएंगे, और हमारा आपका से साथ है आपकी पसंद कार्यक्रम में, और पसंद आपकी हम आप तक पहुंचा रहे हैं फोन्स के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए आप हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। याद दिला दें आपको, अगर मैसेज का इरादा है आपका तो 5251700 हमारा नंबर है, और अगर कॉल करने का इरादा है तो 4028085 हमारा नंबर है। फिलहाल तो हम पेश करेंगे आप लोगों के लिए कल हो ना हो का टाइटल गाना, और इस गाने की फरमाइश गीता जी ने पोंफे ऐसे की है अपने पति रोहित जी के लिए, 3 बेटों 3 बहुओं के लिए, आदित्य आरव तनिष के लिए, प्यारे प्यारे से नाती पोते और गुड़िया सी जानवी के लिए, और हमारी पूरी टीम के लिए गीता ने इस गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी। चलिए आपकी पसंद का गाना आपके नाम।

बस हम बढ़ते चलेंगे, हर पल पे हम भरोसा करते चलेंगे। बस अगर ऊपर वाली की मर्जी हो तो हर पल हमारे लिए बहुत खुशगवार रहेगा। हम अपने सभी श्रोताओं के लिए ये दुआ करते हैं कि हर पल आप लोगों के लिए खुशगवार रहे, हर पल आप लोगों को एक तसल्ली सी दे जाए कि ये ज़िंदगी आपके लिए बहुत ही सफल रहेगी। यशुदास की आवाज़ के गाना हम कॉलेज गर्ल मूवी से पेश कर रहे हैं। इसकी फरमाइश पृथ्वी शेफ सैंपियर से गायत्री जी ने की है। सभी भक्तों के नाम उन्होंने ये गाना किया है। हर किसी की मनोकामना पूरी हो जाए इस संसार में, ऐसी प्रार्थना की है गायत्री जी ने भगवान से। चाहे धन मिले न मिले, दिल का सुकून सबको मिले, यही दुआ है। उन्होंने ये गाना अपने पूरे परिवार के लिए भी मांगा है। तो गायत्री जी की तरफ से ये गाना पूरे परिवार के नाम।

0: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: Radio Mauritius.
2: 819 kHz पर ये है Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: रेडियो मॉरिशस पर वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम, और इस बार हम दिलीप जी की पसंद का गाना सुनवाएंगे आपको। ये गाना हम ले रहे हैं आया सावन झूम के मूवी से लिया गया। दिलीप जी कुंगमा से, दिलीप जी ने इस गाने की फरमाइश की है। संगीता के लिए योगेश, कविता, किशनवी, मनसा, इंदिरा और दानंद जी के लिए।

0: Good afternoon, everyone. Check your time. It's 3 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार याचना।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का समापन कल रात हुआ। मॉरिशस के आखिरी प्रतिनिधि मेवे क्लेयर ने इन खेलों का अंत ब्रॉन्ज पदक जीत कर किया। वे कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले दूसरे मॉरिशन खिलाड़ी बन गए हैं। कल रात खेले गए सेमीफाइनल्स में मेवे क्लेयर को वेल्स के ओलांडो होलेई असतोमी ने हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने दो मेडल्स जीते हैं। नोएमी अल्फोंस ने 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि मेवे क्लेयर ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आज मॉरिशन समयानुसार रात के 10:28 पर नोएमी अल्फोंस और बॉन्जी पेरिन 400 मीटर की रेस में भाग लेंगी। एनजीओ एंड एंजल की पहल पर आज आयोजित एक वनरोपण अभियान में स्वयंसेवकों, छात्रों, परिवारों और युवा आर्थिक सदन के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अभियान के दौरान हाल ही में हुई एक साधारण खोज भी सामने आई। स्थल पर मकाक नामक एक दुर्लभ स्थानीय पेड़ हाल ही में पहचाना गया है। ये प्रजाति केवल मॉरिशस में पाई जाती है। विदेशी समाचारों में स्पेन और मोरक्को के बीच चल रहे स्वेता सीमा संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 तक पहुंच गई है। स्पेन की सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी कि मारे गए लोगों में से कुछ की मौत समुद्र में डूबने से हुई, जबकि कुछ समुद्री दीवार यानी ब्रेक वाटर बैरियर पार करते समय मची भगदड़ का शिकार हो गए। ये थे अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Shok samachar sunye. Route Royale Saint-Julien-de-Tmomé, Route Royale Saint-Julien-de-Tmomé, 94 साल के 94 years old के श्री लक्ष्मी प्रसाद महाबीर जो विद्या के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और डॉक्टर विश्वास महाबीर के पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 उनकी पत्नी विश्वानी महाबीर के मकान रॉयल रोड सेंट जूलियन दुतमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: You're listening.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: NBC Radio 24

0: a day.
1: इस समय दिन के 3:03 हुए हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्तियां सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सैंटक्वा के निवासियों को सूचित करता है कि पियतों पेलावाल गली, लुआजो गली, आले पेलावाल गली, इजोदो बुके गली, कनाल बर्टस गली, कोकोतरी गली, जुक्रे गली, आबे क्रोम्बी, सेंट मारी, उदीन लेन, रेजिडेंस ब्रिकेटरी और ला रूट दे पंपली मुस्के एक भाग में कल रविवार 2 अगस्त को सुबह 8:30 से दिन के 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर सीबी सूचित करता है कि मोसेल मोगाफरे पॉइंटो कानूनी और रिजर्वर रोड ग्रांबे में कल रविवार 2 अगस्त को ही सुबह 8:30 से दिन के 3:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतज़ाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। तो जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि संक्षिप्त समाचारों के बाद हम आगे बढ़ाएंगे आपकी पसंद कार्यक्रम को, तो चलिए बढ़ते हैं हम साथ साथ मिलकर। ये प्रोग्राम हम अकेले तो पेश करते नहीं हैं, आप लोगों का साथ होता है, आप लोगों की फरमाइशें होती हैं, तो ये कार्यक्रम खड़ा होता है, अपना ढांचा तैयार करता है। तो चलिए हम आपकी पसंद कार्यक्रम को, हम आपके शो को आगे बढ़ाते हैं।
0: आपकी पसंद।
1: तो चलिए इस बार पेश करते हैं हम आदमी मूवी का गाना। ये है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का गाना और इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं धनी जी बुआशरी से। धनी जी ने ये गाना मांगा है यश और हेमिश के लिए।

0: और अब चलिए हम जैबून जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। जैबून जी ने पोंफाले से फरमाइश की है, उन्होंने अपने शौहर कासम के लिए बेटे साजिद असाद नवाज गालिब और बहू नौशीन रुखसार के लिए आजियाना और साजिया के लिए जहरबी नगमा उर्फा असगर फैजुल्ला निहाद हिदायत और पूरे बिहारी परिवार के लिए फिल्म आदमी सड़क का मूवी का ही गाना मांगा है और उन्होंने ये गाना मांगा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो चलिए जैबून जी के नाम करते हैं, उनके पूरे परिवार के नाम करते हैं ये गाना।
1: कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया।

और अब चलिए हम जरा पोर्ट लुइस की ओर चलते हैं, इब्राहिम जी की पसंद आप तक पहुंचाते हैं। पोर्ट लुइस के इब्राहिम जी सुनना चाह रहे हैं दिल तेरा दीवाना मूवी का ये टाइटल गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

हो तुम कुछ ना कहेंगे हम ओ जान।

0: हंस के किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार है, दिल की मुराद कोई पा गया।
1: सांसों में मीठी

चलिए जरा सुने हम यहूदी मूवी का गाना। ये गाना विद्यानंद जी ने सुनना चाहा है, बल्कि सुनना सुनवाना चाहा है। मेवा के विद्यानंद जी ने गाने की फरमाइश सोहंती जी के लिए की है। अमित, शीतल, आशु, कृषिका, विशाल, राजीव, स्वीटी, हरवेश के लिए की है। फिर शिवाला लेन में बग के अपने दोस्त विष्णु गजाधर जी के लिए और बहन बिंदु कालीचरण जी के लिए की है।

और ये है कुर्बानी मूवी का गाना। ये गाना आप सुनिएगा हरीश जी की पसंद पर। बबासे से हरीश जी ने ये गाना अपने सभी दोस्तों के नाम किया है।

दिल तेरा दीवाना मूवी का ये गाना हम पेश कर रहे हैं आपके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और इस गाने की फरमाइश का तो बोन की अनीता जी ने की है, उन्होंने ये गाना सभी सुनने वालों के नाम किया है। और यही गाना हम शतबिनाहस की ज्योति जी की तरफ से आशनी रेखा सुरेखा और पूरे मंडप परिवार के लिए पेश करते हैं।

0: लगता है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता है।
1: ये है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म प्यार किए जा का ये गाना होगा और ये गाना नंदलाल जी ने मांगा है। नंदलाल जी ने वाकवा से यह गाना सुनना चाहा है, हमारे सभी सुनने वालों के नाम करते हैं हम ये गाना।

इधर है सनम तेरी कसम मूवी का गाना, विश्वानी जी की पसंद, वाकवा की विश्वानी दुमन जी की तरफ से ये गाना हम पेश कर रहे हैं उनकी बहनों के लिए, शारदा और इंदिरा के लिए, उनकी सखियां सहे नीला और प्रतिभा के लिए, फिर गीता गजाधर जी के लिए और शोभा जी के लिए। यही गीत हम पेश करते हैं रेहाना जी के लिए जो फिनिक्स की रहने वाली हैं।

नाम लिया जाता है मुकेश की आवाज़ में सुनते हैं, ये वो गाना है जिसकी फरमाइश की है सुदेवी जी ने, वाकवा से सुदेवी जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपने पूरे परिवार के लिए, दीदी ललिता जो तयोले रहती है उनके लिए, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, बिंदु, माला के लिए, मालेगा के राम रतन, राम गुलाम, कुआहू, रघुबीर और जारू परिवार के लिए।

जलवों की जहां बात हुई वहां पर हुई बात हर प्यार के मौसम की। चलिए ज़रा हम इन मौसमों के बारे में सुनते हैं, चार मौसम, पांच मौसम, किस किन मौसमों पे यार विश्वास करते हैं, ज़रा ये देखते हैं। मदद बेक अनीता जी ने करुणा, अमृता और कविता के लिए सिंदूर के इस गाने की फरमाइश की है। ये है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ें।

तो चलिए इस बार हम पेश करते हैं एक मुट्ठी आसमां का ये गाना हम पेश कर रहे हैं बोबासे की माला जी की तरफ से। ये गीत हम पेश कर रहे हैं मौदालविया की इंदिरा अलाउद्दीन जी के लिए भी।

हमारी मुट्ठी में जो आसमां है उस आसमां में हमारे श्रोताओं का भी स्थान है, हमारे श्रोताओं का साथ मिला, इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया कहेंगे हम आपको। हम अंतिम गाना पेश करेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम का, और ये गाना होगा हमारी श्रोता माला जी का और की पसंद का, और माला जी ने इस गाने की फरमाइश की है। इसी गाने के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यही गाना हम पालमा के माहेन जी की पसंद पर पेश कर रहे हैं। कश्मीर की कली मूवी का ये गाना है। हमारी आपकी मुलाकात अगली बार फिर होगी। आपकी पसंद कार्यक्रम का समय जो पूरा हो जाता है 4 बजे, आप सुनिएगा आज का साहित्य दर्पण कार्यक्रम, जिसे लेकर आ रही हैं डॉक्टर अलका दर्पत। हम आपसे कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। शुभ शाम, नमस्कार।

0: 819 kilohertz. This is Radio Marches.
1: साहित्य दर्पण, नमस्कार श्रोताओं। आप अपने रेडियो सेट से जुड़ चुके होंगे, गाने तो आपने प्यारे प्यारे सुन ही लिए। तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए विचार विमर्श करें। विचारों की दुनिया में गोते लगाना बहुत ज़रूरी है। केवल मनोरंजन और केवल गीत से भावनाओं में तैरना उतरना ज़रूरी है। विचार की नाव हमारे पास होनी चाहिए। अगर नाव ना मिली विचार की तो किनारा कैसे मिलेगा। श्रोताओं, सोचने के लिए साहित्य दर्पण कार्यक्रम आपका स्वागत करता है और आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथ केविश जुड़ चुके हैं और मैं उनके हृदय से धन्यवादी हूँ कि वे मुझे तकनीकी सहायक के रूप में मदद दे रहे हैं। तो श्रोताओं, आज के ज़माने में समस्याएं बहुत हैं और कवि और लेखक अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से मानव चित्रों को खींच देते हैं। जैसे एक चित्रकार रंग और तुलिका लेकर एक चित्र को खड़ा कर देता है, जो उसके सपने में होता है उसे सामने ले आता है। ठीक ऐसे ही एक लेखक अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से चित्रों को खड़ा कर देता है और हम समाज की समस्याओं से रूबरू होने लगते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आती है, हम खुद ही एक समस्या होते हैं, पर जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं और लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं तो हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए आज एक छोटी सी कहानी पहले पढ़ते हैं और आप तो हमारे साथ जुड़ ही जाएंगे। 4028085 पर आप अपनी ज़िंदगी की कहानी, ज़िंदगी के अनुभव, या आपने कोई कहानी पढ़ी है या कुछ महसूस किया है तो आप हमारे साथ ज़रूर बांटेंगे। तो एक छोटी सी कहानी शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दो बूंद गंगा जल। पांडे जी का पार्थिव शरीर, मतलब उनकी डेड बॉडी, पार्थिव शरीर को आंगन में रख दिया था। अब पांडे जी चल बसे तो शरीर रखा आंगन में। पास पड़ोस के लोग आने लगे, रिश्तेदार भी आने लगे। अब अर्थी को तैयार करना चाहिए था। तभी उसी शहर में रहने वाली उनकी विवाहिता पुत्री जोर जोर से दहाड़े मारती हुई गाड़ी से उतरी और पूरी दुनिया को जैसे सुनाया कि वह कितनी दुखी है वो। पिताजी उसके चल बसे, पिताजी के शव से लिपट कर रो रो कर, पिताजी तुमने तो सेवा का मौका ही नहीं दिया, बोलो ना पिताजी, कुछ तो बोलो, यूं क्यों पड़े हुए हो, हमें अकेला छोड़ के चले गए। पता नहीं क्या क्या दुख भरी बातें वह आंसुओं से बहा रही थी। आसपास की महिलाओं ने बड़ा उसे समझाया, कहा कि उम्र थी, बीमार थे, अब जाना ही था, बैठो तुम। पांडे जी का जो बेटा था वो पिताजी वाले कमरे में गुम सुम खड़ा था, देख रहा था अपनी दीदी को कैसे ज़ोर ज़ोर से रो रही है, बिलख रही है और आंखों से आंसू गंगा धार की तरह बह रहे हैं। अब पंडित जी ने कहा कि उनके मुख में गंगा जल डाल दीजिए, अंतिम यात्रा है, और कहा कि आशीष को बुलाया जाए, वह उनके मुँह में गंगा जल डाल दे। पिता की मौत से बेचारा एकदम से जड़ जैसे हो गया था और उसके सामने पिताजी के साथ बिताए हुए समय, वो यादें सब बार बार आंखों से आंसू बनकर गिर रही थी। चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ लोग क्या बोले, बताओ कैसा बेटा है, बाप के मुंह में दो बूंद गंगा जल डालने को भी नहीं आ रहा और बेटी को देखो, बेचारी बाप के गम में मरी जा रही है। उधर आशीष की आंखों के आंसू रोकर भी सूख गए थे। बाहर का दृश्य देखकर उसका मन और दुखी हो रहा था। वह सोचने लगा, ये दुनिया कैसी है। पिताजी को दो बार दिल का दौरा पड़ चुका था और कई दिनों तक वे अस्पताल में भर्ती भी रहे थे। दीदी के पास समय नहीं था। वह बार बार कहती थी, समय नहीं मिला, आज बहुत काम है, चलो मैं फिर आऊँगी। आज इतना बड़ा ढो

दिखाने के लिए यहाँ चली आई है। छी, दूर कहीं से भजन की तेज आवाज वहां तक सुनाई देने लगी थी। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो श्रोताओं, इस कहानी को आपने सुना कि दो बूंद गंगा जल बेटा इतना दुखी है कि नहीं दे पा रहा, लेकिन वहाँ बेटी रो रो कर दुनिया को दिखा रही है कि वह कितनी दुखी है। सचमुच जीवन भर तो पूछा नहीं, अब जब मर गया कोई तो आप उसको अमृत भी पिला दें तो उसका क्या फ़ायदा। तो श्रोताओं, जीवन आज इतना खोखला और दिखावे वाला हो गया है कि सच और झूठ को पहचानने के लिए भी एक अलग तरह की चेतना और बुद्धि चाहिए, अन्यथा आप कहाँ धोखा खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये दो बूंद गंगा जल समाज के उस धोखे, छल, दिखावा, इस सब को दिखाती है कि जीते जी माता पिता को पूछना नहीं, और जब वे मरे हैं तो एक दिन केवल आंसू बहाने के लिए चले आना। क्योंकि जब कोई बीमार होता है, सेवा तो तब चाहिए उसे ना, आप उसके मरने पर आ रहे हैं ये तो 3 दिन या 10 दिन का खेल है, लेकिन वो जो सेवा पहले 2 साल, 1 साल, 6 महीने चलती है, वहाँ मदद की ज़रूरत होती है। तो श्रोताओं, दो बूंद गंगा जल आज के समाज की उस बुराई को दिखा रही है, और इसके लेखक डॉक्टर जगदीश पंत ने आज के समाज का आईना हमें दिखाया है कि किस तरह से हम लोग आज जी रहे हैं। तो चलिए केविश आपको एक गाना सुनाएंगे, फिर हम आपके साथ जुड़ते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028085 पर।

0: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
1: चलिए केविश हमारे साथ जुड़े हैं, एक और कहानी इसी दर्द का बयां करती हुई आपके साथ बांटती हूँ। चारू मित्रा जी ने ये कहानी भेजी है। बड़ी जेठानी मतलब बड़ी गोतनी, बड़ी जेठानी ममता दीदी का फोन आया। कैसी हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, और आप? उसकी आवाज़ फोन पर खुशी से गूंज रही थी। सुनो, मेरी सरकारी टीचर नौकरी लग गई है, पहली पोस्टिंग बिहार में है। मैं अब माँ बाबूजी को अपने साथ नहीं रख पाऊँगी, तुम्हें ही रखना पड़ेगा। कहीं ये सुनकर तुम्हें सांप तो नहीं सूंघ गया? उसने व्यंग्य से मुझे कहा। मैं तो कहती हूँ तुम भी कोई नौकरी कर लो, तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा उन बूढ़ों से। मैंने झट से फ़ोन काट दिया। बगल में बैठी बेटी समाचार पत्र में लेख पढ़ रही थी। माता पिता सास ससुर को अपने साथ रखने से कभी जीवन में दुख नहीं होता। तो श्रोताओं, कहानी बड़ी छोटी सी है लेकिन आज की जिंदगी की पोल को खोलती है। मतलब तुम भी कहीं नौकरी वोकरी कर लो ताकि माँ बाबूजी से छुटकारा मिल जाए। देखिए, जिन्होंने जीवन भर खड़ा किया, इस नौकरी के लायक बनाया, जब हमें नौकरी मिलने वाली है तो हम छुटकारा चाहते हैं। श्रोताओं, हमारी बुद्धि आज कुछ टेढ़ी टेढ़ी चलती है, स्वार्थ की बुद्धि हो गई है, इस कारण इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो चलिए हमारे साथ श्रोता जुड़ने लगे, हम एक श्रोता को सुनते हैं। हेलो।
2: हाँ बेटी।
1: नमस्ते नानी जी।
2: नमस्ते बेटी देवी। नानी सुकलाल है?
1: हाँ नानी सुकलाल, कैसी है?
2: हाँ, एगो सब समाचार अच्छा ना?
1: अरे आप ठीक है तो हम भी ठीक है।
2: हाँ, एगो भजन बोल दिला, दू लालीन बजस्ती हम मने भुला गई है।
1: अच्छा,
2: मैं दू लालीन वहाँ बोल दिला।
1: जरूर जरूर जरूर।
2: प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारी ब्रह्मांड का जीवन धारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, तू ही भवसागर दाता, तू ही सुखों को दाता, तू ही भवसागर दाता, तू ही सुखों को दाता, भक्तों की पार लगाता, भक्तों की पार लगाता, मन होंजी यारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, जग को रचाने वाला बिगड़ी बनाने वाला, जग को रचाने वाला बिगड़ी बनाने वाला, कन कन में तू ही प्रभु सब में समाया है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है।
1: बहुत धन्यवाद नानी जी, बहुत प्यारा प्यारा भजन आप सुनाती हैं।
2: भुला गए नहीं, बड़ा जोली भजन भाई।
1: हाँ सचमुच जोली जोली बहुत अच्छा
2: भजन में चली, पुजवे के चली सब बात, सबसे महीना सर्वान के
1: आवत आप और नए नए भजन
2: सप्ताह में। हाँ कुछ बोलो।
1: चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नानी जी। नानी जी हमारे साथ जुड़ती हैं और सचमुच इस उम्र में नए नए भजन सुनाती हैं, और कई तो उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो सुन के बड़ा ही आनंद आता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो चलिए श्रोताओं, मॉरिशस में अभी के लिए अल्जाइमर और पार्किंसन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अल्जाइमर तो पूछिए ही मत। मतलब कभी कभी बाज़ार में खड़ा कोई बूढ़ा पूछता है मुझे कहाँ जाना है, वो अपना घर भूल जाता है। कितनी बड़ी तकलीफ़ है बच्चों के लिए भी और उस बड़े बूढ़े के लिए भी, और आजकल बच्चे सब बाहर काम करते हैं, ऐसे में उन बूढ़ों को देखना या किसी को उनके लिए घर पर छोड़ना भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पता नहीं वो गॉड मालाद भी कितना विश्वसनीय होगा। तो श्रोताओं एक बड़ी भारी समस्या है, पर एक चीज़ बड़ी अजीब है, ये अल्जाइमर के मरीज़ बहुत कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उनको घर का रास्ता भूल जाता है, वो ये भूल जाते हैं कि कपड़ा सीधा पहना है कि उल्टा, ये सब चीज़ें भूलते हैं वे, लेकिन अपने बच्चों को नहीं भूलते हैं वे चाहे अल्जाइमर के रोगी हैं। मैंने ऐसे अल्जाइमर के रोगी को देखा जिसको होम में छोड़

कपड़ा, क्योंकि घर में कोई था नहीं देखने वाला। और उनके पुत्र वधू और उनका बेटा शुक्रवार को शाम को उनको घर ले जाते थे और रविवार को फिर छोड़ देते थे। लेकिन वे अपने बेटे का इंतज़ार रोज़ करती रहती थी, कपड़ों की गठरी बांध के बैठ जाती थी कि वह आएगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अल्जाइमर में बहुत आगे की स्टेज हो तब व्यक्ति अपनों को भूलता है, लेकिन जो अल्जाइमर के शुरू के स्टेजेस हैं उसमें अपने बच्चों को नहीं भूलता है। तो दुख बड़ा अजीब है कि आप उन बच्चों की इंतज़ार करते हैं जिनको आप पहचान सकते हैं और वे आपको पहचानना नहीं चाहते। तो हमें संतोष जी ने एक बड़ी प्यारी कहानी भेजी है, जो भूलना चाहिए उसे वे भूल जाएं तो उनका दुख कम हो जाए ना, लेकिन वो बच्चों को नहीं भूलते, बच्चे उनको भूलना चाहते हैं। ये क्या, मैं उन बुजुर्ग दंपत्ति के रसोई घर में प्रविष्ट हुआ तो पूछा, आपने किचन में बिस्तर क्यों लगा रखा है?

0: ये क्या? मैंने उस बुजुर्ग दंपत्ति पड़ोसी से पूछा कि आप रसोई घर में बिस्तर लगा के बैठे हैं। हाँ भाई, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, मैं यहीं लेटा रहता हूँ। ये तुम्हारी आंटी जो है ना, खाना बनाने आती हैं, अब काम करती हैं, कभी गैस का स्विच ऑफ करना भूल जाती हैं, कभी चालू करना भूल जाती हैं, कभी बिजली का बटन ऑन रह जाता है, कहते हुए वे हंस पड़े। और कभी कभी तो कच्चा ही खाना रह जाता, वही खाते हैं। तो मैं जब यहाँ लेटा रहता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, और मैं तुम्हारी आंटी को बोल देता हूँ कि अभी देखो गैस बंद करो, अभी ऑन कर दो। ओह, तो आपके बच्चे हैं ना? दो हैं, कहते हुए वे और उदास हो गए। दोनों बहुत अमीर हैं, इस शहर में ही रहते हैं। उनकी हंसी भी गायब हो गई और दर्द अब बाहर आने लगा। दोनों बेटों को याद करके यह रोती रहती है, और वे हैं कि भूल कर भी यहाँ नहीं आते। रत्ना तो भुलक्कड़ है, लेकिन जो भूलना चाहिए उसे नहीं भूलती। काश हम दोनों भूल पाते कि हमारे बच्चे भी हैं। तो श्रोताओं, ये जो अल्जाइमर का मरीज है, उसको भूलने की बीमारी और हो जाती है जब उसके अपने, जिनको वो देखना चाहते हैं, जिनसे बात करना चाहते हैं, उनके सामने नहीं आते हैं। ये दर्द हमको तब पता चलता है जब हमारे बच्चे हमको भुलाते हैं। हम अपनी उम्र तक, जवानी तक इस दर्द को महसूस नहीं कर पाते। श्रोताओं, मैं ये नहीं कहती कि आपकी नौकरी दूसरे शहर में है तो आप ना जाएं, आपको जाना पड़ता है, आजकल का सिस्टम ही ऐसा हो गया है। लेकिन अपने माता पिता को फ़ोन करना, बीच में समय निकाल के 10 मिनट के लिए मिलकर आना, कभी कुछ खाने की चीज़ दे आना, कभी उनके साथ हंसना, कभी अपनी कोई कहानी शेयर करना, इसकी बहुत ज़रूरत है। हम वह चीज़ें भी अपनी भाग दौड़ में भूल जाते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब हम भी इसी चीज़ को तरसेंगे। तो तरसने से पहले बांट दें तो हमको भी वक्त पर मिल जाएगी। चलिए, हमारे साथ एक श्रोता भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम उनको सुनते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्ते जी।
1: हेलो, नमस्कार दीदी,
0: कैसे हो जी?
1: जी मैं अच्छी हूँ। आज का विषय क्या है?
0: आज का विषय है बड़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: हाँ, बड़ों का, हाँ वो तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए, अगर बड़े नहीं होते तो हम आज कहाँ होते।
0: हाँ, हाँ।
1: उनका ध्यान तो हमें रखना ही है। आजकल आज के जो बच्चे, आज के जो युवक हैं, उनको भी हमें यही सिखाना है।
0: हाँ,
1: क्योंकि आज हम जहाँ पहुँचे हैं दीदी, ये उन्हीं की बदौलत है।
0: हाँ, ये तो सच बात है, बिल्कुल।
1: गुरुओं की, माता पिता की, और हाँ, भी जो बुजुर्ग हैं गांव में, उनकी जो हाँ, कृपा आशीर्वाद है, उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे।
0: अगर कृतज्ञता आ जाए तो आधे दुख खत्म हो जाए जीवन में।
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं। और ये कैसे कहेगा, यही तो संस्कार हमें यही सिखाती है ना, कि आदर्श, अपने आदर्शों को भूलना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल, आदर्श। और किसी ने कुछ किया है तो उसके लिए हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए।
1: चाहे वो कोई भी हो, भले ही हमारा अपना न परिवार नहीं हो, आसपास के पड़ोसी हो,
0: बिल्कुल
1: हमेशा उसका आभार, आभार,
0: आभार होना चाहिए। सच बात,
1: आभार होना चाहिए दीदी। और मैं दो शब्द, सावन का मास, श्रावण का मास,
0: जरूर सुनाइए।
1: मंदिर जा रहे हैं शिव जी के लिए, तो मैं एक छोटा सा एक लाइन सुना देती हूँ।
0: सुनाइए जरूर।

0: होगा, सबको श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको पूरे स्टाफ को
1: बहुत धन्यवाद, आपने हमें शुभकामनाएं दी। चलिए हम एक और श्रोता को पकड़ते हैं। हेलो।
2: हेलो बहन जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हैं?
2: अच्छी है बहन जी,
1: जी
2: बहुत अच्छी है। ऐसी प्रोग्राम कर रही है, ऐसी बातें बोल रही है, हम सुन रहे हैं।
1: बहुत धन्यवाद।
2: भोजपुरी में बोला माँ?
1: बोलो।
2: भोजपुरी में थोड़ा बोली ला बारह आदमी
1: पर। जरूर जरूर बोलिए।
2: जानी ला है जो आज मैं के जन्म लगवा बोला तो अभी जानी ला कैसे हो बुझा ला हमनी के जैसे हम ये उम्र पे हैं तो जब लड़का जनकी ले ला अपन बारह आदमी के जब उम्र पर चल आवे ला जाता
1: बहुत दुख हो वेला, बहुत दुख,
2: बहुत दुख हो दुखवा लोग के को रोग धरा दी बता। और सोते सोते लोग खाली रास्ता दिखा कर अपन लड़का के सब कुछ में भूला गया वही लड़कुआ के लोग नहीं सच्चे बोला तू अभी लड़कुआ के बतवा ही लोग का मलदवा धरा हुआ था।
1: हाँ सही बोल,
2: सुनता था आज होम बना था तो उम्र हम जा तो मलदवा बहुत जोर बढ़ा था,
1: बहुत ज्यादा अल्जाइमर, बहुत दुख,
2: बहुत ज्यादा। और फिर घरों में नहीं सकता कुछ डाले, अब हुआ रखा तो बता लेता नहीं जा इत मजे ना जाना तोरा हर घड़ी काम पर जाता हुआ काम करी सही नहीं बोला नहीं पहले के समय नहीं था। टेंशन हाथ में लेते टेंशन जाके घर ही जाके आगे टेंशन जाके देख लिया दो मिनट के देख लेला माँ
1: बस तो माँ खुश हो जाए। बिल्कुल सही बोल रही हैं,
2: खुश हो जाए हम बस देख ले लेकुआ का तकलीफ आराम से सुती रात की
1: सही बोल रही
2: हैं। लड़का लोग काम करे घर बैठे फिर के जाए की आगे टेंशन पांच मिनट निकला घर नहीं आना ओके टेंशन देख ला।
1: बिल्कुल सही बोल रही
2: है, एगो चीज पकड़ा इतना सुन दुख ये रुक
1: गया। एक छोटा सा गातो ही दे दो कितनी खुश हो जाएगी वो,
2: जोन चीज खा के खुशी होवन जा होवे दे दा।
1: हाँ सही
2: दुख ये दे दे बम करा झुरा गल वो जब झुरा गल तो उसका ठंडा हो गई जाए।
1: बिल्कुल सही बोल रही हैं, बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बड़ा जो चीज हम बढ़ा था माँ है एगो रोग जो ना का डॉक्टर नहीं जाना तक पहुंच करी
1: कोई इलाज नहीं बहन जी, अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है अभी तक
2: कोई नहीं लड़का लोग जाके रखा था वही मला दी ज्ञान ले लेगा।
1: हाँ हाँ सही बोल रही है बिल्कुल।
2: सोचा के देखा माँ देखा तोरा बसी तू तो मन जस्ती बुद्धिमान हो तो मैं हमार सोची ला जब अपन कपार में तो हवे करावत होते। हाँ
1: हाँ
2: बच्ची जाने ने सब कोई पढ़ल नहीं है बा ये देखा हमनी पढ़ल नहीं जा थोड़ा ही सुन ढेर नहीं तू सब पढ़ी ला जा लगा से पढ़ी ला जा हल रूले हुआ था कसित हुआ कपरवा के जानी जानी गते गते वो लोग नहीं पढ़ल वन जा वो देखते चीज में टिकल रहे लन जा लोकवा कब आए
1: हाँ बस इंतजार इंतजार करते हैं। बिल्कुल
2: इंतजार माँ ये में उलो के दुनिया जाता है।
1: बिल्कुल बहुत धन्यवाद बहन जी आप जुड़ी और सचमुच आपने उनके दुख को बताया आपने, बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक दो बोल प्यार के लिए वो तरसे हुए, एक प्यार के लिए अगर वो लोग दे सकें तो आधी बीमारी खत्म हो जाती है। चलिए एक और श्रोता से मिलते हैं। हेलो।
3: हेलो नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते जी, सुनाइए कुछ।
3: मैं हूँ धनेश्वर चौवा जवेल सिंह।
1: यस, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद बहन जी।
1: जी
3: तो आपके विषय में जब आपने बात की
1: जी
3: तो कुछ लाइन मुझे याद आ गया।
1: जरूर सुनाइए।
3: जी

गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा के करने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरे

0: सुनकर ख्याल आ गया, जन्म मानव के लेके गया न कहीं, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जब तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों के करने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: सुंदर धनेश्वर जी, बहुत सुंदर सुनाया, और गीत की पंक्तियों में ही सारे भाव छिपे हुए हैं। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो,
2: धन्यवाद। हेलो अलका बहन,
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार
1: नमस्कार,
2: जी।
1: सुनाइए कुछ।
2: यही बोलना चाहती हूँ आज के विषय में, दो शब्द बोलना चाहती हूँ
1: जी
2: जो आप
1: जी
2: माता पिता पर या बुजुर्गों
1: हाँ
2: पर कर
1: बड़ों
2: रहे
1: पर
2: थे,
1: जी।
2: बड़ों की। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, माता पिता जो होते हैं ना, वे उस घने वृक्ष की तरह होते हैं
1: जिसकी ठंडी
2: जिसकी छाया में
1: छांव,
2: संतान अपने को सुरक्षित पाता है।
1: बिल्कुल सही कह रही
2: वो
1: हैं।
2: हर आंधी हर तूफान से उसको बचाते हैं, और वे उनसे मतलब
1: खुद टकरा जाते हैं।
2: हाँ खुद टकरा जाते हैं, लेकिन अपने संतान पर आंच नहीं आने देते हैं।
1: हाँ
2: और
1: बिल्कुल
2: उनकी हर वक्त जब तक वे जीवित रहते हैं, उनकी सुख सुविधा का वो लोग ध्यान रखते हैं, और हर प्रकार से उनकी उनकी मतलब योग से भी करते हैं वे लोग।
1: हाँ,
2: कभी
1: क्योंकि
2: चाहे पुत्र
1: ये
2: का
1: रिश्ता
2: पुत्र हो
1: उनका
2: जाए,
1: रिश्ता
2: चाहे
1: स्वार्थ का नहीं होता।
2: जी। तो मैं बस यही एक छोटी सी इस विषय में एक प्रसंग सुनाती हूँ
1: जी
2: कि माता पिता की सेवा। एक
1: हाँ
2: बालक अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करता था।
1: जी
2: उसके मित्र उससे कहते, अगर इतनी सेवा तुम भगवान की करते तो तुम्हें शायद भगवान मिल जाते, लेकिन उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो अपने माता पिता की सेवा में पूर्ण निष्ठा से अनवरत लगा रहता। एक दिन उसकी माता पिता की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान धरती पर ही आ गई।
1: अच्छा
2: उस समय वो बालक अपनी माँ के पैर दबा रहा था। भगवान उसके घर के द्वार पर खड़े होकर बोले, द्वार खोलो बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने आया हूँ।
1: अच्छा
2: बालक ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रतीक्षा कीजिए प्रभु, मैं माँ की सेवा में लगा हूँ, मैं वापस चला जाऊंगा, भगवान ने उत्तर दिया। बच्चे ने कहा, आप जा सकते हैं भगवान, किंतु मैं इस सेवा को बीच में नहीं छोड़ सकता।
1: बहुत सुंदर।
2: कुछ देर बाद सेवा समाप्त हुई तो उसने दरवाजा खोला तो पाया कि भगवान द्वार पर ही खड़े हुए थे। भगवान ने बालक से कहा, लोग मुझे प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया करते हैं, परंतु मैं तुम्हें सहज में ही मिल गया, और तुमने मुझसे प्रतीक्षा करवाई। तब उसने कहा, हे ईश्वर, जिन माता पिता की सेवा ने आपको मेरे पास आने पर विवश कर दिया, उन माता पिता की सेवा को मैं बीच में छोड़कर दरवाजा खोलने कैसे आ सकता था।
1: बहुत सुंदर,
2: तो ये उन्होंने ऐसा कहा,
1: बहुत
2: तो
1: ही गहरा
2: यही मैं
1: भाव है।
2: समझती हूँ कि यही जीवन का सार है बहन जी। जीवन में माता पिता तथा उनकी सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे माता पिता ही हमें जीवन देते हैं, यही माता पिता अपने पेट काट कर अपने बच्चों का पेट भरते हैं। इसके बदले हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम कभी उन्हें कष्ट न दें, उनकी
1: बहुत
2: आंखों में
1: सुंदर,
2: कभी आंसू ना आए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो।
1: बहुत सुंदर और बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा
2: जी
1: संदेश है कहानी में, बहुत
2: जी इसी
1: धन्यवाद।
2: के आधार पर कि बुजुर्गों को अब सिर्फ माता पिता ही
1: हाँ
2: नहीं, देखो हमारे समाज में और भी बड़े जन
1: हाँ बड़े जन जो भी बड़े,
2: होते
1: क्योंकि
2: हैं
1: समाज
2: जिनके
1: को उन लोगों ने बहुत कुछ

0: दिया है।
1: जी, क्योंकि कोई
0: माता पिता तो
1: अपंग
0: हमें
1: है,
0: बनाते
1: किसी
0: हैं, बिल्कुल
1: जैसे कि शुरू में आपने कहा किसी को भूलने की बीमारी हो जाती है, किसी को कुछ ना कुछ तो लगा है वृद्ध अवस्था में, तो क्योंकि शरीर तो
0: ये
1: रोगों का
0: जरूरी
1: घर
0: है,
1: है ना
0: शरीर तो
1: बहन।
0: जर्जर होगा ही ना, तो कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है व्यक्ति को। तो बहुत धन्यवाद, शायद आपका कट गया, पर कहानी बहुत सुंदर थी कि जिस माता पिता की सेवा से भगवान द्वार तक आ गए तो वो सेवा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार डॉक्टर
0: हाँ
2: जी।
0: नमस्कार धनी जी, कैसे हैं,
2: मैं ठीक हूँ।
0: सुनाइए।
2: देखिए, आपके प्रोग्राम में ये वृद्ध ही लोग भाग लेते हैं, क्योंकि हमारा जमाना गुजर चुका है, हम गुजर गए हैं। जो विषय आपने
0: धनी जी,
2: लाया
0: अभी
2: है,
0: हम गुजरे नहीं है, अभी भूत नहीं बने, अभी हम
2: नहीं
0: वर्तमान में
2: नहीं
0: हैं।
2: ये बात नहीं है,
0: जब
2: हम
0: मरेंगे
2: उस
0: तब भूत
2: जमाने
0: बनेंगे।
2: से, मैं कहता हूँ उस
0: हाँ,
2: जमाने से हमने बीत दिया है,
0: उस
2: हमने
0: जमाने से
2: गुजर
0: आप
2: चुके हैं
0: उस
2: उस
0: दौर से
2: जमाने से।
0: गुजरे हैं।
2: जी,
0: जी
2: तो उस समय की बात अब लौट कर नहीं आएगी,
0: नहीं
2: क्योंकि
0: आएगी, ये
2: आप
0: तो वक्त
2: आपके
0: का पहिया
2: सारे
0: तो रुकता नहीं है ना।
2: ये नानी है
0: हाँ
2: और कुछ बहनें हैं,
0: बीना
2: अभी
0: जी
2: एक
0: हैं।
2: बहन ने बोला तो
0: हाँ
2: हम गुजर चुके हैं
0: हाँ
2: इस विषय से,
0: हाँ हाँ
2: इस परिस्थिति से,
0: हाँ हाँ
2: तो हम
0: मजबूत हो
2: हमें
0: गए हैं।
2: लगता है कि अगर जैसे हमने किया है
0: हाँ हाँ
2: तो हमारे साथ भी वैसा ही गुजरे तो अच्छा लगेगा, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज के सोचते नहीं है, आज के बच्चे नहीं सोचते हैं कि, मैं कहता हूँ सभी नहीं,
0: हाँ
2: परंतु
0: कुछ
2: बहुत
0: हैं।
2: आज के समय में बहुत ऐसा हो गया है कि सोचते नहीं है कि जो
0: कि किसी को
2: भगवान
0: कैसे
2: देख
0: दुख
2: रहा
0: हो
2: है,
0: सकता है। हाँ
2: जी भगवान देख रहा है,
0: हाँ
2: हमारा बदी का बदला यही मिलेगा।
0: मिलता है भाई साहब, आपको नहीं मिलेगा तो आपके बच्चों को मिलेगा।
2: जी
0: मान लो आप कहीं बच गए तो आपकी अगली जनरेशन भुगतेगी, ये
2: जी
0: बचेगा नहीं
2: अवश्य
0: आदमी।
2: अवश्य, जब
0: और
2: दिल
0: आप
2: दुखता
0: जानते ही
2: है,
0: हैं कि हम
2: एक बात
0: ही,
2: है, जब दिल दुखता है
0: हाँ तो बद्दुआ
2: आंसू
0: निकल।
2: बहता है, रात को आंसू बहता है माता पिता का, एक बच्चे कहीं
0: और मैं तो
2: पूछते नहीं
0: कहूंगी
2: है।
0: माता पिता
2: जी
0: कितने
2: हाँ
0: भी दुखी हों, बद्दुआ नहीं
2: जी,
0: देते हैं। ये देखिए एक
2: लेकिन
0: और
2: एक
0: आश्चर्य है,
2: जी
0: रो
2: एक
0: लेते
2: बहन ने
0: हैं,
2: कहा
0: हाँ
2: जो
0: आंसू आ
2: माता
0: जाते
2: पिता,
0: हैं।
2: जी माता पिता, वो माता पिता को भगवान ने वरदान दिया है कि
0: हाँ
2: कहीं भी रहे, कहीं भी, दिल
0: जी
2: कहता है ये
0: हाँ,
2: मेरा बच्चा है।
0: ये मेरा बच्चा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये
2: जी
0: इस भाव का मान रखना बहुत ज़रूरी है। यही
2: जी
0: हम कह रहे हैं कि ठीक है वक्त बदला है, आपकी
2: जी
0: नौकरी दूर है, समय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समय तो निकाल लीजिए, 5 मिनट,
2: जी
0: 10 मिनट,
2: हाल
0: दो
2: तो
0: बोल
2: पूछिए,
0: बोल
2: कम से
0: लीजिए,
2: कम नजर उठाकर
0: हाँ
2: देखिए,
0: देख लीजिए, पूछ
2: हैं?
0: लीजिए आप कैसे हैं, तबीयत
2: जी
0: ठीक है आपकी, इतना सब
2: जी
0: बोल बोल के
2: एक बात
0: उनका,
2: है, तसल्ली
0: हाँ
2: तसल्ली मिल
0: तसल्ली
2: जाएगी,
0: तसल्ली मिल जाएगी। सही बोल
2: तसल्ली
0: रहे
2: मिल
0: हैं,
2: जाएगी।
0: क्योंकि बुढ़ापे में आदमी अकेलापन बहुत महसूस करता है,
2: जी
0: बहुत ज़्यादा।
2: बहुत
0: बहुत धन्यवाद
2: दुखी
0: धनी
2: समय
0: जी,
2: है।
0: आप ठीक कह रहे हैं,
2: जी
0: समस्याएं बहुत हैं और सचमुच लोग दुखी भी हैं, वो अपनापन, इस अपनेपन की तलाश सभी को है, और यदि हम ये अपनापन बांट सकें तो दुगना हो के अपनापन आता है। इस बात की असल में मैं कहूँ कुछ हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी कमी है, क्योंकि पढ़ाने वाला केवल अपना विषय पढ़ाकर चला जाता है, वो जो ज़िंदगी की पढ़ाई है वो कोई नहीं पढ़ा रहा है बच्चों को। आगे तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा फूफू सब एक साथ हुआ करते थे, तो ज़िंदगी की कुछ पढ़ाइयाँ बिना पढ़े ही पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब परिवार भी एकल हो गए हैं, अब वो रिश्तों को समझना, एक दूसरे के दर्द को देखना, वो भी टूट रहा है। और उधर एजुकेशन सिस्टम में भी कोई ऐसी क्लास नहीं है जो आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाए, और अध्यापक केवल अपने विषय तक सीमित है, तो विषयों में बच्चे पारंगत हो रहे हैं, बहुत चतुर प्रवीण, अपनी नौकरियां बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी कैसे जीनी है वो पाठ उनको नहीं मिल रहा। न जाने कौन सा अध्यापक पढ़ाते हुए इन चीज़ों को भी पढ़ा जाए अगर बच्चों को, तो समाज बदलने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, चलिए हम एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो, शायद आपकी लाइन कटी है, आप फिर से कोशिश करें, तब तक हम एक गीत प्रस्तुत करते हैं।

0: सीख का सदा स्वागत होता है। साहित्य में छुपा गुड़ रहस्य होता है, क्योंकि साहित्य सबका आईना होता है। साहित्य दर्पण ये साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आ रही है अलका धनपत।
1: चलिए गाना तो खत्म हुआ और श्यामा जी हमारे साथ आ गई हैं। हेलो।
2: हाँ बहन जी,
1: नमस्ते।
2: क्या गुड़ विषय आपने रखा।
1: अरे बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनी,
2: दिल को दहल देने वाली बात।
1: अरे सचमुच, मैं जब होम में जाती हूँ किसी किसी की कहानी सुन के तो अंदर दिल रोता है कि लगता है कि अरे थोड़ा तो पूछ लो, आके दो वाक्य आके बोल लो, उस गरीब को तसल्ली मिल जाएगी। मत रखो घर में कोई बात नहीं, पर जब पिक्चर देख सकते हो, घूमने जा सकते हो, मित्रों से मिल सकते हो, बाजार खाने पीने जा सकते हो, 10 मिनट उनको भी मिल लो आके।

0: तो मैं ये कहूंगी बहन जी, हमारे बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, हमारे दर्शन के लिए आंखें बिछाए बैठे रहते हैं।
1: हाँ, सच कह रही हैं, बिल्कुल।
0: उनको हमारे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इसी चिंता में तो अपना सारा समय व्यतीत करते हैं।
1: क्योंकि उनके पास और कुछ ज्यादा समाज होता नहीं ना, अब बीमार हैं, बूढ़े हैं, तो कहाँ जाएंगे, तो ज्यादा बातें होती नहीं
0: है। में यह ज्यादातर तो अपने भविष्य के बारे अपने बच्चों के लिए सोचते हैं,
1: अपने लिए नहीं,
0: अपने लिए नहीं जीते हैं, ना ही अपने लिए जीते हैं, ना अपने लिए सोचते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि अब तो आगे तो पैसा भी बच्चों को देते थे, पर अब जमाने ने सिखा दिया कि भाई जब तक जान है तब तक उनके नाम सब कुछ मत करो, नहीं तो तुम कूड़ेदान में चले जाओगे।
0: बहन जी फिर भी कर देते हैं, रख कर क्या करेंगे, जो जो बड़ों का दिल है ना बहन जी।
1: नहीं तो बहन जी, कभी कभी कभी कभी उससे तकलीफ बढ़ जाती है, सामने वाला सेल्फिश बहुत हो जाता है, अब आपके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है।
0: हाँ बहन जी, तो आजकल के बच्चे को समय कहाँ दर्शन देने के लिए, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए,
1: भगवान से भी बड़े हो गए हैं,
0: कुछ नहीं चाहिए बहन जी, न हीरा न मोती कुछ नहीं चाहिए, वो तो केवल दर्शन के प्यासे हैं, दर्शन के भूखे हैं बहन जी,
1: एक बार आके मिल लो बस।
0: कुछ ऐसे निष्ठुर बच्चे हैं जो आपको या आपका समाचार तक पूछने नहीं आते हैं बहन जी।
1: सही कह रही हैं, बिल्कुल।
0: आज के समय में माता पिता तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बहन जी,
1: बहुत उदास हैं कुछ लोग। सही कह रही हैं।
0: भुलौनी तो एक बीमारी है बहन जी, जिसे कहते हैं अल्जाइमर, एक बीमारी, एक समस्या है
1: अल्जाइमर।
0: इसका एक समस्या है बहन, जिसका कोई इलाज नहीं है।
1: कोई
0: क्या इसी दिन देखने के लिए भगवान ने हमें छोड़ा है बहन जी, न सूझ बूझ है, न किसी पर भरोसा किया जा रहा है, न किसी पर भरोसा कर सकते हैं बहन जी। और आजकल तो ये बात ज्यादा है बहन जी, आजकल तो मेड भी नहीं मिल रहा है,
1: समस्या गौरमाला नहीं मिल रहे हैं।
0: हाँ हाँ हाँ जी बहन जी,
1: और
0: तो मैं ये कहूँगी बहन जी कि धन्य है वो बाल बच्चे जिसने अपने माँ बाप का भार आज तक उठाया है। सभी बच्चे श्रवण कुमार या राम नहीं बन सकता है बहन जी।
1: हाँ बहन जी, लेकिन फिर भी जो माता पिता ने इतना दिया, थोड़ा तो दायित्व निभा लो।
0: हाँ बहन जी, है कुछ ऐसे
1: हैं, कुछ समाज
0: में बहुत ऐसे बच्चे हैं,
1: बहुत बच्चे
0: जो अपने दायित्व निभाते हैं बहन, चाहे दूर रह कर भी समाचार पूछते हैं,
1: फोन
0: आते
1: करते
0: हैं, देखते हैं,
1: लेकिन
0: कितने ऐसे हैं जो आकर पीठ घुमा कर चले जाते हैं, मुंह फेर कर चले जाते हैं।
1: मगर बहन जी, मैं तो एक ऐसे परिवार को जानती हूँ, बच्चा विदेश में, माँ बाप ने सेटल कर दिया उसे, अब जब आते हैं तो उस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि सुविधा नहीं
0: रह सकते हैं बहन, उसे तो
1: होटल में रहते हैं, कोपमा लेके रहते हैं।
0: हाँ,
1: और माँ तरसती रह जाती है कि बच्चा आके मेरे पास दो दिन तो रह ले, एक दिन तो रह ले, तो सौ बहाने बना देता है।
0: पहुँचने वाले अब कोई नहीं है बहन जी,
1: कोई सोचे जिस घर में तुम इतने बड़े हुए 20-25 साल, आज वही घर तुमको छोटा लगता है, सोचने की बात है ये।
0: इसी को कहते हैं दुनिया बहन जी, ये है दुनियादारी।
1: सही कह रही हैं।
0: ना बहन जी, ये है दुनियादारी। लेने को सभी को है बहन जी,
1: सेवा
0: करने के लिए नहीं है बहन जी।
1: बिल्कुल सही,
0: सेवा करने के लिए नहीं।
1: बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने भी थोड़ा सा आज के समाज का चित्र हमारे सामने खोल दिया, और सचमुच ये सच
0: तो
1: है।
0: जो ही नहीं चल रहा है, मैं तो वो कैसे कहते हैं पोता में सुन सुन कर मैंने सोचा, मैंने तो विषय भी नहीं सुना लेकिन जब मैंने सुना कि अल्जाइमर है या
1: आज हम कहानियाँ कहानियों के माध्यम से इन समस्याओं को लेके चल रहे हैं।
0: हाँ बहन जी, आपको बहुत धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद श्यामा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हाँ बोलिए।
0: हाँ, ये समाज का नग्न चित्रण है।
1: हाँ हाँ, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि नंगापन देखना चाहिए, शायद शर्म आ जाए किसी को।
0: पता नहीं बहन जी, वो किस घाट का पानी पिया है, कहाँ से शर्म आएगा बहन जी, क्षमा करना मुझे। क्योंकि जब मैं सच्चाई बोलती हूँ ना बहन जी, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता
1: तो ना लगे, सच थोड़ी बदल जाएगा, अगर करेला कड़वा है तो मीठा थोड़ी हो जाएगा।
0: नहीं करते हैं बहन जी, क्योंकि वो जानते हैं मैं सच, क्योंकि जो सच्चाई है वो कड़वी होती है बहन जी, आपको पता है ना।
1: तो बहन जी, करेला चाहे कड़वा होता है पर करेला ही डायबिटीज को मारता है।
0: हाँ, करेला है, नीम है, हालांकि वो कड़वी होती है
1: लेकिन दवाई है वो।
0: क्या कर, दवाई है ना बहन जी, और दवाई तो कैसे मीठा नहीं रहेगा ना।
1: बिल्कुल,
0: दवाई दवाई मीठी नहीं होती है, दवाई तो हमेशा कड़वा होती है, कड़वी
1: तो
0: होती
1: दवाई
0: है
1: बनना ज्यादा अच्छा है बहन जी, बजाय कि झूठ और पाखंड करने के।
0: हाँ हाँ बहन जी, बहुत धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या आपको, शुभ स्वास्थ्य आपको।

0: बताऊं, अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, अभी श्यामा जी ने कहा कि बहुत लोग अपना पैसा भी दे देते हैं, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, देखना चाहिए। पैसा आपने अपनी मेहनत से कमाया है और बच्चे अब घर बना रहे हैं, लोन लेना है, और वे तो उस समय मुंह बना के आ जाते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे बुढ़ापे में? आपको दवा चाहिए, कभी अचानक डॉक्टर चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर भी देखना पड़ता है, कभी भोजन चाहिए, कभी घर में कुछ चीज़ होती है जो बनवानी पड़ती है, टूट फूट है, तो किससे आगे पैर पसार हाथ पसारेंगे आप? जिन हाथों ने जीवन भर दिया वो हाथ कैसे मांगेंगे? तो इसलिए कुछ धनराशि अपने पास रखनी चाहिए, कभी भी सारा सब कुछ नहीं देना चाहिए, बच्चों को योग्य बनाना चाहिए। पैसा देकर हम बच्चों के दुख को कम नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बच्चों को अगर आप योग्य बना दें और वे अपना कमाएं, अपना खर्चा खुद कर सकें, तब बड़ी बात है। क्योंकि बार बार पैसा देने से आपको एक पेंशन मिल रही है, उसको भी पता है पैसा है इनके पास और वो मेहनत कम करेगा, अब उसकी बारी है कि वो खड़ा हो। हम मर जाएंगे उन्हीं का है, हम साथ नहीं लेकर जाएंगे, पर जब तक सांस है तब तक हमको चाहिए ना, रोज़ भोजन भी चाहिए, पानी का बिल भी देना है, बिजली का बिल देना है, कोई नुकसान है, कोई घर आ जाए उसकी सेवा करनी है, तो कौन करेगा ये सब? कभी हम बीमार हैं तो किसी को दो पैसे देकर अपनी सेवा करवा सकते हैं। तो इसलिए पैसा, मैं ये नहीं कहती सब कुछ है, लेकिन आज बार्टर सिस्टम नहीं है, आज पैसे से सब चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो इसलिए बहुत कुछ है वो, तो उसे संभालना, भावनाओं में उतना बहना नहीं चाहिए। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं भाई साहब?
1: मैं बढ़िया हूँ।
0: बहुत अच्छा।
1: और तो आप जानते हैं।
0: जी जी बिल्कुल, ये कठिन वक्त परिवारों में आते ही हैं।
1: हाँ।
0: जी
1: आप तो इसी पर तो आपके संबंध है इस
0: कार्यक्रम का।
1: हाँ,
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी आपने बड़े बड़े घर की बात की, जिस घर में छोटा सा घर,
0: हाँ।
1: हमारे पिताजी, हमारे माताजी ने हम बड़े हुए, ये तो हमारा संसार रहा,
0: और जानते हैं उसमें कितना मजा आता था,
1: बहुत मजा आता है। उसको साफ से रखे, उन्हें जो,
0: हाँ।
1: जो है उसको, अच्छा कुछ नया तो ये जो कुछ ला सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज,
0: ये बदलता रहता है वक्त के साथ।
1: हाँ, लेकिन घर जो है छोटा सा घर, छोटा सा संसार है, एक गीत भी है। और जानते हो बहन जी, मैं कहूँगा जब हम अपने माता पिता के घर को पसंद नहीं करते हैं, बड़े बड़े घर बना कर कभी विदेश भी चले जाते हैं, आज जानते हो हमारे देश में कितने बड़े बड़े घर, महल जैसा
0: खाली पड़े, ताला लगा हुआ है।
1: हाँ, पर कौन उसका इस्तेमाल ही होता नहीं है,
0: और अगर किराए पर देते हैं तो और खतरा है, पूरा घर ही सत्यानाश हो जाता है।
1: पिछले मैंने एक गाना में भी सुना था, बड़े मंजिल, बड़े बड़े मंजिल किस काम की, भाव अंदर नहीं जागे।
0: बिल्कुल,
1: तो घर भी बड़े बड़े घर के भाव अंदर जगाना चाहिए।
0: हाँ।
1: अपने व्यक्तिगत खुशी के लिए माता पिता को मैं क्या कहूंगा, विसार देते हैं।
0: हाँ, सही बोल रहे हैं।
1: मैं ये क्योंकि जानती हूँ ये आजकल के संतान, कभी कभी माँ बाप, जानती हूँ माता पिता पूरी जिंदगी की
0: दे देते हैं,
1: बिना थके
0: करते ही जाते हैं। मैं तो भाई साहब ये कहूंगी, बच्चों को बड़ा करते करते भूल ही जाते हैं कि हमारी जवानी कब चली गई।
1: खुशी ही नहीं, लेकिन
0: पता ही नहीं चलता कब बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफेद होने लग जाते हैं,
1: और ये लोग अपने थोड़ी सी खुशी के लिए, हाँ। माँ बाप को छोड़ देते हैं, जिम्मेदारी भारी लगने लगी। मुझे एक बात याद आती है कि जब हम छोटे तुम संयुक्त परिवार में रहते थे तो माता पिता का बोझ कम हो जाता था।
0: हाँ।
1: कम हो जाता क्योंकि दादा दादी है।
0: हाँ। वही ना, इज्जत दोगे तो प्यार मिलता है ना, आप इज्जत दो बड़ों को तो प्यार मिलेगा।
1: और उस समय का जमाना, उस समय का जो मोहब्बत प्रेम था वो अभी नहीं दिखाई दे, सब लुप्त हो गया है।
0: देखिए हम बहुत सुंदर नवीन भाई ठीक ही कह रहे हैं। अभी तो मैं एक भानुमती नागदान जी की कहानी की भी चर्चा करूंगी आपके फोन के बाद। उसमें एक और समस्या है कि जो वृद्धा दादी है, जब बहू कहती है कि माँ इन बच्चों को मुझे काम है थोड़ा, तो वो क्या कहती है, मैंने बहुत कर लिया, अब मैं तो अपने ओल्ड एज वालों के साथ घूमने जाऊंगी, वहाँ हम

0: देखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये अब तुम्हारा काम है। ये एक और नई समस्या खड़ी हुई पड़ी है देश में।
1: जी नहीं जी, अन्य मैं एक बात कहूंगा, मैं चाहूंगा कि जब एक लड़का शादी करे, मजबूर ने वो जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, माता पिता के साथ ऐसे बहुत लाभ है।
0: हाँ,
1: मुश्किल नहीं होगा बच्चों को पालने के लिए। और एक बात बहन जी, कौन है आपके जो सहयोगी, उनको नमस्कार कहना मैं भूल गया।
0: आपने जो संदेश छोड़ा है ना, वो उस पर लागू होने वाला है। केविश मेरे साथ है और इसी वर्ष उसका विवाह है।
1: सादर सप्रेम नमस्ते।
0: वो भी
1: धन्यवाद बहन जी, शुभ संध्या,
0: नमस्कार,
1: मिलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नवीन भाई, बहुत धन्यवाद। चलिए एक गाना सुनाते हैं, फिर आपसे जुड़ते हैं।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: चलिए हमारे साथ अंतिम श्रोता उनको जोड़ लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ अलका जी।
1: सुनाइए, वक्त भाग रहा है
2: जी। किसी का कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुल्तान जहां माशुक जो थे, सुने हैं पड़े मरघट उनके। जहां चाहने वाले लाखों थे, वहां रोने वाला कोई नहीं। सब दोस्त

0: अपनी मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। जो खूब अकड़ के चलते थे वे आज फिर तुम्हारे मारे, जहाँ फुर्सत बात करने की न थी बतलाने वाला कोई नहीं। सब दोस्त अपनी मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत ही मीनिंगफुल कविता आपने सुनाई, इसके लिए बहुत धन्यवाद और जीवन की शुभ यात्रा। आपका शुभ नाम, नाम शायद कट गया, चलिए अगली बार हम आपको फिर सुनना चाहेंगे। तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कविता बहन जी ने सुनाई और ये कविता सच बात है। देखिए, बच्चे भी माँ बाप स्वस्थ होते हैं, उनका साथ देते हैं, मदद करते हैं तो बहुत इज्जत करते हैं। ज़रा देखते हैं कि माँ बाप ढीले पड़ने लगे तो सेवा में भी कमी होती है, ये सच बात है। संसार अपने सुखों को रोता है, संसार अपने सुखों के लिए जीता है। इस सच को अपनाते हुए हमें भी अधिक भावुक नहीं होना चाहिए। बुढ़ापे के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओहो मेरे बच्चे पूछते नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएं, बीमारियां बटोर लें। अरे, आपको जीना है, आपको कोई भी संस्था ऑप्ट करनी चाहिए ताकि आप व्यस्त रहें। कहीं भजन कीर्तन योग जाना सैर करना, इन सब में अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। केवल बच्चों को धुरी बना के उसी के आसपास नहीं घूमना चाहिए। ये सच बात है कि बच्चे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, सबसे बड़ा प्यार है, हमारे जीन हमारे दिल के टुकड़े हैं। लेकिन हमारा अपना भी जीवन है ना, अपने आप को स्वस्थ रखना ताकि योग इत्यादि करें, आप खाना अच्छे से खाएं, ताज़ा खाना खाएं, ऐसे ही बैठ के गम के आंसू ना बहाते जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, अपने स्वास्थ्य पर हम हर उम्र में ध्यान दें। जो कमियां या जो ध्यान हम उस समय नहीं दे पाए जब बच्चों का निर्माण कर रहे थे, उनको स्कूल छोड़ना, कॉलेज छोड़ना, उनके ट्यूशंस पे ले जाना, उनके लिए सब कार्य करना, उनके लिए शॉपिंग करना, खाना जुटाना, बहुत व्यस्तता थी, होश ही नहीं थी, हम कहाँ हैं। लेकिन आज यदि थोड़ा समय मिला है तो अब अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने ऊपर कार्य करना चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाएं। बच्चे हमारा सहारा ढूंढे, हम इतने मजबूत हों, ना कि हम बच्चों को ढूंढते फिरें, ऐसा हमको मजबूत बनना है। तो श्रोताओं, अपने स्वास्थ्य को, अपने मन को मजबूत करें इस दुनिया का मुकाबला करने के लिए, वो चाहे फिर हमारे अपने बच्चे ही क्यों ना हो। तो चलिए, एक हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं पर शायद अब हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे साथ रोशन जी जुड़ चुके हैं। तो चलिए, मुझे और केविश को अनुमति दीजिए, अगली बार हमारे साथ फिर जुड़िएगा। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: जो चले समय के साथ सफलता आई उन्हीं के हाथ, 5:01 हो गए हैं।
2: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खिलाड़ी
1: प्यारे प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। एक और मुलाकात के लिए हम कब से थे बेताब। गत सप्ताह हम नहीं आए थे, लेकिन भाई संजय जी ने क्या प्रोग्राम किया, उनको दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स आए हैं। वर्ल्ड कप पर उन्होंने सवाल किया और आप लोगों ने क्या खूब जवाब दिया। तो चलिए, 5:02 हो गए हैं। खेल खिलाड़ी प्रोग्राम जो चलता है हर शनिवार की शाम 5 से लेकर 6 बजे तक, और जो पहला भाग होता है सिनेमा दिल से, जहां पर फिल्मों पर गानों पर हम प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से, और जो दूसरा भाग होता है वो है मेरा सवाल तेरा कमाल, जहां पर फुटबॉल कनेसांस जनेरल जिसे कहते हैं सामान्य ज्ञान और स्पोर्ट्स पर हम प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए, पहला भाग शुरू होने ही वाला है और सिनेमा दिल से, और सिनेमा दिल से जहां पर हम आपके लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगे और आपको गाना सुनकर हमें जवाब देना पड़ेगा फिल्म का नाम, अभिनेता या अभिनेत्री। जो आप 2 जवाब दे देते हैं सही सही तो आपको मिलेंगे पूरे 100 अंक और आप बनेंगे स्टार ऑफ द मंथ। और जो गाने हम चलाएंगे वो गाने उन फिल्मों से लिए गए हैं जिन फिल्मों में पहली बार के लिए अभिनेता ने मुख्य रोल निभाया है, अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब हो सकता है कि उन्होंने और फिल्में की होंगी, लेकिन पहली बार के लिए वो मुख्य रोल में नजर आते थे। जैसे मैं अभी चलाऊंगा फिल्म मैंने प्यार किया का गाना, जिस फिल्म में सलमान ने पहली बार के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि इससे पहले बीवी हो तो ऐसी फिल्म में वो नजर आए थे, लेकिन सेकेंडरी रोल में। तो चलिए ये गाना सुनिए और मैं थोड़ी देर में, आप फोन कीजिए 4028085 पर फोन करके ऑन एयर भाग लीजिए, तब हम आपके लिए गाना गाएंगे। तो आप जल्दी जल्दी नंबर मिला दीजिए 4028085 4028085।
4: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: जी हाँ, कबूतर को हम कहेंगे अभी मत जा, अभी तो यहाँ पर रह, क्योंकि अभी खेल हो रहा है और जवाब देकर आप बनेंगे खिलाड़ी। चलिए हम पहले श्रोता से मिलते हैं। हेलो हेलो,
1: हेलो भाजी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो अमृता बहन है।
1: हाँ जी, मैं ही हूँ।
0: मीठी सी आवाज़, उकुले से आ रही है ये आवाज़।
1: जी हाँ।
0: कैसी
1: तो,
0: हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ भाजी, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। और आपने फिल्म मैंने प्यार किया देखी है?
1: हाँ, आप देखी थी?
0: बहुत सुंदर फिल्म थी ना। हाँ जी, तो चलिए आपके लिए गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गाना आप ध्यान से सुने और आपको फिल्म का नाम या फिर अभिनेता या अभिनेत्री का नाम बताना पड़ेगा। दो जवाब देंगी तो आपको पूरे 100 अंक प्राप्त होंगे। ओके
1: ओके,
0: सुनिए। जी हाँ, ना तो मैं पाप करूंगा ना तो मैं आपको सताऊंगा। चलिए सुनिए।

0: करो ये बहती है तो, बहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो। चलिए अमृता बहन जी, सब आप पर निर्भर हैं, अब कोशिश कीजिए। हाँ जी,
1: शायद फिल्म है प्रोफेसर।
0: प्रोफेसर, ओके, आपने प्रोफेसर कहा, ओके। और शमी कपूर, और एक्ट्रेस
1: शायद
0: आशा पारेख। तो चलिए, शमी कपूर आपने ठीक कहा, आपको मिले हैं 50 अंक। प्रोफेसर आपने गलत कहा, वो है फिल्म जंगली। और आशा पारेख आपने सही नहीं बताया, वो है सैरा बानू, जिसकी पहली फिल्म थी जंगली। सैरा बानू की पहली फिल्म जंगली थी। ओके, धन्यवाद आपको, और आप फिर से भाग ले सकती हैं। धन्यवाद,
1: धन्यवाद
0: जी। हाँ, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो चलिए, आप नंबर मिला लीजिए, 4028085। अमृता बहन को प्राप्त हुए हैं 50 अंक। देखते हैं किसको प्राप्त होंगे 100 अंक।

0: जी हाँ, हमको पलकों की छांव में रहने दें। आप श्रोताओं का जो प्यार है ना, बहुत ही अनमोल है और हम कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे श्रोता की ओर। कौन चुनौती स्वीकार करना चाहता है, चलिए उनसे मिलते हैं हम। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते रोशन भैया।
0: नमस्ते, ये तो दक्षिणी प्रांत के मेबर्ग गांव की इंदिरा जी है। मैंने आपको पहचान लिया। कैसी हैं इंदिरा जी? ठीक है,
1: ठीक है, हाँ, ठीक है।
0: और आपके परिवार सब ठीक?
1: सब ठीक, कुशल मंगल है।
0: ओके, इंदिरा जी आपके लिए अगला गाना है, जरा गौर से सुने आप और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये किस फिल्म का गाना है और ये किस अभिनेता पर फिल्माया गया है या अभिनेत्री पर। ओके, बहुत बहुत ही आसान है। ओके
1: ओके। मुझे तुमसे मोहब्बत हो।
0: तो सुनिए, पहले मैं समझा

0: तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है। चलिए इंदिरा जी बताइए कौन सा जवाब है। बताइए फिल्म का नाम क्या हो सकता है। किरण कुमार एक्टर का नाम है। ओके वेरी गुड। और एक्ट्रेस का नाम क्या हो सकता है।
1: राजश्री
0: और किरण कुमार। फिल्म का नाम पता है आपको। नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिल्म का नाम आपको पता नहीं। फिल्म का नाम है रॉकी। ओके और अभिनेत्री का नाम है टीना मुनिम। राजश्री नहीं और अभिनेता का नाम किरण कुमार नहीं है। वो है संजय दत्त, जिसकी पहली फिल्म थी जहां पर उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। ओके नो प्रॉब्लम, बाय बाय,
1: कोई बात है, ओके बाय, शुभ रात्रि।

0: बोलो बोलो ना।
1: हाँ यही प्यार है।
2: जी हाँ, आप लोगों का प्यार, आप भाग ले रहे हैं इस प्रोग्राम में, सही जवाब दे रहे हैं और प्यार बरसा रहे हैं, यही तो प्यार है। और इसके बिना

0: हम कैसे जी पाएंगे यहाँ पर। चलिए अब हम मुलाकात करते हैं अगले श्रोता के साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते बेटा जी।
0: नमस्ते, ये तो जीवंती जी हैं फ्रॉम बेलवेदिया
1: जी।
0: कैसी हैं जीवंती जी, ठीक है
1: जी?
0: हाँ जी बिल्कुल। और आप दरी दरी सी, सहमी सहमी सी नजर आ रही हैं। नहीं जी,
1: बीमार हूँ।
0: ओ बीमार है, लेकिन कोई
1: आवाज सुन के मुझे बहुत
0: अच्छा, आवाज सुनकर आपको डर लग रहा है?
1: नहीं, बहुत अच्छे लग रहा है।
0: ओ अच्छा लग रहा है आपको, बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू जीवंती जी। तो चलिए आपके लिए गाना हम अभी प्रस्तुत करेंगे, सुनिए और पहचानिए ये किस फिल्म का गाना हो सकता है, इसमें अभिनेता कौन और अभिनेत्री कौन, इतना आसान है। ओके, तो चलिए आपके लिए गाना चल पड़ा।
2: हाँ यही प्यार है।
0: ये वाला तो रॉकी का गाना है, तो चलिए सुनिए। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर नहीं हूँ जीवंती जी, मैं रोशन हूँ। चलिए जीवंती जी बताइए फिल्म का नाम क्या हो सकता है। अरे वाह, क्या बात है बॉबी। आपको 50 अंक प्राप्त हो गए हैं। ऋषि कपूर। और अभिनेत्री कौन?
1: अभी याद थी उसके नाम।
0: अभी याद थी, अभी याद आया उसका नाम लेकिन भूल गई
1: जी।
0: डिंपल।
1: डिंपल कपाड़िया।
0: डिंपल कपाड़िया, लेकिन आपने दो सही जवाब दिए हैं और आप बन गए स्टॉप द मंथ। आपको मिल गए हैं 100 अंक, क्या बात है, बहुत ही धन्यवाद जीवंती जी। ऐसे ही आप भाग ले सकती हैं और लेती रहिएगा। ओके,
1: बहुत धन्यवाद, इसमें प्रोग्राम करते रहेगी,
0: क्यों नहीं करते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद आपको, बाय बाय, शुभ रात्रि। चलिए 4028085 पर फोन करके आप भाग ले सकते हैं, दिलचस्प कार्यक्रम है केवल आप लोगों के नाम।

0: जी हाँ, आपसे दुश्मनी क्यों, आपसे दोस्ती निभाने का जी कर रहा है, क्यों दुश्मन की हम चर्चा करें यहाँ पर। चलिए अब हम मिलते हैं अगले श्रोता के साथ, देखते हैं कि कौन कितनी तैयारी के साथ आया है। हेलो।
1: नमस्ते रूपन जी।
0: नमस्ते। हंसती हुई मुस्कुराती हुई देवी जी हाईलैंड से, कैसी हैं आप?
1: ठीक है।
0: ठीक है, बिल्कुल। तो आप तैयार हैं?
1: हाँ तैयार है।
0: अच्छा, सुनिएगा। फिल्म का नाम, अभिनेता और अभिनेत्री। ओके, दो
1: हाँ
0: जवाब सही देंगी तो पूरे 100 अंक प्राप्त होंगे, जैसे जीवंती जी को प्राप्त हो गए
1: हाँ
0: हैं।
1: जी
0: अभी तो वो स्टॉप
1: हाँ
0: द मंथ बन गई है। चलिए, आपका गाना इस प्रकार है। तो चलिए, आपका गाना इस प्रकार है।

0: पास। चलिए
1: की
0: देवी जी, आप तो हंस रही हैं, लगता है कि आपको पता चल गया कि कौन सी फिल्म है
1: ये
0: ये।
1: गाना कहाँ भूल सकते हैं
0: अरे
1: जी,
0: वाह क्या बात,
1: भूले से भी नहीं भूलेंगे।
0: बहुत सदाबहार गाना है ये तो।
1: आशिकी है,
0: आशिकी,
1: आशिकी और राहुल रॉय जी है,
0: राहुल
1: और
0: रॉय,
1: अनु अग्रवाल।
0: क्या बात है, तीनों के तीनों जवाब आपने सही सही दिए, और आपको भी मिलते हैं 100 अंक। आप भी बनते हैं स्टार ऑफ द वीक,
1: और पहले
0: स्टार
1: के
0: ऑफ द
1: तीन
0: मंथ।
1: तीन जवाब भी
0: हाँ
1: बहुत आसान थे।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: रॉकी वाला वो
0: हाँ
1: सब,
0: वो भी आसान था, लेकिन
1: रॉकी
0: हम,
1: बॉबी।
0: हाँ क्योंकि आप ऑन एयर भाग ले रहे हैं, इतना ज़्यादा कठिन आपके लिए हमने नहीं रखेंगे, है ना। आप लोगों को खुश करने में
1: थैंक यू।
0: मुझे बहुत ही
1: हाँ
0: अच्छा लगता है।
1: अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद भाई।
0: चलिए आप ऐसे ही भाग लेती रहें। बाय
1: ओके,
0: बाय,
1: शुभ संध्या, हैप्पी
0: शुभ संध्या आपको
1: वीकेंड,
0: भी, हैप्पी वीकेंड,
1: बाय।
0: बाय।

0: जी हाँ, नज़र के सामने और दिल के पास आप लोग भी रहते हैं। आप अगर इस प्रोग्राम में भाग नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? 4028085 पर अब हम देखते हैं कि लाइन पर कौन है विराजमान। हेलो
1: रोशन जी को और समस्त श्रोताओं को आशा जानू की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
0: आशा जानू जी कॉटेज से आप हमसे संबोधित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा भाग लेती रहती हैं और खासकर इस विषय जब ये विषय चलता है तो आप अब उपस्थित हो जाती हैं।
1: अब क्या करें रोशन जी, आपका कार्यक्रम ही इतना शानदार होता है कि हम अपने आप को रोक भी नहीं पाते।
0: बहुत धन्यवाद इस बहुत ही स्नेह और प्यार के लिए। तो चलिए आशा जी के लिए एक बहुत ही कठिन सा गाना हम आपके लिए बजाएंगे। ओके, हम जानते हैं कठिन से कठिन को आप आसान कैसे बना लेती हैं, मुझे पता है। चलिए सुनिए। ओके

0: बताइए आशा जी, कौन सा गाना है ये?
1: हम आपके प्रोग्राम में भाग लेंगे कयामत से कयामत तक,
0: बाप रे
1: और
0: बाप,
1: जूही चावला और आमिर खान के फैन रहेंगे सदा सदा तक।
0: वाह क्या बात है, कयामत से कयामत तक। बहुत अच्छा, 50 अंक आपके लिए आमिर खान और जूही चावला, और 50 अंक और आपको मिल गए हैं, पूरे 100 अंक आशा जी, और आप भी बनती हैं स्टॉप द मंथ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऐसे ही आप भाग लेती रहें। ओके धन्यवाद, बाय
1: धन्यवाद,
0: बाय।
1: बाय।
0: कयामत से कयामत तक फिल्म का गाना है, एक और श्रोता को हम मौका देंगे, 4028085 पर फोन करें और ऑन एयर यहां पर भाग लें, चुनौती को आप स्वीकार करें।

0: क़यामत से क़यामत तक फिल्म का गाना बहुत ही रोमांटिक सा गाना है। चलिए अब हम मुलाकात करते हैं इस सेगमेंट के आखिरी श्रोता के साथ। हेलो,
1: नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते, ये तो शोभा जी हैं फ्रॉम बाकवा।
1: जी हाँ,
0: कैसी हैं आप शोभा जी?
1: मैं ठीक हूँ रोशन जी, और आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं, आप लोगों की दुआ है। परिवार सब ठीक है, बहुत धन्यवाद शोभा जी। चलिए आपके लिए गाना चढ़ पड़ा, आप तैयार तो है ना?
1: जी हाँ।
0: ओके, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, फिल्म का नाम, अभिनेता और अभिनेत्री का नाम। दो जवाब सही होंगे तो पूरे 100 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। ओके, और आपका जवाब, आपका गाना इस प्रकार है, सुनिएगा बहुत ध्यान से।
2: मेरा जो

0: बताइए कौन सी फिल्म है ये? चलिए,
1: फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।
0: एक दूजे के लिए। बहुत अच्छा, 50 अंक। और
1: एक्टर हैं कमल हसन।
0: वेरी गुड। और एक्ट्रेस? कमल हसन और रति अग्निहोत्री। बिल्कुल 100 अंक आपको भी प्राप्त हो गए हैं और आप भी बनती हैं स्टार ऑफ द मंथ, जीवंती जी की तरह, देवी जी की तरह, आशा जी की तरह। बहुत धन्यवाद आपको। बाय
1: बाय
0: बाय। शुभ संध्या। थोड़ी देर में आपके लिए दूसरा भाग, मेरा सवाल तेरा कमाल, जहां पर फुटबॉल, स्पोर्ट्स और सामान्य ज्ञान पर हम प्रश्न अवश्य आपसे पूछेंगे गानों के साथ।

0: 5:34 मिनट हो गए हैं और बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर.
1: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxis.
2: खेल खिलाड़ी. खेल खिलाड़ी. खिलाड़ी.
0: जी हाँ प्यारे प्यारे श्रोताओं, संगीत प्रेमियों और खेलकूद लवर्स, खेल खिलाड़ी के बल आप लोगों के नाम. बहुत ही दिलचस्प सा खेल चल रहा है और आप सही जवाब देकर बन रहे हैं पक्का खिलाड़ी. चलिए दूसरे भाग को हम शुरू करते हैं. और बेशक फुटबॉल के साथ वर्ल्ड कप तो समाप्त हो गया है, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग

0: और बाकी सारी जो यूरोपियन चैंपियनशिप्स हैं वो अभी शुरू होने ही वाले हैं। और प्रीमियर लीग की घारी चालू हो जाएगी 21 अगस्त को और आर्सेनल टक्कर लेगी न्यूली प्रमोटेड टीम कोवेंट्री सिटी के साथ। लेकिन उससे पूर्व, एक सप्ताह पूर्व, जैसे कि ट्रेडिशनल FA कम्युनिटी शील्ड खेला जाता है हर साल, तो इस साल भी 2026 में ये FA कम्युनिटी शील्ड खेला जाएगा, जो गत बार जो चैंपियंस बने थे और जो FA कप विनर्स थे, इन दोनों के बीच में टक्कर होने वाली है FA कम्युनिटी शील्ड कप के दौरान। और ये खेला जाएगा 16 अगस्त को, यानी इसी महीने को। और आपको हमें बताना पड़ेगा कि किन दो टीमों के बीच में ये मैच खेला जाएगा FA कम्युनिटी शील्ड, एक सप्ताह पूर्व इंग्लिश प्रीमियर लीग के शुरू होने से पूर्व, किन दोनों टीम्स के बीच ये FA कम्युनिटी शील्ड खेला जाएगा। 4028085 पर बेशक आप लोग जवाब दें।
1: 819 kHz. This is Radio Marches. Radio Marches.

0: जी हाँ, आज की रात क्या होने वाली है ये तो बाद में पता चलेगा। चलिए अब हम मुलाकात करते हैं पहले श्रोता के साथ, और आपको याद दिला दें कि इस सेगमेंट में भी आप ऑन एयर हैं और आपको दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो मैंने पूछ लिया है आपसे और दूसरा प्रश्न ऑन स्पॉट हम आपसे पूछेंगे। चलिए हम स्वागत करते हैं पहले श्रोता का इस सेगमेंट में। हेलो,
1: हेलो रोशन भाई, नमस्ते।
0: नमस्ते भाई विजय जी, कैसे हो?
1: ठीक हो तू? आप ठीक हो ना?
0: हम भी ठीक हैं। सेबास्तोपोल से हमने के याद करत हुआ।
1: हाँ, क्लाविट क्लाविट
0: क्लाविट सेबास्तोपोल से आप याद कर रहे हैं। कैसे हैं आप भाई जी?
1: हाँ ठीक है, आप ठीक है ना?
0: हम भी ठीक हैं जी, बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आपका जवाब जानना चाहते हैं कि FA कम्युनिटी शील्ड 2026 किन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा 16 अगस्त को?
1: आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी।
0: आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी, क्यों?
1: इसे कब के विजेता है?
0: हाँ बिल्कुल, चैंपियन है चैंपियंस आर्सेनल और FA कप विनर मैनचेस्टर सिटी, और आपको मिले हैं 50 अंक। चलिए आपके लिए दूसरा प्रश्न है, अगर आप इसे पता चल जाएगा आपको तो आपको पूरे 100 अंक प्राप्त हो जाएंगे और आप बनेंगे खिलाड़ी ऑफ द मंथ। ओके भाई विजय,
1: कोशिश करेंगे
0: बिल्कुल। तो चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए इस प्रकार है, जैसे हम मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ियों को कहते हैं द सिटीजन्स, है ना? जैसे लिवरपूल के खिलाड़ियों को कहते हैं द रेड्स, वैसे ही आर्सेनल के खिलाड़ियों को हम क्या कहेंगे बताइए तो?
1: गनर्स,
0: द गनर्स। और आपने सही सही जवाब दिया और आप बनते हैं फर्स्ट खिलाड़ी ऑफ द मंथ। बहुत धन्यवाद आपको। बाय।
1: धन्यवाद भाई आपको। शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

चलिए विजय भाई ने तो दो सही जवाब दिए हैं, और सही सही जवाबों का हम क्या करें, उन्हें 100 अंक तो देंगे। चलिए हम दूसरा प्रश्न तुरंत आपके लिए हम चलाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे, ताकि आपको मौका मिले जवाब देने के लिए। वर्ल्ड कप 2026 तो समाप्त हो गया है और पहले स्थान पर आए हैं स्पेन, यानी स्पेन इज द चैम्पियंस। 4 सालों तक वो चैंपियंस बनी रहेगी स्पेन की टीम। दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना द रनर अप, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड, फ्रांस को हरा दिया था मैच फॉर द थर्ड प्लेस के दौरान, चौथे स्थान पर फ्रांस। तो आप हमें बताइए कि फीफा रैंकिंग के मुताबिक, वर्ल्ड कप रैंकिंग के मुताबिक 5वें स्थान पर कौन सी टीम आई है? 4028085 पर ऑन एयर जवाब दीजिए कि 5वें स्थान पर फीफा के मुताबिक कौन सी टीम आई है वर्ल्ड कप के दौरान। 4028085 4028085 पर जवाब दें।

0: जी हाँ, तड़पने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप खेल रहे हैं और मजा भी ले रहे हैं। चलिए अब हम मिलते हैं अगले श्रोता से। हेलो।
1: हेलो।
0: हेलो, हाँ जी नमस्ते। ये तो दिला भाई है,
1: हाँ,
0: मौलाशो से बात करत हुआ।
1: मौलाशो से बात कर रहे थे और उस सब छोटा लोग के नमस्ते कर रहे थे।
0: हाँ
1: और वह
0: दिला जी,
1: पोगामा बहुत नरम और गरम ऐसे रेशों बाबू
0: बहुत धन्यवाद भाई दिला जी,
1: समझ
0: हमेशा
1: दो
0: भाग
1: भाई।
0: लेते रहते हैं आप।
1: सब छोटा लोग से मिल के सब एगो बहुत जबरदस्त अच्छी हो जाता है खेलुआ।
0: अच्छा, बहुत धन्यवाद दिला
1: सब एगो
0: जी।
1: लेकिप है, टीम टीम
0: हाँ
1: एगो
0: जी
1: टीम
0: बिल्कुल, एगो
1: और
0: फैमिली की तरह, एगो परिवार की तरह, खेल खिलाड़ी परिवार।
1: और मोहिशा लोग बहुत खुशी रहता बहुत ऐसे रेशों में ना।
0: हाँ जी बिल्कुल। तब बोला भाई दिला जी, कौन जवाब देबा?
1: तहयती अर्लिन हालन के नॉवेल्स
0: हाँ जी, नोवेज, यानी नोवे
1: नॉवेल।
0: इज द राइट आंसर।
1: हाँ
0: बहुत अच्छा, और आपको मिले हैं 50 अंक, 50 पॉइंट्स।
1: हाँ
0: अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, नोवे
1: हाँ
0: का जो खिलाड़ी है जिसने 7 गोल स्कोर किए हैं वर्ल्ड कप में, 7 गोल, वो कौन है नोवे का खिलाड़ी?
1: अर्लिन हालन।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: एर्लिंग हालैंड, और
1: ओकर
0: आपको मिले हैं 100 अंक।
1: हाँ
0: क्या बात
1: ओकर
0: है।
1: बपुत एगो गांव फुटबॉलर रहल
0: हाँ जी, अल्फ इंच हालैंड जो
1: भाई
0: इस,
1: बेटा धरल अभी ले अभी
0: हाँ
1: 200 300 400 मिलियन पर ओकर अभी अच्छी दल वन सा ओकर लाखों।
0: बहुत अच्छा,
1: हाँ
0: तो
1: एगो बड़ा
0: बहुत,
1: बहुत बढ़िया जो है हम एगो
0: हाँ
1: आदमी आते हैं ओकरा
0: बहुत
1: खुशी
0: अच्छा,
1: रहेगा।
0: बहुत बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं वो। ओके, धन्यवाद भाई दिला जी, ऐसे ही भाग लेते रहें। ओके धन्यवाद,
1: हाँ सब छोटा लोग के नमस्ते करते।
0: नमस्ते। हाँ जी, अर्लिंग हालैंड, उन्होंने ही ब्राजील को घर भेजा था, और क्वार्टर फाइनल के दौरान

ब्राजील कुछ नहीं कर पाया नॉर्वे के खिलाफ और फीफा रैंकिंग के अनुसार पांचवें स्थान पर नॉर्वे द डार्क हॉर्स, यही सही जवाब है जो दिला भाई ने दिया है। और अर्लिंग हालैंड 7 गोलों के साथ तीसरे स्थान पर जूड बेलिंगहम के साथ, और दूसरे स्थान पर द वन एंड ओनली लियोनेल मेसी, और पहले स्थान पर नॉन अदर दैन किलियान बापे 10 गोलों के साथ। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। आज है 1 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम बात करेंगे, और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ WWW। ये एक अब्रिविएशन है, व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर, इसका अर्थ क्या है। आज है इंटरनेशनल WWW डे, तो WWW का क्या अर्थ है। 402-808-5 402-80-85।

0: गदर टू का गाना है, बड़ा ही हेलो। हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: हाँ जी आपका स्वागत है बहन जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं दीपा बोल रही हूँ कौतुगल से।
0: कौतुगल से दीपा जी का हम यहाँ पर शानदार स्वागत करते हैं खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में। कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: हमेशा आप भाग लेती रहती हैं दीपा जी।
1: जी
0: चलिए आप हमें बताइए कि आज है 1st of August, पहली तारीख है आज इस महीने का की पहली तारीख, और आज है इंटरनेशनल WWWD, इसका क्या अर्थ है दीपा जी बताइए?
1: वर्ल्ड वाइड,
0: हाँ वर्ल्ड वाइड वेब डे, आपने ये कहा।
1: हाँ।
0: विश्वव्यापी वेब दिवस है ना, जाल दिवस, और आपका जवाब एकदम सही है। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका आविष्कार किसने किया था आपको पता है? इन्वेंशन किसने की थी? नहीं पता?
1: नहीं।
0: टिम बर्नर्ली जो एक इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था 1989 में। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, जिसके ज़रिए आप इमेजेस देख सकते हैं, टेक्स्ट पढ़ सकते हैं या वीडियोस भी आप देख सकते हैं, है ना। और इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में अंतर है, लोग कहते हैं कि ये एक ही चीज़ है। नहीं, इंटरनेट तो एक सड़क की तरह है और वर्ल्ड वाइड वेब एक व्हीकल की तरह है। इंटरनेट एक पूरा नेटवर्क है इस दुनिया में, है ना। चलिए ये रहा आपका पहला जवाब जो एकदम सही है और आपको मिले हैं 50 अंक दीपा जी, क्या बात है। चलिए दूसरा सवाल आपके लिए, आज है 1st of August है ना, और आज भी है स्विस नेशनल डे, जो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय दिवस है वो आज है। ओके, तो आप हमें बताइए कि स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड दीपा जी? हाँ जी बताइए। कौन सी राजधानी है, क्या है उसका नाम, जल्दी जल्दी सोच के बताइए दीपा जी। हम जानते हैं कि आप दिमाग लड़ाने में माहिर हैं।
1: बर्न।
0: बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। और आपका दूसरा जवाब भी एकदम सही निकला, यानी आपको मिले हैं पूरे 100 अंक, बनते हैं आप खिलाड़ी ऑफ द मंथ दिला जी की तरह और विजय भाई।

0: की तरह। ऐसे ही आप भाग लेती रहें। धन्यवाद आपको, बाय बाय। ओके, आप तो बहुत खुश हो गई। आपको लगता है कि खुशियां बटोरना होगा। ओके, बाय बाय
1: बाय।

चलिए एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, और कॉमनवेल्थ गेम्स अभी चल रहा है 2026 और आप रोज रेडियो पर सुन रहे हैं, स्पोर्ट्स बुलेटिन में सुनाई दे रहा है आपको कि मॉरिशस को मेडल प्राप्त हुए हैं, तो आप हमें बताइए जल्दी जल्दी कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 किस देश में ये लग रहा है, और कल इसका आखिरी दिन है। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 है ये किस देश में आयोजित हुआ है, 4028085, और खुशियों को आपको बटोरना ही पड़ेगा, बटोरनी पड़ेगी।

0: जी हाँ, ये रेडियो मॉरिशस का सफ़र है और आप लोगों से दूरी हम तनिक भी बनानी नहीं चाहिए हमें। चलिए हम मिलते हैं अगले श्रोता से। हेलो।
1: हेलो रोशन जी।
0: नमस्ते, वाक्वा के नीला जी।
1: हाँ जी।
0: कैसी हैं नीला जी?
1: हाँ जी,
0: हाँ
1: ठीक, अच्छी
0: हैं आप? मैं भी अच्छा हूँ। और इस प्रोग्राम में आप लोगों को अच्छा ही होना चाहिए, स्वस्थ व तंदुरुस्त, क्योंकि इस प्रोग्राम के दौरान आपको दिमागी कसरत करने का मौका मिलता है ना? तो चलिए नीला जी, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 किस देश में ये आयोजित हुए? क्या? हाँ जी, स्कॉटलैंड में, और जो जहाँ पर शहर का नाम है ग्लासगो। क्या बात है, बहुत ही धन्यवाद आपको, मिले हैं आपको 50 अंक, क्या बात है। तो चलिए अब आपके लिए दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, और इस अब तक इस गेम में केवल 2 मेडल्स मॉरिशस को प्राप्त हुए हैं। जो ब्रॉन्ज मेडल है वो बॉक्सिंग में मेयावें क्रेया को प्राप्त हुआ है, ओके। और जो सिल्वर मेडल है वो पारा एथलेटिक्स में व्हीलचेयर रेस में किसको प्राप्त हुआ है, हमें बताइए। तो जो चांदी का पदक है, सिल्वर मेडल, वो किस महिला को प्राप्त हुआ है, महिला वर्ग में किस एथलीट को, पारा एथलीट को प्राप्त हुआ है, जो व्हीलचेयर रेस में 1500 मीटर, हाँ व्हीलचेयर रेस में किस से आप बात कर रही हैं नीला जी? हमसे बात कीजिए। कुमा पिल्सा चिफिला है। बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नोएमी अल्फोंस। हाँ जी, क्या बात है नीला जी, आपको मिले हैं पूरे 100 अंक और आप भी बनते हैं स्टार ऑफ द मंथ। धन्यवाद आपको नीला जी, पहली बार के लिए, लेकिन हर चीज के लिए एक पहली बार तो होती ही रहती है ना? अब हर सप्ताह आपकी जीत होगी, मैं जानता हूँ। धन्यवाद नीला जी, फिर से मुलाकात होगी, बाय, शुभ रात्रि आपको, बाय। तो ये थी नीला जी फ्रॉम वाक्वा, और उन्होंने सही सही जवाब दिया। नोएमी अल्फोंस जो है उसको प्राप्त हुए हैं सिल्वर मेडल, और जो पारा एथलेटिक्स का जो व्हील चेयर रेस है और महिला वर्ग में उन्हें प्राप्त हुआ है। चलिए आज हम देखते हैं सेड्रिक गावे को ये पदक प्राप्त होगा आज या नहीं। वो अभी व्हीलचेयर रेस मैन जो पुरुष वर्ग में है वो भी भाग ले रहे हैं आज, और कल इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो हम कहेंगे आले मॉरिस, लॉन्ग लिव मॉरिशस, मॉरिशस की जय हो। और इसी के साथ हम आपसे यहाँ पर अनुमति चाहेंगे, आप ऐसे ही भाग लेते रहें, खेल खिलाड़ी में आप भाग लेते

करते रहें, लेकिन वादा कीजिए कि हमेशा आप व्यायाम करते रहेंगे, फिट और फाइन आप रहेंगे और आप शाइन करेंगे जीवन में। इसी बात पर नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि। ठीक 6 बजे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार आप सुनेंगे। रेडियो मॉरिशस के साथ आप जुटे रहें। जो बोले सो भय। MBC रेडियो की जय।

0: शाम के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कल रात राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलियनियस बिल सुधार के साथ पारित। इन दोनों विधेयकों के पारित होने से अब बजट तक कदम अमल में लाए जा सकेंगे। राष्ट्रपति दफ्तर ने कम्युनिके के जरिए घोषित किया कि जॉन सिडनेपिया को पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मंत्री पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया गया। सरकार साल के अंत से पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल 2026 को पारित कराने की योजना बना रही है। ये नया विधेयक 28 वर्ष पुराने कानून की जगह लेगा। विदेश में फेफड़ों के कैंसर के सबसे आक्रामक रूपों में से एक के इलाज के लिए चीन में विकसित की गई एक इम्यूनोथेरेपी अब इंग्लैंड की NHS में उपलब्ध है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार अब विस्तार से। कल रात राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलियनियस बिल सुधार के साथ पारित किया गया। इन दोनों विधेयकों के पारित होने से अब बजट 2026-2027 के कदम अमल में लाए जा सकेंगे। बजट कदमों को कानूनी मान्यता देने वाले दोनों विधेयकों पर अपने समिंगअप में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित सुधारों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को गति देना तथा मॉरिशस को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उनको सुनते हैं।
1: फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल पर अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य सरकारी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये दोनों विधेयक एक ऐसी आधुनिक, निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार वित्तीय तथा नियामक व्यवस्था स्थापित करने के बारे में हैं, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, कमजोर वर्ग की रक्षा करेगी और साथ ही मॉरिशस की एक स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी। ये दोनों विधेयक केवल कानून में तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि ये सुशासन और वित्तीय प्रबंधन के प्रति हमारी सोच में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। हम ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो पहले अक्सर केवल कुछ लोगों के हितों की सेवा करती थी। अब हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो पूरे समाज, कर्मचारियों, व्यापार जगत और आने वाली पीढ़ियों सभी के हित का ध्यान रखेगी। उनके संबोधन का मुख्य केंद्र पेंशन व्यवस्था में सुधार रहा। डॉ. नवीन रामगुलाम ने महंगाई के आधार पर हर साल होने वाले पेंशन समायोजन और मीन्स टेस्ट को समाप्त करने का उल्लेख किया। उन्होंने कठिन और शारीरिक रूप से मेहनत वाले काम करने वाले कर्मचारियों को ये भरोसा भी दिलाया कि यदि वे चाहें तो उन्हें 60 साल की आयु से ही पेंशन मिल सकेगी। जब हमने हो सकता है शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका कारण ये है कि ये महंगाई के आधार पर तय होने वाली दर पर निर्भर करेगा। इस समय हम कोई निश्चित राशि नहीं बता सकते। हमने हमेशा ये फैसला किया है कि महंगाई के अनुसार आवश्यक एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। जहां तक मीन्स टेस्ट को समाप्त करने की बात है, इसकी अतिरिक्त लागत 6.2 बिलियन रुपए होगी। ये धन हमें कहीं न कहीं से जुटाना पड़ेगा। अगर हम जरूरी कदम नहीं उठाते और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार नहीं करते तो ये व्यवस्था सफल नहीं हो पाएगी। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने ये भी याद दिलाया कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई तथा यूक्रेन में जारी युद्ध का मॉरिशस की अर्थव्यवस्था पर अभी भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
0: डॉक्टर नवीन रामगुलाम के अनुसार सरकार ने जनता के हित में कठित और साहसिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि परचेसिंग पावर शील्ड योजना पहले ही प्रभावी साबित हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप दैनिक उपभोग की 19 श्रेणियों के उत्पाद की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने मीठे उत्पादों पर लगाए गए कर का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार ये कदम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: वित्तीय साल 2026-2027 के बजट में जनता की प्रमुख मांगों को ध्यान में रखा गया है। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कहा कि लोगों की खरीद शक्ति में आई कमी के प्रभाव को कम करने के लिए परचेसिंग पावर शील्ड शुरू किया गया है।

0: फिलहाल हम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में फिर से 2 बिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड की स्थापना के बाद से हम 19 प्रमुख उपभोक्ता सामानों की श्रेणियों की कीमतें कम करने में सफल रहे हैं। इस योजना के तहत 2400 वस्तुएं शामिल हैं, जिनका उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री ने चीनी वाले उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त कर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में मधुमेह के मामलों की अधिकता को देखते हुए ये फैसला जनता के हित में लिया गया है। जब किसी व्यक्ति का अंग काटना पड़ता है या कोई लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती रहता है या किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसका खर्च कौन उठाता है? इसका खर्च करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से पूरा किया जाता है। चाहे कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता हो या नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च सभी करदाताओं को चुकाना पड़ता है। इसलिए पूरे समाज को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य और पेय पदार्थों पर होने वाले खर्च का बोझ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा की लागत आखिरकार टैक्स पेयरों के धन से ही पूरी होती है। हम लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं। उन्हें जितना चाहे उतनी चीनी खाने या मीठा पेय पदार्थ पीने का अधिकार है, लेकिन उस पर लगाया गया कर उन्हें स्वयं देना होगा। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित 500 से ज्यादा कदमों को मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के तहत ही लागू किया जा सकता है।
1: बजट कदमों को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले दोनों विधेयकों पर बोलते हुए वित्तीय सेवा मंत्री ज्योति जितन ने राष्ट्रीय फिनटेक रणनीति नेशनल फिनटेक स्ट्रैटेजी पर विशेष जोर दिया। रोड्रिग्स के सांसद फ्रांसिस्को फ्रांसवा ने मांग की कि 12 अक्टूबर को रोड्रिग्स डे घोषित किया जाए और उस दिन को पब्लिक हॉलीडे घोषित किया जाए। विपक्ष के सांसद चेतन बाबूलाल ने कहा कि पेंशन प्रणाली में मींस टेस्ट रद्द किए जाने के बाद होने वाले घाटे की भरपाई के लिए सरकार अब तक कोई ठोस समाधान नहीं खोज पाई है। मंत्री अशोक सुभों के अनुसार ये सुधार एक प्रगतिशील पेंशन प्रणाली की नींव रखता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड को विधेयक में शामिल नहीं किया गया है, ताकि इससे संबंधित सभी पक्षों के साथ उचित परामर्श किए जा सके। पल बेहौशे ने पेंशन सुधार शुरू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ सलाह मशवरे नहीं किए जाने पर खेद जताया। मंत्री शकील मोहम्मद ने मुख्य रूप से बैंकिंग एक्ट और वक्फ एक्ट में किए गए सुधारों पर बात की। राष्ट्रपति दफ्तर ने कम्युनिके के जरिए घोषित किया कि जॉन्सिड नेपिया को पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मंत्री पद से राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया गया है। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह पर यह निर्णय लिया है। बजट में घोषित प्रिसिशन फार्मिंग स्कीम की धारणा आकार ले रही है। इस सहायता योजना का मकसद है आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर स्मार्ट खेती प्रोत्साहित करना, ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत हो। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद के लिए डीबीएम के जरिए रियायती दरों पर लोन और फारे की तरफ से जरूरी तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: लिस्कालिया स्थित ये ग्रीन हाउस पिछले एक साल से कुछ ज्यादा समय से काम कर रहा है। इसके मालिक बिरजू राव जी अब अपने कृषि कार्यों को आधुनिक बनाने की योजना बना रहे हैं। इसी उद्देश्य से फागे के एक अधिकारी ने उनके ग्रीन हाउस का दौरा किया। जैसा कि बजट में घोषित किया गया था, कृषि उद्योग मंत्रालय जल्द ही प्रेसिजन फार्मिंग स्कीम शुरू करेगा। ये एक सहायता योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक और सटीक कृषि तकनीक अपनाने में मदद करना है। फागे में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट अमुदालिंगम एलापेन कहते हैं, इस स्कीम से खेतीहरों को टेक्नोलॉजी में निवेश करने में मदद मिलेगी। अपने ग्रीन हाउस में इन्हें शामिल कर सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। इन टेक्नोलॉजियों में भारी निवेश करना पड़ता है। फागे का उद्देश्य है खेतीहरों की मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनके लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी उचित रहेगी, आज कामगारों की समस्या है, किस तरह पैदावार बढ़ा सकते हैं और कामगारों की संख्या कम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में निवेश करने से ऐसा किया जा सकता है। इस स्कीम में हम 50% रकम देंगे, खेतीहर 50% लगाएगा।
2: c'est évidemment en investissant dans la technologie. Nous pouvons finaliser les paramètres dans cette scheme-là pour subventionner à 50% planter.

0: la mettre 50% sur l'argent.
1: विरजू राव जी इस योजना के योग्य हैं। इसके तहत उन्हें अपने ग्रीन हाउस के लिए आधुनिक प्रेसिजन फार्मिंग उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। वे कहते हैं, आधुनिकीकरण लाने के लिए इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे उपकरण हैं जो रिमोट से चलते हैं, सिंचाई प्रणाली पर नियंत्रण रख सकते हैं।
2: Et vous êtes capable de contrôler le système d'irrigation, ou capable, si vous trouvez un problème, une issue avec vos bonnes plantes, vous êtes capable de régler le problème avec, à distance, c'est-à-dire.
0: Comment nous capable d'investir, c'est investir dans la serre qui est en ouvrant, qui est automatisée, comment à une certaine température, la serre-là ouvert en haut, il n'y a pas question de salaire-là.
1: En Moudalinga, mais la peine qu'elle dit, ainsi greenhouse mais n'investir que ce qui est automated, ou parce que c'est ouvert. ये सभी प्रेसिजन फार्मिंग स्कीम में शामिल होंगे। जो व्यक्ति अपने खुले खेत में निवेश करना चाहता है, जमीन के तापमान की जांच करना चाहता है या नमी की, कब सिंचाई करना चाहिए, ये सभी प्रेसिजन फार्मिंग स्कीम में शामिल होंगे। विरजू राव जी अपने ग्रीन हाउस में दो तरह की फसलें उगाते हैं, जिनमें खीरा भी शामिल है। अपने पहले ग्रीन हाउस में उन्होंने तापमान को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए पहले ही एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है। प्रेसिजन फार्मिंग स्कीम की मदद से वे अपनी पैदावार को और बेहतर बना सकेंगे और इस तरह देश की खाद्य आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में भी योगदान देंगे।
3: और विपक्ष नेता के अनुरोध पर नेशनल पेंशन एक्ट में किए गए संशोधन पर राष्ट्रीय सभा में मत विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वोट्स कराया गया। मतदान के परिणाम स्वरूप 55 सांसदों ने संशोधन के पक्ष में मतदान किया, जबकि 6 सांसदों ने इसके विरोध वोट दिया। वहीं 5 सांसद मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। राष्ट्रसभा में गौरतलब है कि जूनियर मंत्री सिडनी पियर ने भी विरोध में मतदान किया था। सिला विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: शुक्रवार शाम को फाइनेंस बिल के कमेटी स्तर पर अध्ययन के दौरान विपक्ष नेता जोले जोंगाव ने विधेयक के क्लोज 12 पर वोटों के विभाजन की मांग की, जो नेशनल पेंशन एक्ट में बदलाव से जुड़ा था। मौजूद सरकारी पक्ष के सभी सदस्यों ने इस प्रावधान के पक्ष में वोट किया, सिवाय जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया के, जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया। बाद में इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल की तरह ही फाइनेंस बिल भी बजट 2026-2027 में घोषित कदमों को लागू करने के लिए पारित किया गया। हालांकि संसदीय सत्र के बाद प्रधानमंत्री ने संविधान की धारा 66 के तहत निर्वाचन क्षेत्र नंबर 19 स्टैनले रोजिल के निर्वाचित प्रतिनिधि सिडनी पिया को जूनियर मिनिस्टर के पद से हटाने का अनुरोध किया। एक प्राइवेट रेडियो पर बोलते हुए डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू किया है। वेस्टमिंस्टर सिस्टम से आए इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के सभी सदस्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेते हैं और सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करते हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। संविधान द्वारा गणराज्य के राष्ट्रपति को दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्म गोकुल ने 31 जुलाई की शाम को जूनियर पर्यटन मंत्री के तौर पर सिडनी पियर की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। ये बात उल्लेखनीय है कि मॉरिशस के संविधान के तहत जूनियर मिनिस्टर्स की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का काम देश के राष्ट्रपति करते हैं और ये प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है।
3: विदेश खबरों में जो आज सुर्खियों में है, उनमें स्पेन और मोरक्को के बीच चल रहे स्वेता सीमा संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। स्पेन की सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी कि मारे गए लोगों में से कुछ की मौत समुद्र में डूबने से, जबकि कुछ समुद्री दीवार यानी ब्रेक वाटर बैरियर पार करते समय मची भगदड़ का शिकार हुए। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
5: स्पेन का कहना है कि उसने सियोटा सरहद पर दोबारा काबू हासिल कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर हुई सीमा पार गतिविधियों के बाद 48,000 से ज्यादा प्रवासियों को वापस मोरक्को भेज दिया गया है। मैड्रिड ने सिविल गार्ड और फौज की तैनाती बढ़ा दी है, जबकि नए समुद्री प्रवेश को रोकने के लिए एक फ्लोटिंग बैरियर लगाया जा रहा है।
6: I would like to define what happened as an attack, a violation of the territorial integrity of Spain. Ceuta is a Spanish city, and what happened deserves all of our rebuke, all of our condemnation in the strongest possible way.
5: सिर्फ दो दिनों में 50,000 से 60,000 के बीच

0: लोगों ने उत्तर अफ्रीका में मौजूद स्पेन के इस घिरे हुए इलाके की सरहद को पार किया या पार करने की कोशिश की। रिसेप्शन केंद्र बहुत जल्दी भर गए और बचाव कार्रवाइयां भी तेजी से बढ़ गई हैं। इंसानी नुकसान भी काफी ज्यादा रहा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 57 प्रवासियों की मौत हुई है, जिनमें लोग डूबने या भीड़भाड़ के दौरान जान गंवा बैठे। ये संकट अब सिर्फ स्पेन तक सीमित नहीं रहा। फ्रांस ने स्पेन के साथ अपनी सीमा पर सुरक्षा निरीक्षण सख्त कर दिए हैं, ताकि प्रवासियों को अपनी सरजमीन की तरफ आने से रोका जा सके। ये कदम दिखाता है कि इस अप्रवासन संकट का असर पूरे यूरोप पर पड़ रहा है।
1: जानते हैं मौसम का हाल। पूर्व से आ रही सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज रात देश के पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान भी बादल घिरे रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह से दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह सूर्योदय 6:39 पर, शाम को सूर्यास्त 5:52 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर काविश का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। हॉस्पिटल रोड वाहूश मॉम्प्लेमिसेस में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्डर के श्री जी वंजारी जो जीवन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे रवि झरी के मकान हॉस्पिटल रोड वाहूश मॉम्प्लेमिसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। मौसलमान राफ्रेलू उशेतिया रूज में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जियानाकामा नायडू जो वासन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे दुर्गेश वेंकटासादू के मकान मौसलमान राफ्रेलू उशेतिया रूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। रॉय रोड सेंट जूलियन डुतमो में 94 साल के 94 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मी प्रसाद महाबीर जो विद्या के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और डॉक्टर विश्वास महाबीर के पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी विश्वानी महाबीर के मकान रॉय रोड सेंट जूलियन डुतमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। एवेन्यू ला सुरेंग लेन पाल्मा 4 बोन में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री बुधन रामबन जो बुलों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी मंगलवार को दिन के 1 बजे उनकी पत्नी कमला रामबन के मकान एवेन्यू ला सुरेंग लेन पाल्मा 4 बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन ट्यूसडे एट 1 PM। फैब्रिक्स लेन मोडालबेया में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री नरदेव गुदुरी जो सुरेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे विरयन गुदुरी के मकान फैब्रिक्स लेन मोडालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM।

Avenue Drapea Belle-Rosemée, Avenue Drapea Belle-Rosemée, 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भाग्या बुल्का, श्रीमती भाग्या बुल्का जो भाग्या भाभी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुपहर 3 बजे उनके मकान एवेन्यू द्रापिया बेलहोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडेगार्ड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 3 PM। नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाली पिटो में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नंदिनी देवी सिंह पैदाशी नाम दुबुरी और जो सीमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके पिता रमेश दुबुरी के मकान नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाली पिटो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति, सेंट क्रॉ और आसपास के रहने वालों को पिएटों पे अलावाल, लुआजू, आले पे अलावाल, इजोडो बुके, कनाल बाथर्स्ट, कोकोट्री, ड्यूक्रे, अबेरक्रोम्बी, सेंट मारी, उदिन लेन, रेजिडेंस ब्रिकेटरी और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 2 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सीबी की तरफ से एक और विज्ञप्ति सुन लीजिए। क्यूपीप और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है। विलो बाय, एंडरसन साटो, हिगिनसन, बर्ड, मेग्रो, मोन्टोक्यू, आजारी सिंह, फ्लैट लोटस, रेजिडेंस मिनिल, मोसलमो डाले और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 2 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। एक और विज्ञप्ति सुन लीजिए। मोसलमो राफ्रे, पॉइंटो कानूनी, रेजिवॉर रोड ग्रांड बे और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 2 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना सूचित किए इस बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। इन असुविधाओं के लिए सीईबी क्षमा प्रार्थी है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

0: बज ले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: सभी श्रोतागण को अनीता का सादर नमन स्वीकार कीजिए तथा भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम का आनंद आप अभी ले रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। प्रियजनों, सुख व दुख इस जीवन के दो पहलू हैं जिनके बिना मनुष्य का जीवन संपूर्ण होता ही नहीं है। अतः जीवन का अर्थ है सुख का आनंद लो व दुख का समाधान ढूंढो। दुख में आप लोग टूट जाएंगे तो जीवन ठहर जाएगा, और जब भी कुछ टूटता है केवल तभी कुछ नया बनने की संभावना उत्पन्न होती है, और यही संभावना जीवन है। तो श्रोताओं, इसी विचार के साथ आइए कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तजन सर्वशक्तिशाली सूर्य को भी एक छोटे से पृष्ठ को जलाने के लिए अपनी ऊष्मा, अपनी ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित करना पड़ता है। इसी प्रकार आप कितने भी मेधावी और योग्य क्यों ना हो, परंतु जब तक आप अपना मन, मस्तिष्क और प्रयास एक ही दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी।

प्रियजन, जीवन में यदि कभी हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो जब तक उस समस्या के भीतर रहेंगे तब तक उस समस्या में उलझ कर ही रह जाएंगे। समाधान तभी प्राप्त होगा जब आप उस समस्या से दूर जाकर उसके विषय में मनन करेंगे।

भक्तगण, कोयला का एक छोटा सा टुकड़ा भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न महत्व रखता है। एक लोहार के लिए वह लोहा गलाने का माध्यम है, एक कलाकार के लिए रेखाचित्र बनाने का एक माध्यम है, और कोयले के खान में काम करने वाले श्रमिक के लिए उसकी जीविका अर्जित करने का एक माध्यम है। सभी परिस्थितियों में कोयला वही है, अंतर है उसे उपयोग में लाने वाले लोगों के दृष्टिकोण, और यही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण कई बार समस्याओं को सुलझाने के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं।

श्रोताओं, जिस प्रकार सूर्य की एक किरण जग को जगमगा देती है, उसी भांति आशा की एक किरण हृदय को जगमगा देती है। इसलिए अंधकार चाहे जितना भी घना क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आशा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी विचार के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। इस्लाम हमें हमेशा ये तालीम देता है कि हर वक्त शिकायत करने, दूसरों के बारे में बदगुमानी रखने और मनफी सोच अपनाने के बजाय अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए, उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए, आजमाइश में सब्र करना चाहिए और अपने मुसलमान बहन भाइयों के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। इसी तरह अल्लाह पाक हमेशा हमें नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का।
4: भोजपुरी धमाल आज के

0: रत्नाकर संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: घड़ी मिला ला जा रात के 9:02।

भर खातिर जे रोज रात की चले रहा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर चला आज के मधुर कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे आप सब कोई के साथ देवब जा जहाँ कहूँ से भी साथ है देवत हवा। बस आशा है ये करब जा कि आप सब कोई मजे में हवा था और आज के कार्यक्रम के संगे बहुत ही प्यार से साथ है देवत चला। आज के कार्यक्रम बहुत बढ़िया रही और जे तरह मन बा तोहरा मन बा कोनो गीत सुने के जे तोहर तोहर हियाँ बा कोनो खास मौका जैसे जन्मदिन शादी के उत्सव तो जरूर हमनी के टेलीफोने करे सकब और बढ़िया बढ़िया गीत संगे चला आज के बढ़िया कार्यक्रम के शुरुआत करब जा। और आज के जो पहला गीत है बहुत बढ़िया गीत है और है गीत है खालिद बंधु के आवाज में रखल थोड़ा जी ले कहे के जाने ल सामदी आवेला 6 दिन के बाद और सामदी के रात परिवार संगे तनी बढ़िया समय बितावे के एगो बढ़िया मौका मिल जाला। तो चला तनी त्राका के दूर भगाव तनाव के दूर रख और तनी जी ल बढ़िया बढ़िया गीत संगे राजा भैया के आवाज में रख है पहला गीत

0: भोजपुरी तड़का।
1: अरे खाए पिए का बात करत हवा हो। देख निमन निमन खाए के चाहिला औरी बढ़िया बढ़िया शुद्ध पानी पिए के चाहिला औरी हमर चचा जोन है का बोलब। चला चचा के बात बोले के अगाड़ी तोहरा जना देवा था कि अगला जोन गीत है बहुत बढ़िया मजेदार गीत और हैजा पर हल्दी के जशन से आवत हवन विश्वानी दुमन और हमनी के बोले एगो हल्दी के रात से आल है और गरम गरम दाल कचू है गीत वा तनी हमर परिवार खातिन तनी चला दहो। उनका जोन सहेली है नीला और प्रतिभा और संगे हवन शोभा जी जरूर काहे नहीं संतोष महादेव के आवाज में रखल है बढ़िया बढ़िया गीत गर्मा गरम दाल कचू। और हाँ का बोलत रही हमर जोन चचा है जाने ल जैसे अभी खाले पीले के बात बोल देलक हैजा पर तो खाले पीले निमन चीज खाए के और निमन चीज पिए के कौन दिन आयुर्वेद पे एगो कार्यक्रम रहल और चचा उ कार्यक्रम देख लेलक और बोले दोक्तवा बोले कड़वा चीज पिए के कड़वा चीज जब पीबा तो तोहर सेहत अच्छा रही विस्की के बुटाई निकाल के बैठ गईलक। हमनी के बोले देखा है भी बहुत कड़वा है पी के हम अपन जीवन बहुत निमन से लेके जाब। हम बोली का हो चाचा दारू पिए के नहीं बोलक उ तोरा बोलन करेला के जूस पिए के औरी नीम के जूस पिए के है से तोहर जाबेत कमती होई है विस्की पी के तोहर तो जीवन नरक बन जाए हो।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी धड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम के संगे संगे बहुत कोई हमनी के साथ देवत हवन 402-808-5 नंबर बा रेडियो मॉरिशस के 402-808-5 और इस जेब में साज विदा करे खोजत हव 5251-7005 पर तू हमनी के में साज विदा करे सकब ढेर कोई हमनी के हाई निमो वापे टेलीफोने करे लंस हाई पे टेलीफोन नहीं करियो काहे के हई टेलीफोन करे खातिर नहीं हई मैसेज विदा करे खातिर नि मेगो ह औरी जेकर संगे तू जुड़ गल हवा हम है रतना अभी हमनी के साथ देवत हवन हमर जितना भी श्रोता लोगन बहुत प्यार से साथ देवब जा रात के 11 बजे लेते चला 9:15 हो गल बा और मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर वाकवा बगल से भाई आबू उनकर बेगम हवन आफे संगे हवन आयाज असलम जायान जहीरा रईस और खाला छोटी उनकर जुन साली साहिबा है और संगे हवन उनकर खास संगतिया आपी और उनकर पत्नी और उनकर भगिनी हवन रकीबा जेकर खातिर बहुत दुआ करत हवन और बस चला ऊपर वाला से हाइये प्रार्थना करब जा हाइये मांगब जा कि वो अच्छा हो जाए निमन हो जाए जल्दी से और आज जय हलाल के आवाज़ में रखल अगला गीत मांगत हवन उनकर सब परिवार खातिर और अभी थोड़ा दिन पहला जाने ल न गुरु पूर्णिमा रहल हाँ हो गुरुजन यानी दुनिया भर के जितना टीचर लोग हवन उनकर खातिर एगो बहुत खास दिन और जाने ल चाची भी उ दिन के चचा के बोले जाने ल हो आज गुरु पूर्णिमा है तो तोहर गुरु के तनी याद कर ल तो चचा तो हाथ जोड़ के चाची के सामने लगल बोले हे गुरुदेव हमनी के तनी आशीर्वाद दे द हमनी के तनी हिम्मत दे द चाची बोले का हो का बोलत हवा ऐसे काहे बोलत हवा हम तो हर गुरु हैं का बोले हाँ तू ही तो हमर गुरु हवा तू ही तो हमर गुरुवाइन हवा काहे के तू ही तो हमनी के लुगा धोवे सिखैलक बर्तन धोवे सिखैलक झाड़ू कैसे लगावे के है सब तू ही तो सिखैलक हमनी के तू ही तो हमर सबसे बड़का गुरुवाइन हवा

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हईजा पर हमनी के संगे वाकवा बगल से जुड़ गल हवन फुलवंती जी। उनकर पति हवन देवानंद, बेटी हवन भावना और बेटा हवन उषण। संगे साथ देवत हवन गांव गोप से सुनीता जी और उनकर प्यारी बहन विमला कोंगो माँ बगल से गांव गोप से साथ देवत हवन अमृता जी और गुडलैंड से जुड़ गल हवन उनकर बहिन वीना। चलो सब कोई परिवार साथ देवत हवन और हईजा पर छोटी हमनी के साथ देवत हवन पोला जैसे। और अगला गीत जो है बिजमावती संपत की आवाज़ में रखल है गीत, वो बहुत खुशी रहेलन सुने के। तो हाइये गीत करब जा दीदी ललिता खातिन, दादी प्रभावती और संगे हवन भाई आत्मा राम और हरीश भैया खातिन जे बोबासे से साथ है देवत हवन और कथ बोन बगल से सुभाष बोलक खातिन। तो चला साथ देते रहिए जा बहुत ही मजेदार कार्यक्रम संगे। और जाने ल न हमर चाची और चचा के तक इतना बड़ी शादी के हो गल पर संगे साथ रहते रहते भी कबो कबो ऐसे झगड़ा कर देवे लन। चाची कौन दिन चचा के बोले हाँ हो सुनले रही कि तू शादी से अगाड़ी बहुत शिवाला जात रहल, बहुत मंदिर जात रहल, बहुत पूजा करत रहल। बोले हाँ जात रही सच्चे के सुनले हव तू सच्चे के जात रही हर लेंदी के जात रही शिवाला शिव अभिषेक करे और हर काम करत रही। बोले सच्चे इतना पूजा पाठ? बोले हाँ बहुत पूजा पाठ करत रही। तो चाची बोले तो अब शादी हो गल बाद में काहे नहीं जाला, अभी तो तनको नहीं जाला शिवाला, काहे नहीं जाला हो तनको पूजा नहीं करेला। तो चचा बोले काहे के तू अब हमनी के मिल गल हव न, तू हमर जीवन में चलाल हव। तो चाची तो शर्मा के टमाटर नियर लाल लाल हो गल, फिर जाने ल चचा कौन ची बोल देलक। बोले हाँ जोन दिन से तू मिल गल हव उ दिन से हमनी के भगवान पे से विश्वास उठ गल बा।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत ही मजेदार टकाटक कार्यक्रम और जितना गीत के फरमाइश है जा पर आवत आ बहुत बढ़िया बढ़िया गीत और है ये कार्यक्रम के जस्ती जोली बनावे लंस। तो चलो आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा गिरीश रूपचंद के आवाज में रखल अगला गीत चलाओ अब जा और जोन है गीत हा बहुत प्यार से चलाओ अब जा शांति जी खातिन जे अबितिया उर से हमनी के साथ देवत हवन और उनका जितना मराठी परिवार हवन दागोचिया के और खासकर उनकर भगीना ओम जे अप दागोचिया में रहेलन और है गीत है ये गीत रिहाना जी तोहर खातिर भी चलाओ अब जा फिनिक्स से तू साथ देवत हवा और तू बोलत हवा सुंदर परिसर में नहीं जानत हवन के गैले बात है गीत गैले हवन गिरीश रूपचंद सुंदर परी बहुत मजेदार गीत है और जाने ल चचा लोग के चचा के जो फामी हवन सब कोई चचा के बोले हाँ तू तो हमनी के तनको याद नहीं करे ला कबो हमनी के याद करके टेलीफोन नहीं करे ला मैसेज एगो विदा नहीं करे ला एगो गुड मॉर्निंग के हाउ मैसेज आवेला ना फोटो फोटो हाउ भगवान के और गुलाब के फूल के हाई जोन गुड मॉर्निंग लिखल जाला हाउ व्हाट्सएप पे तू नहीं विदा करे ला। तो चचा पलट के हमनी के बोले देख हाई बुढ़वा बोला था हमनी के याद नहीं करत हवन हमने के तो हमार पोताप के पासवर्ड याद नहीं रहेला है बुढ़वा के याद रखब बोला तो कैसे बोला अभी है बुढ़वा के कि कैसे याद रहेला हमने के हमार पोताप के पासवर्ड याद नहीं रहेला बोला

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: ऐसन गीत सुनबा तो कैसे दीवाना नहीं होई बहो। बहुत मजेदार मजेदार गीत संगे आज तो हम जुड़ गल हई और हईजा पर जितना कोई हमनी के साथ देवत हवन बस ऐसने जुड़ल रही है रात के 11 बजे ले। और चलो अभी तो जैसे सब कोई बोलत हवन और सब कोई जानत हवन कि सावन के मास शुरू हो गल बा और हईजा पर मानती जी नुवलफॉन्स से संगे साथ देवत हवन और उनका दूगो बहिन अनंती और आरती। अगला गीत शिव के महिमा है गीत चलाओ अब जाओ उनकर खातिर उनकर सब परिवार खातिर। गिरीशा मितिशा भव्या पुष्कल और जितना परिवार संगे जुड़ गल हवन तो चला साथ देते रहिए जा और शिव के महिमा के हाइये गीत ललिता कुशल जी खातिन भी चलाओ अब जा। चाची ललिता हमनी के बहुत प्यार से साथ देवत हवन त्रियोले बगल से और उनकर बहिन लोग हवन देवीना सुदेवी ज्ञानी संगे हवन दीदी छोटी पोलौजे से दादी प्रभावती भाई आत्माराम भाई हरीश सुखलाल मौसी और रमाला राम जावन और हमार पूरा टीम खातिन। तो चला लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल अगला गीत उनकर खातिन चलाओ अब जा। हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और का बोलब हम हमर जुन चचा हवन उ त का जानी कबो कबो तो ऐसन ऐसन बतवा बोल देवेला हमनी के तब कपार में काम नहीं करेला। हम तो सोचिला कैसे है बुढ़वा के दिमाग में ऐसन सब बतवा चलावेला बोला था। कौन दिन लगल शायरी करे चचा हई उम्र में शायरी करत हवन बोले जाने ल जब नजर मिल जाला तो ओकरा बोलल जाला इजहार। जब नजर मिलेला तो इजहार बोलल जाला और रात के जब नींद नहीं आवेला ओकरा बोलल जाला प्यार। और जे है सब चक्कर में नहीं पड़ेलन ओकरा बोलल जाला समझदार। हाँ चाचा पर तू तो पढ़ गई ला ना तोहर तो शादी हो गल चाची के तो देख के तरह प्यार हो गल रहल ता तू तो कहाँ समझदार हो अब हो बोले हवे दिन के पछतावा हवे दिन के पछतावा बा हमर दिमाग में का बोलब

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और लाजवाब कार्यक्रम संगे सबको साथ है देवत हवन। तो बस ऐसे नहीं प्यार से साथ देते दे रहिए जा। और रात के 9:41 जितना कोई रात के काम करत हवन सब कोई के बुलब जा बों कुहाश। और हाई जा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन विजय बंधन जी क्लावेत बगल से। उनकर पत्नी हवन रेखा, तीन गो बहिन चांदनी, बिंदु और कुमारी। और अगला गीत जो है आदेश ताकू पसंद के आवाज में रखल बहुत ही मजेदार गीत संगे। तो चला आगे बढ़ब जा और लाजवाब गीत संगे। और चला आगे बढ़ब सा और इस गीत के बाद आओ अब सा एगो बढ़िया चुटकुला लेके।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हमेशा साथ दुविलन पिचिगाफे से पंडित राज वर्मा और उनकर पूरा बड़ुआ परिवार बहुत खुशी रहेलन। अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल है अगला गीत, तो जरूर चलाओ अब जा उनकर खातिन है गीत। और चचा जी के का बात बोलब जा जाने ल ओकरा तनी खोकी धर देले बा तनी तप लगल तो डॉक्टर ही आ गल तो डॉक्टर बोले 10 बजे है दवाई ले के चचा जो 10 बजे लेब तोहरा उतना तप नहीं लगे 4 घंटा पे लेके तो 10 बजे ले लिया भूलैया नहीं तो जाने ल चचा कुछ कलन 5 बजे में दवाई ले लेलक तो डॉक्टर बोले हो चचा तोरा बोल ले रहली 10 बजे लेवे के तो तू काहे 5 बजे में दवाई ले लेलक। बोले जाने ला डॉक्टर वा डॉक्टर बाबू जाने ला हम भी बहुत बहुत टेलीविजन देख ले है जब दुश्मन अटाके करी ओकर से पहला ही तू तैयारी दिखा दे तू पहला ही अटाके कर देब तो दुश्मन के मौका नहीं मिली। बोले कौन दुश्मन के बात बोला था वा? बोले हमार पेट में जो दुश्मन बैठल बा जो मिकोप बैठल बा ओकरा आगे ही पहला से ही दवाई दे देव तो हमनी के तप नहीं लगी समझ गई लो चचा तू दोके हवा की का हम जब बोल ले हैं तोरा 10 बजे लेवे के तो 10 बजे लिया 5 बजे में काहे तू ले लेलक ले

0: भोजपुरी
1: तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखत हई और मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर से जमिल फोरेसाइड बगल से जुड़ गल हवन चाची शांता सुकागी सब सुकागी परिवार संगे और बहुत मजेदार कार्यक्रम चला है जा पर उनकर पतो संगे हवन किरण साथ देवत हवन उनकर बेटा सुदेश गाविन सुजीत अशोक और साथ देवत हवन उनकर नातिन संजना और नाती भावेश और विनोद शिवदत्त के आवाज में रखल है अगला गीत संगत कर जान के पानी पिया छान के है गीतवा चलाओ अब जा और जब संगत के बात करत हव तो हमर जोन पप्पू भैया हका जानी कहाँ से उकरा एगो ऐसन संगतिया मिल गल बा पियकड़ ऐसे शराबी कौन दिन इतना शराब पी के हिलते डुलते आवत आता जानत हव हमर जोन गांव के जोन पंडित ह ओकर से टकरा गल तो पंडित जी तो इतना खिसिया गल पप्पू से बोले आय का करत हव मूर्ख हम तोरा श्राप दे देव तो जब उ श्राप बोलन तब पप्पू के जाने ल कौन चीज सुनायलन उ सुन ले ले शराब बोले पंडित जी अथान करो हम एगो भीरी से जाके हमर गीला से एगो आन दे इला काहे के तू शराब देवत हव ना हमनी के हम बैठ के मिल के पीवब

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
2: आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर आप सबको के साथ देवा धवन रत्न अभी से लेके रात के 11 बजे ले बिल्कुल 10 बजा था और सब कोई हमनी के साथ अभी ले जमल हवन साथ देवा धवन तो बस प्यार से ऐसे ने साथ देते रहिए जा बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम बहुत मजेदार गीत संगे सजावट है और एक संगे है जा पर गाँव गो बगल से श्यामा जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन बहुत प्यार से श्यामा जी हमनी के बोले तनी लागी ना ही छूटे रम हमर खातिन चला द हो काहे न मजेदार गीत संगे लता मंगेशकर और तलत महमूद के आवाज में रखल हई गीत श्यामा जी खातिन चलाओ अब जा श्यामा रघुनंदन उनकर भैया हवन जय प्रकाश भौजी हवन नम्रता केशव और युधीश संगे हवन और उ सादेवत हवन हमनी के लेस पेगोंस पीतो बगल से और उनकर खास दोस्त खास सखी हवन विश्वानी जी जे हमेशा हमनी के साथ देवेलन कौन दिमाग बगल से और वीना रामफल जी ते अगूश बगल से हमनी के साथ देते रहेलन तो चला लागे ना ही छूटे राम के हई गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन और जे जितना कोई खुशी हवन हई गीत सुने के उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा हई ये गीत और चचा बोले हमनी के जाने ला जब छोटा रहली तो पंडित जी हमार गाँव के बड़का पंडित जी हमनी के बोले कर्म कांड करते रहे के चाहिला जाने ल तब से हम कर्म त करीला पर हमार कर्म कांड कब बन जाला नहीं जानीला हो कहे के हमनी के सब कोई बोलेला है कौन कांड कर देलक

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी धड़का कार्यक्रम और लाजवाब कार्यक्रम संगे हैजा पर प्रेमिला जी हमने के साथ देवत हवन का थो बोन बगल से और उनकर प्यारी बेटी विद्या और उनकर पति हवन फावेश यानी बेटी विद्या और दामाद बाबू हवन फावेश संगे आज भाई बहुत साल हो गल बा आज उनकर शादी के सालगिरह बा तो चला ममा प्रेमिला बगल से उनकरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद आज के दिन के और संगे हवन दू गो बेटा निर्वाण और विहान साथ देवत हवन देवनारायण परिवार दू गो बहिन संगे हवन भैया विशेष और परिवार से तीन गो मौसी रामनाथ परिवार संगे और संगे संगे संजय जी और ललिता जी भी उनकरा बहुत बहुत आशीर्वाद देवत हवन और प्रेमिला जी बोले जितना गीत चलावत हवन और लोपिताल में जितना कोई बीमार हवन उन सब कोई के याद करत है सब कोई खातिर प्रार्थना करत है और उनकर खातिर एगो बढ़िया सन गीत और अयोध्या के राज है गीत वा मंगले हवन तो जरूर चलाओ अब जा और हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा काहे के जीवन में जब हंसी खुशी रहेला तो जीवन जिए के बहुत अच्छा लगेला कौन दिन चचा ऐसे तराका में बैठल रहल तो हम बोली का होल चचा बोले हाँ हाँ पोम खात रही तो हम बोली तो अच्छा ह पोम तो खाई के चाहिला जाने ल डॉक्टर कौन सी बोले नापल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे बोले डॉक्टर के छोड़ा मार गोली बोले काहे डॉक्टर के मार गोली बोले ना देखा हम तोरा एगो ज्ञान के बात बोलब हई जन पोम खात रही अरे जब फॉर्म खाईते खाईते जे तोरा उमे कीड़ा लौकी तो जाने ला कौन ची करे के त्राका नहीं करे के हमरे का बोला था वो चाचा बोले त्राका जाने ला कब शुरू होला हम बोले नहीं कैसे हम जानब बोले त्राका जब तब शुरू होला जब बेबेत रही अरे बेबेत आधा रही तो त्राका शुरू हो जाला कि आधा बेबेत जोन हा आधा जोन कीड़ा हा वो कहाँ गल
2: सिया मांगे

भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।

10:10 हो गलबा आईजा पर जितना कोई टेलीफोन करत हवन बहुत प्यार से, तो चला साथ देते रहिए जा इसने प्यार से और हईजा पर बहुत प्यार से लव नीत लोटो में घरे जात हवन और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुनत हवन और बहुत खुशी हवन जुबेदा के गीत सुने के और संगे हवन उनकर पापा श्याम संगे हवन प्रीति आशा मामूजी संगे हवन और सब बिहारी परिवार और बागातेल से भी जिने करके घरे लौटत हवन। तो चला खुशी हवन रंभा राम तोहल के आवाज में रखल जुबेदा के है गीत सुने के, काहे नहीं बढ़िया गीत है, तो चला सुनब जा संगे मिलके।

0: भोजपुरी तड़का।
1: चला 10:19 हो गल भा और बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम संगे जितना कोई अभी साथ देवा धवन बस ऐसा साथ देते रहिया जा। और हैजा पर फ्लोगयाल से वीना जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और अगला गीत जन बसंत सुपल के आवाज में रखल और बहुत खुशी हवन वो है गीत सुने के। और है गीत उमंगले हवन इंद्राणी जी और जय बिहारी जी खातिर जे अभी हमनी के साथ देवत हवन और मजेदार गीत संगे सब कोई हंसते हंसते आगे बढ़त हवन। तो चला जीवन में ऐसे आगे बढ़े के चाहिला और का बोल अब हमार जाने ल चचा पहला गाय पोसत रहल तब गाय के तक संभाले के बहुत लेटों लेवेला बहुत मेहनत लेवेला और ओकर जो गाय है तनी बुढ़ा हो गल अब गाय के एक आंख से नहीं लौकेला। तब चचा बोले अब का करब बेच देव भाई गैवा के तो ओकरा एगो क्लियो मिलल 25,000 रुपया बोल देलक ओकरा। तो जब उ गाय लेवे आल तब बोले चचा है गाय तो अंधा है एक आंख से नहीं लौकता तब बड़ा तरह गाय के दूध निकाले के पसंद बा कि तोरा गाय के संगे तू आंख मटक का करबा बोलता गाय दूध देवे खातिर तोरा चाहिला ना तो लेके जो तू का गाय संगे आंख मटका करबा।

0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम वाकवा से हाईजा पर सुदेवी जी हमनी के हमेशा बहुत प्यार से साथ है देवेलन और उनका सब परिवार खातिन, खासकर उनकर बहिन दीदी ललिता जे कुशल परिवार से त्रियोले से साथ देवेलन, आत्माराम भैया हवन बिलियागी वैश्य से दीदी सुनीता संगे हवन शोभा देवीना माला और मालेगा के राम रतन परिवार खातिन जोन गीत सुदेवी जी तू हमनी के मंगले रहलन उ गीत तो हम चला देनी पर त्राका नहीं कर दूसर गीत तोहर खातिन जरूर चलाओ अब जा बहुत प्यार से। और हैजा पर नीता खेदनी जी भी हमनी के साथ है देवत हवन सेंट जूलिया विलास बगल से उनकर खास संगी संगतिया खास दोस्त हवन स्वाधिका जी और हैजा पर कुमारी जी भी साथ है देवत हवन दागोचिया बगल से तीन गो बेटी हवन लता प्रतिमा सुधा उनकर पतो हवन कामिनी साथ है देवत हवन नातीन खुशबू मीमी अंजू और सब रामफुल परिवार जी कौरेमास से हमनी के हमेशा साथ देवेलन और उनकर भाऊजी हवन कामिनी और सब परिवार खातिन वो गीत मंगले हवन त चला साथ देते रहिए जा और बढ़िया बढ़िया गीत संगे जितना कोई हमनी के साथ देवत हवन बस ऐसने साथ बनल रही। और ही चला अगला गीत जोन हा गौरी ब्रदर्स के आवाज में रखल हई गीत वा चलाओ अब जा तो हर खातिन और खासकर अनीता जी फ्लिकॉन्फ्लाक से हमनी के साथ देवत हवन तब बोले हई त श्रावण मास चलता त श्रावण मास के हई उपलक्ष्य में एगो बढ़िया शिव जी के गीतवा चला द काहे नहीं हो और भगवान शिव जी सब सब कोई पर अपन कृपा दृष्टि बना के रखी। और जाने लो कौन दिन चचा भात खात रहलन और भात खाइते खाइते दूगो कंकड़ मुंह में चढ़ाल खीस करे शुरू कर देलक चाची के बोले दू गो आंख दे ले बा बटन नियर भगवान तोरा दू गो आंख दे ले बा त नहीं निमन से तू चार के भाई कंकड़ नहीं नहीं निकाले सकब तो चाची भी गाल बजा के बोल देलक बोले हाँ भगवान तोरा मुंह में 32 गो दांत दे ले बा दू गो कंकड़ नहीं चबावे सकबा

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:32 हो गल बा। आउरी समय जोन बहुत हाली हाली बीता था।

तो चला कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जाओ। और बिलिया बगल से हैजा पर भाई आत्माराम हमनी के संगे जुड़ गल हवन। और बहन सुदेवी, बहन ललिता, बहन छोटी और बहन प्रभावती खाती नगला गीत के उमंग कर ले हवन। ज्ञान महिपतलाल के आवाज में रखल है बहुत बढ़िया गीत। और हई जोन गीत है कजरा के मोल एल्बम से लेवल गल गीत है। और हमार चचा के का बोला, चाची चचा के तो जब देखा तब झगड़ा चलते रहेला। जाने ल चाची बहुत परेशान हो गल बा। औरी चचा के जितना काम जितना का बोलब, चचा के बोले हाँ हाई हम नरक से तोहर हाई नरक से बहुत बहुत परेशान हो गल हाई। तोहर गुलामी करते करते ता हम हमार जीवन बर्बाद हो गल। बुझाला हाउ जन्म में पिछला जन्म में कोनो बड़का काम कोनो बड़ी बहुत खराब काम कर ले रही हाई, ऐसे तू तू हमार जीवन में चल ल। तो जाने ल चचा बोले के शुरू कर देलक, बोले हाँ अच्छा हमार घर नरक है, हाई जन्म में तनी अच्छा काम कर ल, हमनी के छोड़ के चल जइयो अपन माँ हिया, हुआ जाके हुआ तोहर माँ के घर के स्वर्ग बनैया, हमार नरक छोड़ के।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम औरी बिल्कुल 10:40 हो गल बा। और आप सबको अभी ले हमनी के संगे साथ जुड़ गल हवा, तो बस ऐसा साथ देते रहिए जा है जा पर सच बे से सरंचितंगी जी हमनी के संगे साथ देवत हवा। और उनकर प्यारी नातिन ईशा के जन्मदिन बाद 13 बरिस के होगल हवन पापा हवन किरण मामा नीलम और नाना सुनान चितंगी नानी हवन माला भाई हवन ईशान और मौसी हवन तीनम। तो चला इसने साथ देते रहिए जा और ईशा के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हमार टीम देने से। और है प्यारा सा गीत तो हर खातिन बजावत है जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई जितना कोई आज जन्मदिन मनावत हवन। तो चला है गीत खास तो हर खातिन

0: जन्मदिन रही, शादी के मौका रही, कोनो भी ऐसन प्रसंग रही, कोनो भी ऐसन अवसर रही, तो जरूर भोजपुरी तड़का में तू भाग ले सकबो और अपन पसंदीदा व्यक्ति खातिर एगो बढ़िया गीत।
1: भोजपुरी तड़का
0: चला हैजा पर मेहंदी के रस्म होवता और शगुफ्ता जोली शगुफ्ता तोहर खाती नहीं बढ़िया गीत काहे के काल तोहर निकाह बाते बोर्ड लुइस में मामा परवीन और पापा अनवर की तरफ से और खास कर तोहर शोहर नवाज खातिन। अगला गीत चलाओ अब जा सुग्रीम किस्तु की आवाज में रखल और हमर पूरा टीम देने से तोहरा निकाह के बहुत बहुत बधाई और बढ़िया संगीत तोहर खातिन और जीवन में बस हमेशा खुश रहिया, आगे बढ़ते रहिया।
2: आज की रात रत्ना के संगी एमबी

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखत है। पूर्णिमा फोकिरा जी के आवाज में रखल अगला गीत उनकर सब परिवार खातिन, फोकिरा परिवार खातिन, खासकर उनकर चार गो बेटी प्राविनी, पूजा, पूनम, पिंकी, उनकर बेटा हवन, प्रावेश, उनकर पतु खातिन और सब देवी दयाल परिवार, कालिया चेती परिवार, दसोई परिवार, नायको परिवार और संगे हवन उनकर नाती शयान, श्वानिश, कानिश, आयान और नातिन हवन परी और सब दामाद बाबू भी संगे हवन ना गोशन। तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और सीधा सुहागन है गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन और है जा पर हमनी के साथ देवत हवन पीतों बगल से अमृता जी, अमृता गणेश, उनकर दुगो नातिन हवन सोनिया और परी, साथ देवत हवन पूनम और मीनाक्षी और बेटा हवन विशन। तो चला संगे मिलकर सुन अब जा है गीत और युद्धीश भी हमनी के साथ है देवत हवन, हंसते मुस्कुराते बस साथ देते रहिए जा। चला है ये गीत करब जा राजन लक्ष्मण जी खातिन लाफलोगा से भी ऊ हमनी के साथ देवत हवन, पत्नी हवन माला, बेटी हवन प्रार्थना और प्रगति, बहन मानती और भगिनी हवन उर्मिला, तुलसी, सब लक्ष्मण परिवार और तुलसी परिवार खातिन।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और एक कर संगे आज के कार्यक्रम के हाईजा पर समाप्त करे के समय हो गल बा। और हाईजा पर शोभा जी हमने के साथ जुड़ गल हवन का खबून बगल से। उनका सब परिवार खातिन, जितना कोई सुनत हवन सब कोई खातिन और एमबीसी के टीम खातिन, और खासकर उनका संधन हवन साकुन जी आज उनकर संगे हवन। तो चला उनकर खातिन चलाव डा और हाईजा पर श्रेष्ठा बाल गोविंद हमने के साथ देवत हवन और घरे जात हवन भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुनते सुनते। तो है आखिरी गीत के साथ कार्यक्रम के हाईजा पर फिल स्टाप लगावब जा और आशा करब जा कि दिमास के दिन बहुत बढ़िया बीती, आवत समय तोहर खातिन बहुत मजेदार रही और एक बार फेरों से भेटाब शाम दी के रात 9 बजे से 10 बजे, 9 बजे से 11 बजे ले। ऐसे तो रोज चलेला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर रात के 9 बजे से 11 बजे ले, पर हम तो हर साथ देव रात के सामदी के रात के। बस अपन ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन बहुत बहुत बहुत बढ़िया है। तो चला अपन ख्याल रखिए और रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि आप सभी को।

0: Mauritius.
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: प्यारे प्यारे श्रोताओं, स्वीकार करें नीतुषा का करजोर प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक कुशल मंगल हैं।

जी हाँ, हिंदी सिनेमा की बात हो और माँ के किरदार का जिक्र न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब भी बॉलीवुड की सबसे यादगार माओं की बात होती है, सबसे पहला नाम निरूपा रॉय का आता है। उसका असली नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था। उनका जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसर के पास हुआ था। बहुत कम उम्र में उनकी शादी कमल रॉय से हुई और उसके बाद उन्होंने फिल्म दुनिया में कदम रखा। 1946 में गुजराती फिल्म रनक देवी से उन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत की और उसी साल हिंदी फिल्म अमर राज में भी नजर आई। धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना ली।

अपने करियर के शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने कई माइथोलॉजिकल और डिवोशनल फिल्मों में देवी, सीता और पार्वती जैसे पवित्र किरदार निभाए। हर हर महादेव, चक्रधारी, राम जन्म, मीराबाई और अन्य धार्मिक फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने दर्शकों के दिल जीत लिए। उनके अभिनय में इतनी पवित्रता और श्रद्धा नजर आती थी कि कई लोग उन्हें वास्तव में देवी का रूप मानकर उनसे आशीर्वाद लेने तक पहुंच जाते थे।

1950s और 60s के दशक में निरूपा रॉय ने अपनी प्रतिभा का एक और रूप दिखाया। 2 बीघा जमीन, मुनीम जी, गरम कोट, मुसाफिर, भाई भाई, छाया, शहनाई, कवि कालिदास, रानी रूपमती, सम्राट चंद्रगुप्त जैसे कई यादगार फिल्मों में उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार निभाए। चाहे एक सादगी भरी पत्नी हो, एक मजबूत नारी हो या एक दुखी महिला, हर रोल में उन्होंने अपनी अलग पहचान छोड़ी।

0: 1970s के दशक में निरूपा रॉय की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। वो बॉलीवुड की सबसे मशहूर स्क्रीन मदर बन गई। दीवार, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, मर्द, सुहाग, इंकिलाब, गंगा जमुना सरस्वती, बेताब, क्रांति, गिरफ्तार, लाल बादशाह और अनेक फिल्मों में उन्होंने माँ का ऐसा किरदार निभाया जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। अमिताभ बच्चन के साथ तो उनकी माँ बेटे की जोड़ी इतनी लोकप्रिय हुई कि दर्शक उन्हें उनकी असली माँ जैसे ही सम्मान देने लगी। फिल्म दीवार का मशहूर डायलॉग मेरे पास माँ है आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास का अमर हिस्सा माना जाता है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है
1: कह

निरूपा की एक्टिंग स्टाइल बहुत नेचुरल, इमोशनल और दिल को छू लेने वाली थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आंसुओं की सच्चाई और आंखों की भावनाएं बिना अधिक डायलॉग के भी सब कुछ कह देती थी। इसी वजह से उन्हें हिंदी सिनेमा में क्वीन ऑफ मिजरी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अक्सर दुख सहने वाली, त्याग और ममता की मूरत माँ के किरदार को इतनी गहराई से निभाया कि वो अमर हो गया। लेकिन उनकी कला सिर्फ दुखी माँ तक सीमित नहीं थी, उन्होंने रोमांटिक, हिस्टोरिकल, डिवोशनल और सोशल फिल्मों में भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग का प्रदर्शन किया।

निरुपा रॉय का एक्टिंग लगभग 5 दशकों तक चला और उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में काम किया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की, जैसे देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, बलराज साहनी, धर्मेंद्र, शशि कपूर, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे महान कलाकार शामिल रहे।

वैसे अवार्ड्स की बात करें तो निरूपा रॉय को फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का सम्मान मुनिम जी 1956, छाया 1962 और शहनाई 1965 के लिए मिला। इसके अलावा उन्हें उनके अतुलनीय योगदान के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके हिंदी सिनेमा में असाधारण योगदान की पहचान रही।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, ए मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर।

मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

13 अक्टूबर 2004 को निरूपा रॉय इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी यादगार फिल्में और उनके अमर किरदार आज भी हर सिनेमा प्रेमी के दिल में जिंदा है। उन्होंने सिर्फ माँ का रोल नहीं निभाया, बल्कि ममता, त्याग, दया, सहनशीलता और इंसानियत का जीवंत रूप पर्दे पर उतारा। आज भी जब बॉलीवुड की सबसे महान अभिनेत्रियों और सबसे यादगार स्क्रीन मदर्स की बात होती है, तो निरूपा रॉय का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उनकी विरासत हमेशा हिंदी सिनेमा को प्रेरणा देती रहेंगी। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: You're listening RM3 Radio.
1: कितने आदमी थे

0: नाम से विलेन, काम से हीरो।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: Oh ho ho ho ho ho! धन हो तेरे मेरे प्यार की.
2: क्या प्यार की?
1: अरे कुंडली.
2: कैसे कुंडली? काय के कुंडली?
1: जन्म कुंडली, धर्म कुंडली, कर्म कुंडली, लगन कुंडली. मिल गई रे मिल गई.

जाने दो आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा तुम ना मानो तो जाने।

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला